0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
3: अभी तक आप सुन रहे थे भक्ति संगीत कार्यक्रम आराधना। लीजिए सुनिए इस प्रोग्राम का आखिरी गीत।

यह आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के श्रावण मास की 31वीं तिथि के तदनुसार 22 अगस्त सन 2026 इस समय सुबह के 5:53 और 47 सेकंड हुए हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

छह बजे का समय रहेगा हिंदी में समाचारों का। 6:02 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम सुप्रभात। ठीक 7 बजे का समय रहेगा हिंदी में समाचारों का। 7:02 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR। ठीक 8 बजे एक बार फिर से होंगे हिंदी में समाचार।

0: की वाणी आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है। 5:57 हो चुके हैं। आइए आपको आगे प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में जानकारी दे दें।

8:02 पर जारी रहेगा कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। ठीक 9 बजे आप सुन सकेंगे हिंदी में समाचार। 9:02 पर होगा कार्यक्रम दिल के तराने, गाने नए पुराने।

10 बजे का समय रहेगा अंग्रेजी में समाचारों का। 10:02 पर आप सुन सकेंगे वेस्टर्न म्यूजिक। ठीक 11 बजे एक बार फिर से आप सुन सकेंगे हिंदी में समाचार। 11:02 पर आप सुनेंगे बॉलीवुड ट्रेल्स। बारह बजे आप सुन सकेंगे अंग्रेजी में समाचार। 12:02 का समय रहेगा वेस्टर्न म्यूजिक का। और ठीक 1 बजे एक बार फिर से होंगे हिंदी में समाचार। एक बजकर 2 मिनट पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम मेरा वाला सॉन्ग। ये थी जानकारी आगे प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में। यह आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है। 5:59 हो चुके हैं। अब से कुछ ही देर में सुनिए हिंदी में समाचार।

और एफएम रेनबो पर लीजिए पेश अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार के नीतिगत सुधारों के परिणाम स्वरूप पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं। प्रधानमंत्री ने 20 अंतरिक्ष स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग का आह्वान किया। सरकार ने आश्वस्त किया है कि देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। जयपुर में कल ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक हुई, जयपुर घोषणा पत्र पारित हुआ और संयुक्त रणनीति पर सहमति बनी। भारत की मेजबानी में आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा कार्य मंत्रियों की बैठक होगी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया बैठक की अध्यक्षता करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगले महीने की 5 तारीख को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का अनुमान जताया है। वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिमी बंगाल, उत्तराखंड में भी इस तरह की मौसम की संभावना है। स्लोवाकिया में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की काजल ढोचक ने महिलाओं के 76 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। तनु शर्मा और सविता ने रजत पदक जीते। और स्विट्जरलैंड के लुसाने में डायमंड लीग में भारत के नीरज चोपड़ा ने 88.05 मीटर भाला फेंककर दूसरा स्थान हासिल किया। ये उनका इस सत्र का सर्वश्रेष्ठ थ्रो रहा। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

रहती है ये बेचैनी। जी हाँ, बिल्कुल बेचैनी रहती है उसके बिना जिसको हम बेहद पसंद करते हैं, चाहते हैं, सराहते हैं, जो होता है हमारे मुस्कुराने की वजह, जैसे कि आप। जी हाँ, यही वजह है कि दिल से दिल का कनेक्शन है हमारा और आपका, क्योंकि हमेशा ये कनेक्ट रहता है, हर पल हर दम यूं ही बना रहे दिल से दिल का कनेक्शन एफएम रेनबो पर। इसी विचार के साथ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार, सुप्रभात। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुप्रभात एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर और मेरा नाम पूजा शुक्ला।

जो सोचा है वो हो, वो आपके सामने आए, इसके लिए प्रयत्न, प्रयास, कोशिश हमेशा हमेशा हमेशा करते रहिए। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना चाहिए, भाई आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, लेकिन अपनी कामयाबी पर, अपने सक्सेस पर घमंड की आंच नहीं आने दें। जी हाँ, बेस्ट प्लेस पर पहुंचने की वजह हमारी क्वालिफिकेशन, हमारा टैलेंट है। इस ज्ञान का अभिमान तो होता है हमें, लेकिन धीरे धीरे जो अहंकार हमें घेर लेता है, सिर्फ मैं ही बेस्ट हूँ ये वाला भाव, इस अभिमान का ज्ञान हमें नहीं हो पाता। कामयाब होने के बाद एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश हमेशा करनी चाहिए। तो अभिमान को छोड़िए, अपने गुमान को तोड़िए, मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ ये सोचना अच्छा है, पर सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ, मैं ही कर सकता हूँ, ये घमंड है। तो बस इस घमंड को चूर चूर चूर करना है और अपनों के साथ हमेशा रहना है, और रहना है आपको FM रेनबो के साथ। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

जरूर जरूर आएंगे, क्योंकि जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी हुई है। ये हमेशा आप आपके लिए सुख नहीं लाती है, दुख भी लाती है, संघर्ष भी लाती है, मुश्किलें भी लाती है, तकलीफें भी लाती है, लेकिन संघर्ष को हमेशा आप संग जमा हर्ष मानकर चलिए, मुस्कुराइए। मुस्कुराने से मुश्किलें खत्म तो नहीं होंगी, हाँ आसान जरूर होंगी। तो बस मुस्कुराते रहिए, अपनों के साथ रहिए, क्योंकि अपनों का साथ देता है आपको बड़ी ताकत, जैसे आपका साथ। एफएम रेनबो पर जो आप जुड़ते हैं, सुनते हैं, मैसेज करते हैं, तो वाकई यकीन मानिए बहुत हौसला अफजाई होती है। बस यूं ही साथ निभाते रहिए, हमारे साथ चलते रहिए। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुप्रभात, मेरा नाम पूजा शुक्ला।

धीरे धीरे हौले हौले कामयाबी की राह में चुनौतियां आती रहेंगी, जाती रहेंगी, और साथ साथ ये आश्वासन से आपको बल भी मिलता रहेगा। वो लोग जो आपको आपके साथ रहते हैं चुनौती भरे समय में, आपका साथ दे रहे हैं, उनके साथ हमेशा हमेशा हमेशा बस अच्छा व्यवहार करें, उनको साथ लेकर आगे बढ़ें, क्योंकि कभी ना कभी आप नीचे होंगे और इन्हीं लोगों से आपका सामना होगा। इसीलिए हमेशा सबसे अच्छा, सरल, सुंदर व्यवहार बनाकर चले। आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात, जाते जाते बेहतरीन गीत आपके लिए, बहुत बेहतरीन आपका दिन गुजरे यही कामना।

0: और लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम समर्पण।
1: कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण।

कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम का दूसरा स्कंध और दूसरे स्कंध का सातवां अध्याय, जहां पर ब्रह्मा जी ने अनेकानेक भगवत अवतारों की चर्चा की है। और जिन भगवत अवतारों की चर्चा की है, बाद में श्रीमद् भागवतम में जो अनेक स्कंद हैं, यानी तृतीय स्कंद, चतुर्थ स्कंद, सब में ही उन अवतारों के बारे में पूरा वर्णन है। तो वस्तुतः यहां पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ये शाम स एव भगवान दये दनंतः सर्वात्मनाश्रित पदो यदि निर्वेलीकम ते दुस्तरामति तरन्ति च देव मायाम नैषां ममामिति धीः श्वशिगाल भक्षये। 42वें श्लोक में कह रहे हैं, जो निष्कपट भाव से अपना सर्वस्व और अपने आप को भी उनके चरण कमलों में न्यौछावर कर देते हैं, उन पर वे अनंत भगवान स्वयं ही अपनी ओर से दया करते जाते हैं और उनकी दया के पात्र ही उनकी दुस्तर माया का स्वरूप जानते हैं और उसके पार जा पाते हैं। वास्तव में ऐसे लोग ही, ऐसे महाजन भक्त ही कुत्ते और सियारों के कलेवा रूपी अपने और पुत्र आदि के शरीर में ये मैं हूं और ये मेरा है ऐसा भाव नहीं रखते। तो देखिए, यहां पर बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं। और यहां जो बताया कि माया का स्वरूप सब लोग नहीं जान सकते, भगवान का स्वरूप भगवान भी नहीं जान सकते, लेकिन उनके जो भक्त हैं वो उन्हीं की कृपा

बाबा से उनको जान लेते हैं, है ना। यानी जो निष्कपट भाव से भगवान का भजन करते हैं ऐसे लोग, जो निरपराध हैं, तो ऐसे जो भक्त हैं उन भक्तों के अधीन हो जाते हैं भगवान। क्योंकि आमतौर पर तो भगवान की तरफ जो लोग मुड़ते हैं उनमें से तो ज्यादातर लोग वही होते हैं जो भगवान से कुछ चाहते हैं कि प्रभु हमें ये दे दीजिए वो दे दीजिए, या फिर जो लोग ये सोचते हैं कि नहीं हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं और वो भी अन्य निरपेक्ष होकर, यानी हमें भगवान से कुछ नहीं चाहिए उनके सुख के सिवा, हम उनका सुख चाहते हैं, तो ऐसे लोग भी भगवान के चरण का आश्रय करते हैं क्योंकि उन्होंने भक्तों के श्रीमुख से सुना होता है भगवान की महिमा के बारे में और भगवान की कथा सुनकर उन्हें अतिशय सुख होता है और उस सुख और आनंद का अनुभव प्राप्त करने के बाद फिर वो भगवान के श्री चरण का आश्रय कर लेते हैं, है ना। और जो लोग भगवान के श्री चरणों का आश्रय ले लेते हैं भगवान उनके प्रति ही दया करते हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी लोग जिन्होंने भगवान के चरणों का आश्रय नहीं लिया उनके प्रति भगवान की दया नहीं है। देखा जाए तो ये जो शरीर है हमारा मनुष्य शरीर, ये तो भगवान की दया का ही परिचायक है। हमने ऐसा क्या कर्म किया कि हम पर ऐसी दया हो जाए कि हमें मनुष्य शरीर मिल जाए जो कि साधन शरीर है। इस शरीर का बड़ा महत्व है, बहुत ही कीमती शरीर है ये, और वो भी भारत देश में इस शरीर की पैदाइश होना, ये तो और भी अहेतु की कृपा है भगवान की। और फिर उस पर भी श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम जैसे अमूल्य ग्रंथों का, शास्त्रों का हमारे जीवन में होना, ये कम दया नहीं है। तो कृपा तो सब पर करते हैं भगवान। भगवान ने ही इंद्रियां दी हैं, इंद्रियों के विषय दिए हैं, सब कुछ उन्होंने ही दिया है। लेकिन ये जो मनुष्य शरीर मिला है वो मिला ही इसलिए है कि हम भगवान की कृपा समझ सकें और ये समझ सकें कि ये जो माया है हमारे चारों तरफ, जो माया दिखती है, इस माया का स्वरूप समझ सकें और इस माया से पार हो सकें और भगवान को जान पाए, है ना। यह जीवन का लक्ष्य, इस देह को धारण करने का लक्ष्य ही यही है। बड़ी ही कृपा करके भगवान हमें माया की गोद में बिठा देते हैं, क्योंकि माया की गोद में नहीं बैठेंगे तो देह नहीं मिलेगी और देह नहीं मिलेगी तो साधन नहीं होगा। कैसे हम भगवान की दिव्य कथाओं का श्रवण करेंगे, कैसे भगवान के नामों का हम कीर्तन करेंगे, नहीं हो पाएगा। तो देह तो भगवान की कृपा से ही हमें मिलती है ना, और तो कोई कारण नहीं है। तो मिलती क्यों है? मिलती इसीलिए है क्योंकि हम उस देह के द्वारा भजन करके भगवान के प्रेम को प्राप्त कर सकें और प्रेम प्राप्त करके भगवान की सेवा को पाने की योग्यता हासिल कर सकें। और सेवा सुख से बड़ा सुख कोई है नहीं, है ना। तो ये कैसे पता चलेगा कि जो भजन कर रहा है वो भगवान को जान पाया है, या थोड़ा भी, जितना भी भगवान चाहते हैं कि वो जान पाए वो जान ही पाया है, कोई लक्षण है क्या? तो इस श्लोक में उसका लक्षण बताया गया है। स्व शिगाल भक्ष्य, यानी जो कुकुर हैं और शिगाल हैं, कुत्ते और सियार, जिस देह को खा जाते हैं, है ना भाई। जब इस देह में से प्राण चले जाते हैं तो क्या होता है? इस देह की परिणति या तो एक मुट्ठी राख, या फिर अगर जंगल में कहीं कोई हादसा हो जाए और देह वहां पड़ी रह जाए तो फिर उस देह को खाने के लिए कुत्ते और सियार आ जाते हैं, नोच नोच के खाते।

तो देह की तो यही परिणति है, या फिर इसमें कीड़े पड़ जाते हैं, इसी देह को हम इतना संवार के रखते हैं। लेकिन हम साधन के रूप में इस देह के महत्व को ना जानते हैं ना जानना चाहते हैं, और यही है सबसे बड़ी दुख की बात। देखिए, ये घोर कलयुग है और इस घोर कलयुग में भी हमें महाप्रभु के युग में जन्म मिला है, ये बहुत स्वर्णिम अवसर है। इससे बड़ा स्वर्णिम अवसर आ नहीं सकता, क्योंकि महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के चरणों का आश्रय करके, यानी उन भक्तों के चरणों का आश्रय करके जो महाप्रभु को समर्पित हैं पूरी तरह से, तो ऐसी शरणागति से हम गौर कृपा पा सकते हैं और गौर कृपा से भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। तब एक लक्षण उत्पन्न होता है कि ये जो देह है जिसको कुकुर और शिगाल खा जाते हैं, यानी उनका भक्ष्य है, ये उनका भक्ष्य है। इस देह में मैं बुद्धि नहीं रहती, ममता नहीं रहती। अपने देह में ममता नहीं रहती वो तो ठीक ही है, लेकिन अपने बच्चों के देह में भी ममता नहीं रहती। उन्हें पता होता है कि जीव तो अविनाशी है, जीव का विनाश कभी नहीं हो सकता। लेकिन जीव जिस देह को धारण करती है, उस देह से मेरा जो संबंध है वो भी अस्थाई है, देह भी अस्थाई है, तो इसलिए इसके लिए इतना कल्पना क्यों? तो वहां ममता बुद्धि नहीं होती। ये लक्षण है। तो आमतौर पर लक्षण से ही जाना जाता है कि भगवान का कोई भक्त है या नहीं। तो देखिए, जब तक मनुष्य अविद्याग्रस्त होता है, अविद्याग्रस्त, और हमने कई बार कहा कि स्कूल कॉलेज की डिग्री पाकर के ये सोचना कि हमें विद्या मिल गई है, तो उस विद्या से कुछ होगा नहीं, भवसागर को पार कर नहीं पाएंगे। भगवत भक्ति रूपी साधन हमारे जीवन में आ नहीं पाएगा। तो विद्या है भगवत विद्या, भगवत विद्या है ना, जो निष्कपट भाव से भगवान की शरणागति लेता है, वो व्यक्ति भगवत विद्या को पाने की योग्यता प्राप्त करता है। ये महाप्रभु ने भी कहा श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी से। सार्वभौम भट्टाचार्य जी वेदांती ब्राह्मण थे, शास्त्रों की मर्यादा को निभाते थे, और जब तक संध्या वंदन ना कर लें, जब तक पूजा पाठ ना कर लें, वो पानी भी नहीं पीते थे। तो वो बहुत कट्टर थे अपने सिद्धांतों में। तो महाप्रभु की कृपा से उन्हें कृष्ण भक्ति की प्राप्ति हुई और उनका हृदय सरस हो गया। तो एक दिन श्रीमन महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य जी की परीक्षा लेने के लिए जगन्नाथ जी का प्रसाद लेकर सुबह सुबह उनके घर पहुंच गए। तो जब सुबह सुबह उनके घर पहुंच गए, तो अभी तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी उठे भी नहीं थे। तो जैसे ही वो उठे, उन्होंने महाप्रभु को देखा तो प्रणाम किया। महाप्रभु ने कहा, देखो सार्वभौम, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। सार्वभौम भट्टाचार्य जी जानते थे कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु साक्षात स्वयं भगवान हैं। तो उन्होंने कहा, प्रभु क्या लाए हैं आप मेरे लिए? महाप्रभु ने कहा, ये महाप्रसाद है तुम्हारे लिए, ये पाओ। तो महाप्रसाद को देखते ही एक बार भी नहीं सोचा सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने कि अरे अभी तो मैंने दातुन नहीं किया है, अभी तो स्नान नहीं किया है, अभी तो मैंने भगवत अर्चना नहीं की है, मैं कैसे पाऊं। प्रसाद को ना नहीं कहा और तुरंत पा लिया। महाप्रभु गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए, और उन्होंने कहा, आजी तुम्हें निष्कपटे होइला कृष्णाश्रय, कृष्ण आजी निष्कपटे तुमा होइलो सदय, आजी से खंडिलो तुमार देह आदि बंधन, आजी तुम्हें छिन्न कोइले मायार बंधन, आजी कृष्ण प्राप्ति योग्य होइलो तुम्हार मन, वेद धर्म लंघी कोइले प्रसाद भक्षण। कितनी बड़ी बात है।

0: भगवान से इतना प्रेम, इतना प्रेम कि भगवत प्रसाद के सामने आते ही एकदम विवल हो गए और भगवत प्रसाद का सेवन किया, वेद धर्म का लंघन कर दिया भगवान के प्रेम में। इसलिए महाप्रभु ने प्रसन्न होकर कहा, आज ही सार्वभौम तुमने निष्कपट रूप से श्री कृष्ण का आश्रय ग्रहण किया है और आज ही श्री कृष्ण भी तुम्हारे प्रति सदैव हैं। आज से तुम्हारा देह आदि बंधन खंडित हो गया है, आज तुमने स्वयं ही माया का बंधन तोड़ दिया है, आज तुम्हारा मन कृष्ण प्राप्ति की योग्यता प्राप्त कर चुका है। तो जब तक कोई व्यक्ति भगवत विद्या से युक्त नहीं होता, तब तक वो कुकुर शिगाल के द्वारा खाए जाने वाले देह में मैं और मेरा इस विचार को रखता है, वो इसी में व्यस्त रहता है दिन रात। शरीर का शुद्धिकरण, शरीर को सजाना, शरीर को सुंदर बनाकर रखना, शरीर के चारों तरफ उसका ध्यान रहता है, इंद्रियों के चारों तरफ, इंद्रियों को संतुष्ट करता है तो उसे लगता है मैं संतुष्ट हो गया, परंतु वो संतुष्ट होता नहीं है, है ना। तो इसलिए वो तुरंत ही माया से पार नहीं हो पाता, क्योंकि माया तो भगवान की शक्ति है। जब तक वो अविद्याग्रस्त रहेगा, देह को मैं समझेगा और दैहिक को मेरा, तब तक वो भगवान की माया से पार नहीं हो सकता। और भगवान तो अधोक्षज है ना, अधोक्षज यानी वो इंद्रियों के अधीन नहीं है, इंद्रियों के ज्ञान से उनको नहीं जाना जा सकता, है ना। तो जो लोग निष्कपट भाव से भगवान की शरणागति ग्रहण करते हैं और बाहरी जगत की इंद्रिय परवशता को अतिक्रम कर लेते हैं और आत्मा से भगवान के चरणों में शरणागति लेते हैं, तब भगवान उनको ज्ञान भी देते हैं और उनका उद्धार करने के लिए उन पर दया करते हैं, अनुकंपा करते हैं। तो जीव तो जब तक अविद्याग्रस्त है, तब तक इस अविद्याग्रस्त रूप में वो अपनी चेष्टाओं के द्वारा श्री भगवान के एकांत भाव से शरणापन्न नहीं हो सकता। अगर कोई कहे कि अरे भाई तुम क्या दुनिया में भटकते रहते हो, तुम एकदम संसारी हो गए हो, भगवान की शरणागति लो, तो क्या वो कर सकता है? तो यहां पर आचार्य कह रहे हैं नहीं, वो चाहे भी तो नहीं कर सकता है, ये असंभव है। तो फिर उसको भगवान के भक्तों का आश्रय लेना पड़ेगा, भक्तों का आश्रय, ऐसे भक्त जो भगवान के शरणागति को प्राप्त कर चुके हैं, है ना। क्योंकि व्यक्ति जब एकदम कपटी हो जाता है तो सोचता है कि जगत में जो कुछ भी मैं देख रहा हूं वो सब भगवत भ्रांति है, यानी कुछ भी नहीं है, सब कुछ तो मुझे दिखाई देता है, अगर भगवान होते तो मुझे वो दिखते ही, सब कुछ मैं देख रहा हूं। परंतु उससे पूछे अगर कोई कि अच्छा तुम हवा देख रहे हो या तुम गुरुत्वाकर्षण को देख रहे हो, ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, हर चीज गिर रही है और जब हम कोई भी चीज ऊपर फेंकते हैं वो नीचे आ जाती है, तो बता दिया जाता है भाई ये गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ। तो गुरुत्वाकर्षण तो शक्ति है, देख पा रहे हो क्या? नहीं, नहीं देख पा रहे हो तो यानी क्या वो है? नहीं है। तो इसीलिए कहा गया कि जब तक द्वितीय अभिनिवेश रूपी भोग रहेगा ना, तब तक भगवान की असली दया से व्यक्ति को वंचित होना पड़ेगा। द्वितीय अभिनिवेश क्या होता है, यही चर्चा करेंगे हम, सुनते रहिए समर्पण।
1: आप सुन रहे हैं कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम समर्पण। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इन फोन नंबर्स पर 9350 9811256747 और 9818451411। आप अपने प्रश्न हमें लिखकर भेजिए या रिकॉर्ड कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9193278889। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारी वेबसाइट www.krishnapremdharatrust.com।
0: कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेमधारा। हम चर्चा कर रहे थे कि जब तक जीव अविद्याग्रस्त रहता है तब तक वो भगवान की तरफ मुड़ नहीं पाता है, और जब तक वो मुड़ता नहीं है तब तक भगवान की वास्तविक दया उस पर नहीं हो पाती है। हालांकि भगवान ने दया तो सबके प्रति की ही है, है ना। हम सांस ले पा रहे हैं, खा रहे हैं, पचा रहे हैं, काम कर पा रहे हैं, बहुत कुछ हम जो कर पा रहे हैं वो सब भगवान की कृपा के कारण ही है। सृष्टि भगवान की, देह उन्होंने दी, सब कुछ तो उन्हीं का दिया हुआ है। लेकिन हम अगर बारंबार देह में फंसने से बचना चाहें तो हम बच नहीं सकते हैं, जब तक कि भगवान की शरणागति ना लें, भगवान के भक्तों का आश्रय ना लें, तब तक होगा नहीं। तो चूंकि हम द्वितीय अभिनिवेश रूपी भोग में व्यस्त रहते हैं, इसलिए हम भगवान के दया से वंचित हो जाते हैं। तो भगवान की दया तो हम पर है, ये तो वही बात है कि भगवान की दया रूपी बरसात हो रही है, लेकिन जहां गड्ढा होगा वहीं वो पानी रुकेगा, है ना। और जो सपाट जगह है या ऊंची जगह है वहां से तो बह जाएगा। तो हम द्वितीय अभिनिवेश के कारण, यानी ये जो असत्य वस्तु है देह, जड़ वस्तु, इसको जब हमने मैं समझ लिया तो हमारा इस मैं के प्रति जो अभिमान है वो बड़ा ही पुष्ट हो गया, अहंकार पुष्ट हो गया, और उसके कारण भगवान जो दया करना चाहते हैं हम पर, भगवान अपने रूप का, अपने धाम का माधुर्य हमें आस्वादन कराना चाहते हैं, वो कर नहीं पाते, क्योंकि द्वितीय अभिनिवेश हमारा प्रगाढ़ है। और प्रथम अभिनिवेश तो यही है कि हे भगवान, आप मेरे हैं, मैं आपका हूं, मैं आपका सेवक हूं, ये प्रथम अभिनिवेश है। और द्वितीय अभिनिवेश कि मैं ये शरीर हूं, शरीर मेरा है, शारीरिक जितने भी संबंधी हैं वो मेरे हैं। तो इसके कारण भगवान के माधुर्य से, उनके प्रेम लीला से हम वंचित हो जाते हैं, है ना। और अपने इस सीमित बुद्धि से हम भगवान को मापने का प्रयास करते हैं। तो जड़ वस्तु को मापने के लिए तो हमारी इंद्रियां हमें मिली हैं कि ठीक है, आप जड़ वस्तु को माप लीजिए, लेकिन वो भी जो परिमित है, सीमित है, उसे ही शायद हम माप लें। पर ब्रह्मांड भी तो जड़ वस्तु है, हम कैसे माप सकते हैं? हर जड़ वस्तु को तो हम माप नहीं सकते ना। तो फिर वैकुंठ वस्तु को हम कैसे माप सकते हैं? भगवान को कैसे माप सकते हैं? नहीं माप सकते। तो इसीलिए हम भगवान के दर्शन अधिकार से वंचित हो जाते हैं। और अगर हम ये चाहें अपनी चेष्टा के द्वारा कि हम इंद्रिय ज्ञान से मापने की वृत्ति से छुटकारा पा जाएं, तो चूंकि हम अविद्याग्रस्त हैं, भगवत विद्या को जानते नहीं हैं, भगवान की महिमा नहीं जानते हैं, माया क्या है, इसका स्वरूप क्या है, हम कुछ तो जानते ही नहीं हैं। तो अविद्याग्रस्त जो जीव है वो अपनी चेष्टा के द्वारा कभी भी इंद्रिय ज्ञान के द्वारा मापने की वृत्ति से छुटकारा नहीं पा सकता। तो जब तक ये छुटकारा नहीं मिलता, हम भगवान का नाम भी नहीं ले सकते, क्योंकि उसे भी तोलते मोलते रहेंगे हम लोग। तो फिर कैसे हो सकता है, क्या उपाय है? तो उत्तर है कि अगर हमारी इंद्रियां भगवान की सेवा के उन्मुख हो जाएं, है ना, यानी अगर कोई नाम कीर्तन करना चाहता है तो वो सेवा उन्मुख

गंध स्पर्श शब्द की सेवा में नियुक्त करने में समर्थ हो सकते हैं। और अगर ऐसा कर लें तो माया को अतिक्रम किया जा सकता है, नहीं तो माया से पार नहीं हुआ जा सकता। भगवान की माया गुणमयी माया है। भगवान ने कहा है कि मम माया दुरतया, पार नहीं हो सकते। लेकिन भगवान ने स्वयं कहा है गीता में भी, मामे ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे, जो मेरी शरणागति लेते हैं फिर माया उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, तब वो माया से पार हो जाते हैं। सोचिए कीट कीटाणु जीव भला माया से पार हो सकता है? तो उत्तर है हाँ, हो सकता है। अगर भगवान की कृपा हो तो क्या नहीं हो सकता है ना। तो वास्तव में जब हमारे चित्त में निष्कपटता आ जाती है तो भगवान का स्वरूप समझ आने लगता है। समझ आ जाता है कि तुम ही तो मारी बे जारे के तारे राखिते पारे, तब इच्छावश त्रिभुवन ब्रह्मा आदि देवगण तव दास अगणन करे तव आज्ञा रूपालन। कि हे प्रभु, आप अगर जिसे मारना चाहें आप, तो उसे कौन बचा सकता है, क्योंकि आपकी इच्छा के वश त्रिभुवन है। त्रिभुवन ब्रह्मा आदि जितने देवगण हैं सब के सब आपके दास हैं, आपके अनगिनत दास हैं, और ये समस्त देवगण आपकी आज्ञा का ही पालन करते हैं। देखा जाए तो भगवान के दास सिर्फ ब्रह्मा आदि देवगण ही नहीं है, श्री कृष्ण के दास तो अन्य भगवत स्वरूप भी हैं। जितने भगवत स्वरूप हैं श्री कृष्ण से ही प्रकट हैं, सब भगवान के दास हैं। तब इच्छा मते जतो ग्रह गण अविरतो शुभाशुभ फल करे दान रोग शोक मृत्यु भय। तब इच्छा मते होए तब आज्ञा सदा बलवान। प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार ही समस्त ग्रह गण शुभ अशुभ फल दान करते हैं। रोग शोक मृत्यु भय सब आपकी इच्छा अनुसार होता है, आपकी आज्ञा ही सदा बलवान रहती है ना। अगर कोई सोचे कि भाई नहीं, हमें तो इस ग्रह को शांत करना है तो ये पूजा देनी है, उस ग्रह को शांत करना है तो वो पूजा देनी है, ये करना है वो करना है, तो यहाँ पर हमारे आचार्य कहते हैं नहीं, आप सिर्फ भगवान का भजन कीजिए, क्योंकि जो ग्रह है वो शुभ अशुभ फल भगवान की इच्छा से ही दान करते हैं, उनमें वो प्रवृत्ति भगवान की इच्छा के कारण ही है, उनकी अपनी स्वतंत्र इच्छा चल नहीं सकती है। तो हमें सिर्फ भगवान के चरणों का आश्रय लेना है, हमें नहीं सोचना है कि आगे हमारे साथ क्या होगा, क्योंकि रोग शोक मृत्यु भय सब भगवान की इच्छा अनुसार है। तो फिर क्या डरना, क्योंकि तव भय वायु भय चंद्र सूर्य समुदय स्व स्व नियमित कार्य करे। तुम्ही तो परमेश्वर पर ब्रह्म परात पर तव वास भगत अंतरे। तो हे प्रभु, आपकी इच्छा अनुसार ही सूर्य चंद्र उदित होते हैं और उनको जो कार्य दिया गया है वो कार्य करते हैं। आप ही हैं परमेश्वर हे कृष्णा, आप ही हैं पर ब्रह्म परात पर, और आप रहते कहाँ हैं? आप भक्तों के हृदय को कभी नहीं छोड़ते हैं, आप भक्तों के हृदय में ही वास करना पसंद करते हैं, है ना। आप भक्तों के नित्य स्वामी हैं, नित्य स्वामी। तो आप जिसकी रक्षा करेंगे उसे भला कौन मार सकता है, क्योंकि आप ही समस्त विधि के विधि हैं। इसलिए हे प्रभु, आपके चरणों में ही हम प्रणिपात करते हैं, आप समस्त विपत्तियों से अवश्य ही हमारी रक्षा करेंगे, हमारा ये अटूट विश्वास है आप पर। तो सही बात है, भगवान ही रक्षक हैं, भगवान ही पालन करते हैं, और भगवान भक्त वत्सल हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान को पाने की इच्छा रखनी होगी, भगवान को पाने की भी इच्छा रखनी होगी, ऐसा नहीं है, भगवान की सेवा को पाने की ही इच्छा रखनी होगी। और इसे महसूस करना होगा हृदय से कि जब तक भगवान के चरणों की सेवा मिलती

ती नहीं है जब तक उनके चरणों में हमारा अनुराग पैदा नहीं होता है, तब तक हमारा जीवन विफल है। अगर इस बात को हम अच्छी तरह से समझ जाएं, तो अवश्य ही भगवान की कृपा, उनकी दया हम पर भी बरसेगी और हम अवश्य ही उनकी सेवा को पाकर धन्य होंगे। तो ये था आज का कार्यक्रम आपके लिए। इसी के साथ अब आज्ञा दीजिए, प्रेम धारा को कीजिए स्वीकार। मेरा नमस्कार।

ये थी कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट की प्रस्तुति कार्यक्रम समर्पण।

नमस्कार, स्टूडियो की घड़ी में 7:00 बज गए हैं और लीजिए सुनिए अभी तक की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुधार उनकी सरकार के लिए मजबूरी नहीं बल्कि प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अंतरिक्ष स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भारत की सांस्कृतिक जड़ों को सुरक्षित रखने की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि संस्कृति देश को एकजुट करने वाली मजबूत कड़ी है। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल और भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल की बल और सशस्त्र सीमा बल को 1129 एकड़ जमीन देने के राज्य सरकार के फैसले की सराहना की है। भारत और नेपाल ने सीमा प्रबंध और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। देहरादून में हुई भारत नेपाल संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक में दोनों देशों ने आपसी सहयोग के विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की। भारत ने आश्वस्त किया है कि देश घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। जयपुर में कल ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक हुई। जयपुर घोषणा पत्र पारित हुआ और संयुक्त रणनीति पर सहमति बनी। भारत की मेजबानी में आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा कार्य मंत्रियों की बैठक होगी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया बैठक की अध्यक्षता करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगले महीने की 5 तारीख को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का अनुमान जताया है। वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड में भी इसी तरह के मौसम की संभावना है। स्लोवाकिया में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की काजल ढोचक ने महिलाओं के 76 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। तनु शर्मा और सविता ने रजत पदक जीते और भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने स्विट्जरलैंड में लुजान डायमंड लीग में रजत पदक जीता। उन्होंने 88.05 मीटर तक भाला फेंक कर दूसरा स्थान हासिल किया। यदि अभी तक की खास खबरें, बने रहिए रेनबो स्टेशन के साथ।

Namaskar, a very warm, beautiful, gulabi and a rainy good morning to all the listeners of Rainbow Station. This is your dost Khushi aur shuruaat karte hain aaj ke is khoobsurat Saturday ki ek nayi energy, ek nayi umeed aur ek pyari si muskaan ke saath. Ab chahe aap apne ghar mein hain, morning walk par nikle hain, office ke liye ready ho rahe hain ya phir weekend ki planning kar rahe hain, bhai Saturday hai, barish ho rahi hai, wahan nahi ja sakte kyunki wahan ho sakta hai thoda sa pani ho, wahan ja sakte hain kyunki wo jagah achhi hai. Ab jo bhi planning kar rahe hain, I mean jahan par है, बस अपने रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लीजिए क्योंकि हम साथ हैं इस सुबह को थोड़ा और चीयरफुल और म्यूजिकल बनाने के लिए. स्टे ट्यून्ड.

0: दिस ट्रैक वॉज फ्रॉम द मूवी ये जवानी है दीवानी, मोहित चौहान की आवाज में गाना चल रहा था रेनबो स्टेशन 102.6 पर। टाइम बस स्टूडियो क्लॉक इज 11:07 और आज है 22 अगस्त। तो 22 अगस्त का इतिहास देश और दुनिया की कई महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़ा है, जैसे कि 1639 में मद्रास, जो कि वर्तमान चेन्नई कहलाता है, इसकी स्थापना की गई थी। इस दिन को मद्रास दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। साथ ही 1921 में राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भरता के लिए विदेशी कपड़ों की होली जलाई थी। और 2012 में प्रणब मुखर्जी ने भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला था। तो याद रखना भाई, अपने देश, दुनिया का इतिहास, इस तारीख की कितनी सारी मेमोरीज हैं, क्या क्या कब कब हुआ था, थोड़ा बहुत तो हम सबको पता ही होना चाहिए। और अगर आपने ये मेरी बात सुनी है तो आप इसको फ्लोट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपकी जनरल नॉलेज कितनी अच्छी है और आज के दिन क्या क्या हुआ था आपको पता है। लेती हूँ छोटे से ब्रेक और मिलती हूँ आप सभी लिसनर से छोटे से ब्रेक के बाद।
1: NCR EPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
2: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

पता है, ये तो सिखा रहे थे हमें कि मेडिटेशन कैसे करते हैं। अगर आपने मेडिटेशन करना सीखना है ना, तो अपने दिल को धड़कने दो और ये धड़कन सुनने की कोशिश करो। और ये धड़कन पता है कब सुनाई देती है? आपको लगता होगा कि यार इतनी ज्यादा शोर शराबे वाली दुनिया में हम लोग अपने ही दिल की धड़कन क्या सुन सकते हैं? हम बिल्कुल सुन सकते हैं जब हमारा मन शांत होता है। मेडिटेशन बहुत ही बढ़िया चीज है। आज है 22 अगस्त, कमिंग बैक टू द टॉपिक, और आज मनाया जाता है राष्ट्रीय देवदूत दिवस। आपको पता है देवदूत कौन होते हैं? इंग्लिश में बताती हूँ, नेशनल बी एन एंजल डे, जो एंजल की तरह हमें दिखता है। भगवान इस धरती पर खुद नहीं आते हैं, भगवान किसी न किसी रूप में हमारी मदद कर ही देते हैं और वो हमारे लिए एक एंजल बन जाते हैं। यही 22 अगस्त का दिन, ये दिन जरूरतमंदों की मदद करने, परोपकार करने या फिर समाज में सहयोग की भावना को बढ़ाने के लिए समर्पित है। जो लोगों को अच्छे कार्य करने और दूसरों के प्रति जो दयालुता होती है ना, उसको दिखाने के लिए प्रेरित करता है। सो बी एन एंजल फॉर समवन। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ किसी की मदद कर सकते हैं पैसे के थ्रू। नहीं नहीं, जरूरी नहीं है कि आपके पास पैसे ही देंगे तो उसकी मदद हो जाएगी। नहीं, आप किसी को स्माइल दे सकते हैं, आप किसी को हेल्प कर सकते हैं। अगर कोई इंसान उसी रूट पर जा रहा है

तो आप उसे पूछ सकते हैं, चलो मैं तुम्हें लिफ्ट दे देता हूँ। ये सब सब मदद करने के तरीके होते हैं। पता है मदद करते क्यों हैं? क्योंकि जो हम देते हैं वो हमें मिलता है। अगर आप पैसा देंगे ऑब्वियसली तो पैसा भी मिलेगा, 4 गुना 5 गुना हो गया मिलेगा। खुशियाँ देंगे खुशियाँ मिलेंगी। हेल्प करोगे तो जब आपको ज़रूरत होगी तब आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा कोई ना कोई मौजूद होगा। तो प्लीज़ कोशिश करिए देवदूत बनने की, क्योंकि आज है राष्ट्रीय देवदूत दिवस, यानी कि नेशनल बी एन एंजल डे। लेकिन इसको सिर्फ 22 अगस्त तक सीमित नहीं रखना, रोज कोशिश करना कि किसी ना किसी की कोई ना कोई कुछ ना कुछ मदद कर दे।

0: आज है 22 अगस्त और 22 अगस्त के दिन जिन महान हस्तियों ने हमें अलविदा कह दिया उनमें हैं यू आर अनंतमूर्ति जी, जो कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कन्नड़ भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार, आलोचक और शिक्षाविद थे। साथ ही सैयद शाहिद हाकिम, जो कि पूर्व भारतीय फुटबॉलर थे। लेती हूँ छोटे से ब्रेक और मिलती हूँ आप सभी लिस्नर से छोटे से ब्रेक के बाद।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
7: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: सोचिए महीने के आखिर में जेब खाली हो और अचानक से कहीं से कुछ पैसे मिल जाए, तब जो खुशी होती है उसका तो ठिकाना ही नहीं रहता। शुक्रवार को भारतीय बैडमिंटन फैंस को ऐसी ही खुशी का, हर्षोल्लास का एहसास हुआ। बुधवार और गुरुवार पीवी सिंधु, आयुष शेट्टी और लक्ष्य सेन जैसे प्रबल दावेदारों को हारता देख मानो मायूसी का अंधेरा छा गया था, लेकिन फिर रोशनी की ऐसी खिड़की खुली जिसकी कल्पना बैडमिंटन के प्रकांड पंडितों ने भी नहीं की थी। जी हाँ, BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप्स 2026 में भारत का एक पदक सुनिश्चित हो चुका है। ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने ये पदक वुमेन्स डबल्स में हासिल किया है, एक ऐसी कैटेगरी जहां इससे पहले पदक 2011 में यानी 15 साल पहले ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा की जोड़ी ने भारत को दिलाया था। ट्रीसा ने कहा,
1: Finally this happened and obviously really happy that we converted this win into this semi-finals and getting a medal, but it's not stopping it. There is matches are coming tomorrow also. Obviously I want to thank the crowd people. I think the crowd was amazing today. That was really giving that positive vibes to us.
0: इस पदक की महक सूखे के बाद पड़ने वाली पहली बारिश जैसी इसलिए भी है क्योंकि ट्रीसा और गायत्री का ये साल मुश्किलों में कटा है। अप्रैल में ट्रेनिंग के दौरान ट्रीसा के टखने में लगी चोट के चलते ये जोड़ी ना ही एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप खेल पाई और ना ही प्रतिष्ठित उबर कप में हिस्सा ले पाई।
1: बिफोर एशियन चैंपियनशिप आई गॉट इंजर्ड 3 डेज बिफोर, दैट वाज काइंड ऑफ ऑब्वियसली इट्स बीन सैड एंड इमोशनल एंड काइंड ऑफ मिसिंग दोस मेजर टूर्नामेंट्स रिप्रेजेंटिंग इंडिया एंड ऑल दोस मोमेंट्स आई मिस्ड। आई थिंक दोस टाइम्स देयर इज सो मच ऑफ अप्स एंड डाउन्स that these many years that we all went through, now it's we are in a great shape and we just want to continue that.
0: यहाँ भी क्वार्टर फाइनल में चुनौती कड़ी थी। सामने चीन की मजबूत जोड़ी थी जिसका एक हिस्सा थी प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ी जांग शू शियान और दूसरी थी पेरिस ओलंपिक्स 2024 में गोल्ड मेडल जीतने वाली जिया यी फान। और शुरुआत भी ऐसी हुई, जब तक ट्रीसा और गायत्री अपने रंग में आती तब तक स्कोर 9-2 का हो चुका था, लेकिन फिर भारतीय जोड़ी ने 6 पॉइंट लगातार लिए। इसके बावजूद वो पहला सेट 21-16 से हारी। गायत्री बताती हैं,
2: फर्स्ट गेम के बाद थोड़ा टैक्टिक्स चेंज किया हमने, स्टार्टिंग में थोड़ा ट्रिकी था पर आई थिंक थोड़ा काम रह के हमने निकाल लिया। वी डोंट वांट टू रिवील टू मच ऑफ द स्ट्रेटजी बट

0: रोटेटिंग, वी जस्ट वांटेड आवर लेग्स टू मूव।
1: पर कोर्ट साइड पर बैठे मेंटोर और गायत्री के पिता पुलेला गोपीचंद और कोच बी सुमित रेड्डी ने सिर्फ एक ही मूल मंत्र दिया, स्टे काम।
0: He always said like just calm down and just be in the present moment. I think that really worked today. That's the kind of advice he gave behind us.
1: दूसरे सेट में कांटे की टक्कर हुई, स्कोर 15-14 तक पहुंचा और उसके बाद गायत्री और ट्रीसा ने मानो टॉप गियर डाला, 6 पॉइंट लगातार जीतते हुए 21-15 से वो सेट अपने नाम कर लिया।
0: The crowd was so amazing. The crowd that gave us that confidence even we lost the first game also. They were in full josh that come on girls, you can do this. And I think that really helped us.
1: तीसरे सेट में चीनी जोड़ी ने एक बार फिर अच्छी शुरुआत की, भारतीय जोड़ी 1-4 से पीछे थी और फिर 8 पॉइंट लगातार ट्रीसा और गायत्री ने लिए और अंततः इस मुकाबले को 21-13 से जीता। इस जीत पर कोच सुमित रेड्डी ने कहा,
2: मैच आज का तो बहुत अच्छा गया है, जैसा लड़कियां ने खेला हम तो बहुत ही खुश है एंड उसके साथ मेडल आ गया, आई थिंक वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। दोनों बहुत ही बेहतर खेले, जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो लोग खेले, इतने हजारे लोगों के बीच में खेलना मजाक की बात नहीं है, तो आई थिंक बहुत कॉन्फिडेंस खेले।
1: इस जीत के बाद सेमीफाइनल का टिकट कन्फर्म हो गया है, यानी ब्रॉन्ज मेडल आना सुनिश्चित है, लेकिन उससे मन कहां भरने वाला है तो सबके मन में एक ही सवाल है,
3: गोल्ड आएगा?
2: वो कल देखेंगे, कल का हम अभी ओपोनेंट्स का भी मैच देखना है, देख के हम ऑब्वियसली बोलेंगे हमारा प्लेयर्स को कि मोस्टली ओपोनेंट्स क्या करने वाले हैं एंड आई थिंक गोपी सर ऑलरेडी मैच से पहले डिस्कस कर रहे हैं, तो गोपी सर के साथ एक बार डिस्कस करने के बाद आई थिंक उसके हिसाब से सर प्लान करके बोलेंगे।
1: सेमीफाइनल में सामने होने वाली है पहली वरीयता प्राप्त चीन से ही आने वाली लियू शेंगशू और टैन निंग की जोड़ी, जिससे पहले भी ट्रीसा और गायत्री 6 बार हार चुके हैं, लेकिन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद जीतना अब इस जोड़ी की फितरत है और इसलिए शनिवार को होने वाले सेमीफाइनल का हमें बेसब्री से इंतजार है। शाम होते होते इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में शोर बढ़ने लगा, क्योंकि अब बारी थी बीते वर्षों में 2 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में पदक लाने वाली सात्विक साईराज रांकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी की। ये जोड़ी भी पिछले कुछ महीनों में चोट से जूझती आई है, वही सात्विक की लंबे समय से तंग करने वाली कंधे की चोट।
4: Yeah, just managing myself. So sometimes I feel very good in the one tournament. The next day I feel very tight. The next day I feel very worse. The next day I feel like 100%. So it's kind of complicated with my shoulder. But I just need to manage myself and play.
1: हालांकि क्वार्टर फाइनल में शुक्रवार को सामने कई मौकों पर भारत के लिए सिरदर्द बनी चीन की लियांग और वांग की जोड़ी थी। थॉमस कप, मलेशियन ओपन, चाइना मास्टर्स, हर बार ये प्रतिद्वंद्वी भारतीय जोड़ी के आड़े आए हैं, लेकिन गड़गड़ाती तालियों के बीच और भारतीय फैंस की हौसला अफजाई के समक्ष रंकी रेड्डी और शेट्टी ने एक अच्छी शुरुआत की। पहले गेम में 18-16 से लीड भी बना ली थी, लेकिन उसके बाद पासा ऐसा पलटा कि धीरे धीरे दर्शक दीर्घा से आने वाली आवाज कम होती गई और अंत में एक हताशा भरी चुप्पी में तब्दील हो गई। 18-16 से पिछड़ने वाली लियांग और वांग की जोड़ी ने 5 पॉइंट लगातार लेकर पहला गेम जीता और दूसरे गेम को तो एक तरफा ही बना डाला, 21-9 से जीत हासिल की और महज 36 मिनट में इस मुकाबले को 2 सीधे सेटों में जीतकर सेमीफाइनल का टिकट बुक कर लिया।
4: They were quite good in the first 4 shots. Whoever controlled the first 4 shots in the first set, we are controlling it. They got confident after 1 or 2 points. So if it is rally game, it's anybody's game. It's 50-50 because both have the attack. The Chinese can attack as well. We can attack as well. But the difference was only the service and service return. They got that spin, so he got little bit confident in that towards the end. He started spinning differently rather than the first one. After second game, I think they got pretty much confident. They are everywhere, wherever we are hitting, they're just playing their game. So I think, yeah, kudos to them. But yeah, we could have put little bit more tighter from our side. But yeah, I think we'll go back and learn what we did.
1: हार के बाद मायूस चिराग शेट्टी ने कहा,
5: पहला गेम काफी अच्छा था, 18 तक हम लीड भी कर रहे थे, जो गेम प्लान हमने सेट किया था वो काफी अच्छा वर्क भी कर रहा था। After we lost the first game, they came back a lot more harder in the second game. We played decent, I wouldn't say we played bad, but जहाँ पर हमको लगा कि हमें पॉइंट मिलेगा, मिल नहीं पाया क्योंकि they were playing quite a solid game. A lot of the points हमें लगा फिनिश हो जाएगा, वो फिनिश नहीं हुआ और काफी अच्छे से उन लोग उसको ऑफेंस में कन्वर्ट कर रहे थे, थोड़ा

0: डिसअपॉइंटिंग है, बट आई थिंक दैट इज हाउ स्पोर्ट इज।
1: शनिवार के दिन इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम के कोर्ट 1 में सेमीफाइनल के मुकाबले खेले जाएंगे, जहां भारतीय प्रशंसकों की नजरें गायत्री और ट्रीसा के मैच पर होंगी, तो वहीं वुमेन्स डबल्स के दूसरे सेमीफाइनल में चीन की ली और लुओ के सामने होंगी दक्षिण कोरिया से आने वाली पूर्व नंबर 1 बेक और ली की जोड़ी। महिलाओं के एकल वर्ग में दो दिग्गजों के बीच मुकाबला होगा, चीन की वांग ज़ीयी के सामने होंगी मौजूदा ओलंपिक चैंपियन आन से युंग, जिनका पूरी तरह से फिट ना होने के बावजूद भी इस टूर्नामेंट पर दबदबा कायम रहा है। युंग कहती हैं कि उनका फोकस प्रतिद्वंदी पर नहीं उनके खुद पर होता है।
2: My goal is to achieve a great result any tournament. Yeah, I just focus on myself and one point at a time.
1: दूसरे सेमीफाइनल में दिखेंगी थाईलैंड से आने वाली पोर्नपावी चोचुवांग, जिनको क्वार्टर फाइनल में वॉकओवर मिला, उनके सामने जापान की अकाने यामागुची होगी। पुरुषों के सिंगल्स में चाइनीज ताइपे के चाउटिन चांग जापान के कोडाई नारोका को चुनौती देंगे, तो दूसरे सेमीफाइनल में कनाडा के विक्टर लाई के सामने होंगे फ्रांस के एलेक्स लानियर, जो कांस्य पदक जीतने से ही बहुत खुश हैं, लेकिन पदक का रंग बदलने के लिए भी उतने ही उत्सुक। प्रोड्यूसर शाहनवाज खान और एडिटर वंदना के साथ इंदिरा गांधी स्टेडियम से मोहम्मद शाहिद आजमी की खास रिपोर्ट लिए आकाशवाणी के लिए मैं दर्पण तिकिया।

सुल्ताना और ज्योति नूरान की आवाज में दिस ट्रैक वाज फ्रॉम द मूवी हाईवे। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग दिल्ली आपके आरजे खुशी के साथ। टाइम बस स्टूडियो क्लॉक इज 44 मिनट्स पास्ट 7 और बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप की आपने हमारी डेली प्रोग्राम वाली हाईलाइट्स तो सुन ली है, लेकिन इसके अलावा स्पोर्ट्स की और अपडेट अगर आपको मैं बताना चाहूं तो हमारे स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में शानदार प्रदर्शन करते हुए सीजन का सर्वश्रेष्ठ 88.05 यानी कि 88.05 मीटर का थ्रो किया है। वहीं महिला हॉकी वर्ल्ड कप की बात करूं तो भारतीय टीम का मुकाबला नीदरलैंड के खिलाफ हुआ है, बहुत ज्यादा संघर्ष किया, बहुत ही ज्यादा अच्छा मैच हुआ, फाइटिंग हुई, लेकिन टीम हार गई। इससे पहले भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अगले दौर की राह मजबूत की थी। और क्रिकेट के बारे में आपको बताऊं तो जैसे कि श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच में शानदार जीत दर्ज हो गई है भारत की, और जिसमें मानव सुथार और देवदत्त ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। और इसके अलावा ऋषभ पंत, इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रच दिया है। अब जैसे जैसे हवाएं चलेंगी इतिहास बदलते ही रहेंगे।

0: आज के दिन जिन महान हस्तियों ने जन्म लिया लेकिन अब हमारे बीच में नहीं रहे, उनमें हैं रेवा प्रसाद द्विवेदी जो कि काशी के प्रकांड विद्वान थे, साथ ही सोमभू मित्रा जो कि फिल्म और रंगमंच अभिनेता, निर्देशक और नाटककार थे। लेती हूँ छोटा सा ब्रेक और मिलती हूँ आप सभी लिसनर्स से छोटे से ब्रेक के बाद।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप

गई हैं स्टूडियो में। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर को कंटिन्यू करने के लिए मैं आपसे मिलूंगी 9 से 10 दिल के तराने गाने नए पुराने प्रोग्राम में। बट सुनते रहिए रेनबो स्टेशन और जुड़े रहिए रेनबो स्टेशन के साथ।

लीजिए पेश है अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सुधार उनकी सरकार के लिए मजबूरी नहीं बल्कि प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अंतरिक्ष स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की, अंतरिक्ष के व्यापक उपयोग का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भारत की सांस्कृतिक जड़ों को सुरक्षित रखने की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि संस्कृति देश को एकजुट करने वाली मजबूत कड़ी है। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल को 1129 एकड़ जमीन देने के राज्य सरकार के फैसले की सराहना की है। भारत और नेपाल ने सीमा प्रबंधन और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। देहरादून में हुई भारत नेपाल संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक में दोनों देशों ने आपसी सहयोग के विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की। सरकार ने देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का आश्वासन दिया है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स युवा कार्य मंत्रियों की बैठक होगी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया बैठक की अध्यक्षता करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगले महीने की 5 तारीख को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का अनुमान जताया है। अम्स्टरडैम में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल सेमीफाइनल्स में आज भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी का सामना शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन की लियू शेंग शू और टैन निंग से होगा। स्लोवाकिया में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की काजल ढोचक ने महिलाओं के 76 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। तनु शर्मा और सविता ने रजत पदक जीते और भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने स्विट्जरलैंड के लुजान डायमंड लीग में रजत पदक जीता। उन्होंने 28.05 मीटर तक भाला फेंक पर दूसरा स्थान हासिल किया। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

जिसके लिए दीवानगी हो उसका इंतजार तो भाई कमाल है। हर घड़ी बढ़ते पल के साथ, एक पल खुशी तो अगले पल मायूसी। लेकिन ये सच है कि जो रुकता नहीं, थमता नहीं, समय तो बस चलता है, बढ़ता है, और इसी चक्र को जीवन कहते हैं। अब इस जीवन चक्र में आप उलझते हैं या साथ साथ चलते हैं, ये आपको तय करना है। लेकिन हम भी तय कर चुके हैं कि साथ साथ चलना है, साथ साथ बढ़ना है, साथ साथ मुस्कुराना है, और साथ साथ गीत संगीत को सुनना भी है। आप जुड़े हुए हैं FM रेनबो, जो है स्टेशन ऑफ द नेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। एक बार फिर से आपके साथ मैं पूजा शुक्ला, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR।

और मौसम का इशारा ये है कि ये गर्मी, ये उमस यूं ही बनी रहेगी। हालांकि आज सुबह से हल्की हल्की रिमझिम रिमझिम फुहार जो है वो दिल्ली एनसीआर में पड़ रही है, जो कि मौसम विभाग का अनुमान है कि एक दो दिन यानी आज और कल होगी। लेकिन इसी के साथ मौसम विभाग ये भी कह रहा है कि भाई इस महीने अब बारिश की संभावना कम है। अगस्त में जी बारिश का कोटा हो चुका है पूरा, तो जो बचे हुए दिन हैं अगस्त के उसमें बारिश की संभावना कम है, लेकिन उमस और गर्मी से हमें यूं ही जूझना पड़ेगा। खैर, पल पल बदलता है तभी तो मौसम कहलाता है। वीकेंड्स हैं, अब वीकेंड्स हैं तो घूमने जाना पड़ेगा। कहाँ कहाँ जा सकते हैं बताएंगे हम, बस जुड़े रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए एफएम रेनबो स्टेशन ऑफ द नेशन। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।

0: चाय बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
3: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल

आईना है जिंदगी, मुस्कुरा कर देखेंगे तो मुस्कुराएगी, हर दिन गजब लगेगा। अपनी मौज मस्ती को पेंडिंग मत रखिए क्योंकि समय का रिजर्वेशन नहीं होता, तो बस हमारे साथ जुड़े रहिए, सुनते रहिए FM Rainbow, स्टेशन ऑफ द नेशन।

जता दीजिए, बता दीजिए अपनी भावनाएं, अपने विचारों को हम तक पहुंचा दीजिए, जो कि आप करते भी हैं। आपके ढेर सारे मैसेजेस के लिए, संदेश के लिए धन्यवाद दिल की गहराइयों से। यूं ही आप जुड़े रहिए एफएम रेनबो, जो कि है स्टेशन ऑफ द नेशन, और बेहतरीन कार्यक्रम हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे, गीत संगीत और ढेर सारी जानकारियां। जुड़े रहिए, सुनते रहिए एफएम रेनबो, स्टेशन ऑफ द नेशन।

0: यही साथी आपकी सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी पूंजी है, आपका हौसला, हिम्मत, धैर्य है। जीवन में संघर्ष कितने भी बड़े हो, मुश्किलें कितनी भी बड़ी हो, रास्ता कितना भी लंबा हो, सफर कितना भी लंबा हो, लेकिन आपके पास अगर आपका साथी है तो बहुत झट से सफर कट जाता है। जैसे कि हमारा ये सफर आपके साथ कैसे आधा घंटा बीत गया पता ही नहीं चला। एक छोटा सा ब्रेक, आप जुड़े हुए हैं FM रेनबो जो है स्टेशन ऑफ द नेशन, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR। मेरा नाम पूजा शुक्ला। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।
1: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
3: मम्मी बस अभी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन अभी आई है।
4: बेटा कुछ खा लो, मेरठ आते आते शाम हो जाएगी।
3: अरे मम्मी 1 घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, आप बस खाना तैयार रखिए।
4: हैं इतनी जल्दी?
3: देश बदल रहा है मम्मी, अभी एयरपोर्ट जैसे ट्रेवलेटर पर चलकर साथ के नमो भारत सराय कालेखा स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ से ट्रेन पकड़ कर बस मिनटों में मेरठ।
5: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय कालेखा से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
6: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
7: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान, इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे, प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

वैसे इस मौसम में, इस बदलते मौसम में जरा सी भी आपको बेचैनी बेकरारी महसूस हो तो जरा ध्यान दें, क्योंकि ये मौसम है बीमारियों का। जी हाँ, इन्फ्लुएंजा की दस्तक से बचें। बस करें कुछ जतन, जैसे खांसने और छींकने के दौरान अपनी नाक और मुंह को कपड़े या रुमाल से जरूर ढकें। अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें, और फ्लू से संक्रमित हों तो घर पर ही आराम करें, बाहर ना निकलें। और यदि सामने वाला व्यक्ति इन्फ्लुएंजा से संक्रमित है तो उससे एक हाथ तक की दूरी बनाए रखें। अच्छी नींद लें, अच्छी खुराक लें, और अगर आपको फ्लू से संक्रमण का जरा भी संदेह हो, जैसा कि मैंने कहा जरा भी बेचैनी महसूस हो, तो तुरंत डॉक्टर को जरूर दिखाएं। तो बस ये सावधानियां बरतें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सुनते रहें FM रेनबो स्टेशन ऑफ द नेशन, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR। मेरा नाम पूजा शुक्ला।

सोचने की जरूरत ही नहीं, प्यार बेहद करते हैं हमारी प्यारी दिल्ली से, तभी तो सवरती दिल्ली पर नाज होता है। और अब तो शोर पर बैरियर, धुएं पर ब्रेक और प्रदूषण मुक्त दिल्ली का फॉर्मूला भी जी तैयार हो गया है। जी हाँ, मास्टर प्लान 2047 में विकसित दिल्ली के सपने को साकार करने के साथ ही प्रदूषण कम करने की पूरी तैयारी है, पूरा फोकस है। वायु प्रदूषण के साथ ही ध्वनि प्रदूषण भी इसमें अहम है। इसके साथ ही इसके तहत सड़कों पर नॉइज बैरियर लगाने, सड़कों के किनारे ग्रीन वॉल, आईटी और हाईटेक स्वच्छ उद्योगों को अनुमति देने जैसे प्रावधान किए गए हैं। और पोल्यूशन से निपटने के इस प्लान में सार्वजनिक परिवहन, इलेक्ट्रिक व्हीकल, हरित क्षेत्र और पैदल यात्री सुविधाओं को बढ़ाने का रोड मैप तैयार किया गया है। तो सस्ती सवरती दिल्ली, आपकी दिल्ली, हमारी दिल्ली, दिल वालों की दिल्ली, और ये कार्यक्रम भी तो दिल्ली का ही है। जी हाँ, गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, आप सुन रहे हैं, मेरा नाम है पूजा शुक्ला। एक छोटा सा ब्रेक जल्द हासिल होते हैं।

0: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, आज की धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती। दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
4: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
4: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

जरूर होगी, बस ये सोचकर मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और सुनते रहिए एफएम रेनबो स्टेशन ऑफ द नेशन राउंड द क्लॉक, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, क्योंकि मेरे बाद एक बार फिर से दिल के तराने गाने नए पुराने में आपके साथ होंगी खुशबू घई। और 10 बजे से कार्यक्रम होगा वेस्टर्न म्यूजिक मैच डेस्क, म्यूजिकार अदिति बिष्ट आपके साथ रहेंगी। 11 बजे सुनिएगा बबीता रावत के साथ बॉलीवुड ट्रेल्स, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

और अब 9 से 10 दिल के तराने, गाने नए पुराने आपके साथ रहेंगे खुशबू। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए पूजा शुक्ला का नमस्कार।

नमस्कार। स्टूडियो की घड़ी में 9 बज गए हैं और लीजिए सुनिए अभी तक की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुधार कोई मजबूरी नहीं बल्कि सरकार की प्रतिबद्धता और दृढ़ विश्वास है। कहा सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई गई। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 1129 एकड़ जमीन देने के राज्य सरकार के फैसले की सराहना की। भारत और नेपाल ने सीमा प्रबंध और सुरक्षा में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों ने पर्यटन, एआई और सुविधाजनक यात्री पर केंद्रित जयपुर घोषणा पत्र को स्वीकृति दी। सरकार ने देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी की पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का आश्वासन दिया है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स युवा कार्य मंत्रियों की बैठक होगी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया बैठक की अध्यक्षता करेंगे। द्रौपदी मुर्मू अगले महीने की 5 तारीख को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। असम, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित देश के पूर्वोत्तर हिस्सों में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में आज भारत की त्रिसा जाली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला चीन की शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी से। और अम्स्टल फैन में पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज शाम भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। स्लोवाकिया में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की काजल ढोचक ने महिलाओं के 76 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। तनु शर्मा और सविता ने रजत पदक जीते। साथ ही भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने स्विट्जरलैंड के लुजान डायमंड लीग में रजत पदक जीता। उन्होंने 88.05 मीटर तक भाला फेंक कर दूसरा स्थान हासिल किया। ये थी अभी तक की खास खबरें। बने रहिए रेनबो स्टेशन के साथ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: और अब आकाशवाणी पर मेरी वाणी इतनी ज्यादा नहीं सुनाई देगी क्योंकि आप सुनने वाले हैं बॉलीवुड का लेटेस्ट म्यूजिक, वो भी बैक टू बैक आप सुनेंगे बॉलीवुड के गाने और साथ ही 7:09, 9:30 यानी कि 9:15, 9:30 और 9:45 पर आप सुनेंगे रेनबो की ओल्ड डायरी से, जो मैं आपके लिए गीत संगीत लेकर आऊंगी ओल्ड इज गोल्ड वाले। साथ ही बैक टू बैक गानों का सिलसिला अब शुरू हो रहा है, बने रहिए रेनबो स्टेशन के साथ क्योंकि प्रोग्राम है दिल के तराने, गाने नए पुराने आपकी आरजे खुशी के साथ।

स्टूडियो की घड़ी में समय हो रहा है 9:15 और रेनबो की ओल्ड वाली डायरी से आपके लिए ये ब्यूटीफुल सा ट्रैक लेकर आई हूँ फ्रॉम द मूवी द बर्निंग ट्रेन।

0: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज़ एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
4: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
5: पता का चाय, गजब का स्वाद।

प्रोग्राम चल रहा है दिल के तराने, गाने नए पुराने जहां आप सुन रहे हैं बॉलीवुड के ट्रैक्स, वो भी बैक टू बैक। और इन्हीं बॉलीवुड के ट्रैक्स में रेनबो की ओल्ड डायरी से आपके लिए फिल्म रॉकी से लता मंगेशकर और किशोर दा

0: आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
1: और 102.6 पर ये प्रोग्राम चल रहा है आपके आरजे खुशी के साथ। और आपको बता देती हूँ इस वक्त दिल्ली का मौसम कैसा है। इस वक्त दिल्ली का टेम्परेचर है 32 डिग्री सेल्सियस ही, यानी कि 32 डिग्री सेल्सियस। और आज कल परसों तरसों नरसों हर दिन सूर्य देवता के दर्शन आपको नहीं होने वाले हैं, क्योंकि सूर्य देवता आप दिखाई देंगे हमें अगले शनिवार, क्योंकि मोस्टली सारा हफ्ता बारिश ही है या फिर बादल है या फिर हो सकता है ड्रिजलिंग हो या फिर बादल गरजे। तो भाई मानसून है, मजे कीजिए, इंजॉय कीजिए। और पूरे हफ्ते मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द वीक रहेगा 36 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम रहेगा 33 डिग्री सेल्सियस। लेती हूँ छोटा सा ब्रेक और मिलती हूँ आप सभी लिसनर्स से छोटे से ब्रेक के बाद।
2: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार
3: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो

सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।

0: सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने, FM रेनबो 102.6 पर।
1: बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक था मुकेश दा की आवाज में फ्रॉम द मूवी धर्म कर्मा। अब रेनबो स्टेशन पर अगले आने वाले प्रोग्राम्स की जानकारी आपको दे देती हूँ। 10 से 11 आप सुनेंगे प्रोग्राम मैचलेस म्यूजिक आवर, विच इज अ वेस्टर्न म्यूजिक प्रोग्राम, जो ये लेकर आएंगी अदिति बिष्ट। 11 से 12 आप सुनेंगे बॉलीवुड ट्रेल्स और बबीता बनाएंगी आज किसी को बॉलीवुड का सरताज। 12 से 1 आप सुनेंगे प्ले इट कूल अदिति के साथ, 1 से 2 मेरा वाला सॉन्ग, जहां आप कर सकते हैं अपने फेवरेट सॉन्ग्स रिक्वेस्ट। और जब अपना नाम अपने फेवरेट सॉन्ग के साथ रेडियो पर जब सुनने को मिलता है ना, तो रेडियो जॉकी को भी उतना मजा नहीं आता होगा जितना सुनने वाले को मजा आता है। ये प्रोग्राम आपके लिए लेकर आएंगे साइमा दीपिका के साथ, आप सुनेंगे प्रोग्राम आशियाना और माला भी होंगी उस प्रोग्राम में, जो आपको घर बैठे बैठे घुमाएंगी अमृत उद्यान। तो दीपिका और माला के साथ आप सुनेंगे प्रोग्राम आशियाना 2 से 3, और रेनबो पर प्रोग्राम्स का सिलसिला यूं ही कंटिन्यू रहेगा।

मॉनसून चल रहा है प्यार में नहीं, बारिश में भी भीगो, इतना बढ़िया मौसम चल रहा है। अगर आप घर पर ही वीकेंड सेलिब्रेट करना चाहते हो, बारिश आए या हाँ बारिश में नहाने का मजा ही कुछ और है। आरजे खुशी यानी कि मेरे जाने का वक्त आ गया, और जाने से पहले इतना ही कहना चाहूंगी कि जो वक्त होता है ना उसका काम ही गुजरना है, तो अगर अच्छा है शुक्र करो और बुरा है तो सब्र करो। इसी विचार के साथ आरजे खुशी को दीजिए इजाजत, खुश रहिए, खुश रखिए और सुनते रहिए रेनबो स्टेशन एंड एंजॉय सैटरडे।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: All right, welcome back. So, before that, you heard the Archies with Sugar Sugar. Now, the whole song is just fantastic. But there is specifically a line that comes somewhere in the middle, and it says, I'm going to make your life so sweet. It is actually spoken in a very high-pitched tone, and it does seem like sugar is talking to you itself. Sugar always finds us. You can avoid desserts all week, and then someone walks into the office with a birthday cake, or a festival comes along, like Rakhi, and you can hear sweet shops calling your name. And if you think that we will have to go to space to leave sugar behind, well, think again. Because even space has a sweet tooth. Because for the very first time, scientists have detected sugar in space. No, not sugar cubes, of course, but sugar molecules inside a cloud of gas and dust where new stars and planets are being born. So no matter where we go, sugar seems to get there first. All right, let's turn to our first retro Hindi melody of the hour, which is a big hit. Ek Pardesi Mera Dil Le Gaya from the 1958 film Fagun. Written by Kamar Jalalabadi, composed by O.P. Nair, and sung by Mohammad Rafi and Asha Bhosle.

0: You just heard a composition by Opie Nair, who was a huge name in the 50s. He was even called the Rhythm King of Bollywood. It is said that there was a time when film directors either wanted Opie Nair as their music director, or they wanted their own composers to create music with his kind of rhythm and energy. And if you like a highly rhythmic blend of Punjabi folk energy and catchy modern orchestration with those unmistakable horse hoof tonga beats, you know, we suggest you do a deep dive into his music. The list of his fantastic songs is too long to share. But hey, the break we're taking is very short. So stay tuned. We'll be back in a little while.
1: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा
2: स्वस्थ रहने का फंडा रोज खाएं अंडा NECC द्वारा जनहित में जारी
3: न तेज बारिश से दिक्कत न ट्रैफिक का झंझट नमो भारत ट्रेन से आरामदायक और तेज यात्रा की पक्की गारंटी
4: दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच लाखों यात्री उठा रहे हैं सुगम यात्रा का आनंद सरायकाली खां से गाजियाबाद सिर्फ 20 मिनट में
3: आनंद विहार से मोदी नगर सिर्फ 25 मिनट में आनंद विहार से बेगमपुर मेरठ सिर्फ 40 मिनट में
4: हर 10 मिनट में ट्रेन उपलब्ध
3: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत घंटों का सफर मिनटों में
5: जो स्टील देश के रेलवेज ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार मजबूत लचीला भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़ सेल सिक्योर TMT बार
6: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल

0: We do hope that you were certainly moving and shaking your head the way Shammy Kapoor does. Every time Shammy Kapoor's song comes on, you just have to shake your head like he did. All right. Earlier in the show, we heard a song composed by Upi Nair. And this one was composed by Shankar Jaikishan. And in an interview, Shammy Kapoor had said that while he had his own style and it was absolutely unique, it would have come to nothing without brilliant music directors like Upi Nair and Shankar Jaikishan. And that's the part that makes going back to these songs so much fun. You start recognizing the people behind the music as well. We'll take a short break here, then we will be back with more.
1: Ek zamane se kahani hai suna rahi Akashwani. Phir aaya entertainment ka revolution, jab kone kone pahuncha Doordarshan. कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री
3: मेरे प्यारे देशवासियों हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है ये है जनगणना का अभियान यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है साथियों जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे साथियों इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है साथियों जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है साथियों देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है यह हम सबकी जिम्मेदारी है आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है जनगणना 2027 को सफल बनाए

नमस्कार, प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुधार कोई मजबूरी नहीं बल्कि सरकार की प्रतिबद्धता और दृढ़ विश्वास है। कहा, सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई गई। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 1129 एकड़ जमीन देने के लिए राज्य सरकार के फैसले की सराहना की। भारत और नेपाल ने सीमा प्रबंधन और सुरक्षा में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों ने पर्यटन एआई और सुविधाजनक यात्रा पर केंद्रीय जयपुर

घोषणा पत्र को स्वीकृति दी। सरकार ने देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का आश्वासन दिया है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आज ब्रिक्स युवा कार्य मंत्रियों की बैठक होगी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया बैठक की अध्यक्षता करेंगे। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में आज भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद्र का मुकाबला चीन की शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी से। और अम्स्टलफेन में पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज शाम भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। स्लोवाकिया में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की काजल डोचक ने महिलाओं के 76 वर्गीय वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। तनु शर्मा और सविता ने रजत पदक जीता। भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने स्विट्जरलैंड के लुजान डायमंड लीग में रजत पदक जीता। उन्होंने 88.05 मीटर तक भाला फेंक कर दूसरा स्थान हासिल किया। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी
1: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। मैं हूं बबीता रावत आपके साथ। शुरू हो चुका है बॉलीवुड जगत की ताक झांक करने का सफर, क्योंकि बॉलीवुड ट्रेल्स में हम बातें करेंगे बॉलीवुड जगत की और बॉलीवुड जगत से जुड़े हुए लोगों की। तो जुड़े रहिए हमारे साथ दिल से दिल तक, और साथ ही साथ खेलेंगे हम बॉलीवुड सरताज का क्विज भी।

दिन चढ़ने से लेकर के रात सूरज के ढलने तक और रात भर यानी 24 hours एंड 7 यानी कि इस हफ्ते के सातों दिन हम आपके साथ रहते हैं और ख़ास तौर से बॉलीवुड सरताज या बॉलीवुड सरताज बनने की हर किसी की ख्वाहिश रहती है क्योंकि बॉलीवुड ट्रेल्स हफ्ते में सातों दिन आपके साथ होता है। और अब जब बॉलीवुड की बात हो ही रही है तो चलिए हम बता दें कि बॉलीवुड में कौन है जिनका है आज बर्थडे। चिरंजीवी जो भारत के एक प्रसिद्ध मेगा स्टार हैं, अभिनेता हैं, उनका है आज बर्थडे। कोडीडेला शिवशंकर वारा प्रसाद इनका असली नाम है। 22 अगस्त 1955 में इनका जन्म हुआ था मोगलथुर पश्चिम गोदावरी जिला आंध्र प्रदेश में। और इनके बेटे को तो सभी जानते होंगे, रामचरण है इनके बेटे और बहुत चार्मिंग लगते हैं वैसे। और इन्होंने डायरेक्टली तो कोई हिंदी फिल्मों में काम नहीं किया लेकिन इनकी कुछ ऐसी फिल्में हैं जिसका नाम है प्रतिबंध और आज का गुंडा राज, ये हिंदी सिनेमा में डब हुई और इनमें इन्होंने काम किया और उसके बाद इनकी पॉपुलैरिटी तो दिन ब दिन बढ़ती गई। इंदिरा द टाइगर, मैं हूँ रखवाला, कैदी नंबर 786, ये वो फिल्में हैं जो हिंदी में डब हुई हैं। और एक सुप्रसिद्ध कलाकार के तौर पर इन्होंने अमिट छाप छोड़ी हुई है तो इन्हें करते हैं हम हैप्पी वाला बर्थडे विश और बढ़ाते हैं अपने

0: ओए रोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, ना हमसे मिलता है ना साथ खाना खाने आता है। तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
1: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे। मुझे HIV है।
0: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
2: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है। हम सब से मिलने से नहीं।
3: इग्नोर नहीं, याद करो।
4: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
5: राहुल, अगले हफ्ते टूर्नामेंट है, तुम्हें मेरठ से नया बैट भी लाना है, कैसे करोगे?
6: अरे सर फिक्र मत कीजिए, मैं मेरठ से बेस्ट बैट लेकर दोपहर की प्रैक्टिस ज्वाइन भी कर लूंगा।
5: इम्पॉसिबल
6: सर, अब अपने पास नमो भारत की रफ्तार और आरामदायक सफर है। मेरठ अब दूर कहाँ, 1 घंटे से कम लगता है, हर 10 मिनट में ट्रेन मिलती है।
7: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगम पुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
8: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
9: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं, प्रोग्राम है बॉलीवुड ट्रेल्स और बॉलीवुड ट्रेल्स में हो रही हैं बातें बॉलीवुड जगत की। वैसे 90s के दौर में एक से बढ़कर एक हीरोज आए, एक से बढ़कर एक एक्टर और एक्ट्रेसेस आए, लेकिन गोविंदा का जलवा एक अनोखा ही था और उनकी जो स्माइलिंग फेस है ना, उसने सबको मोहित कर दिया। और अब मोहित करने आ रहे हैं उनके ही बेटे यशवर्धन। जी हाँ, यशवर्धन डेब्यू करने वाले हैं जल्द ही एकता कपूर प्रोडक्शन से। और यशवर्धन का जो डेब्यू होने वाला है वो है फिल्म हीरो की हॉरर इन। जी हाँ, हीरो की हॉरर इन इस मूवी का नाम है। और जैसे आपको पता चल रहा, हॉरर इन की बात की जा रही है, तो हॉरर मूवी है ये, कॉमेडी हॉरर होगी। और जब प्रोडक्शन की बात आ रही है तो एकता कपूर का साथ आ रहा है और साथ ही साथ साजिद खान बहुत लंबे समय के बाद डायरेक्शन के क्षेत्र में आ रहे हैं वापस। हाँ, बहुत लंबा गैप ले लिया उन्होंने, लेकिन हाँ जल्द ही आपको दिखाई देगी ये फिल्म। और जल्द का 7 जनवरी 2027 को ये फिल्म रिलीज होगी। इसके साथ ही साथ आपको बता दे कि गोविंदा के साथ उनकी वाइफ सुनीता भी इस फिल्म में डेब्यू करने वाली हैं। भाई गोविंदा और सुनीता भी इस फिल्म में दिखाई देने वाले हैं, तो है ना पूरा परिवार एक फिल्म में, जिसका नाम है हीरो की हॉरर इन। यशवर्धन के साथ, मम्मी पापा का साथ और साथ ही साथ एकता कपूर और साजिद खान का साथ। बनाएगा इस फिल्म को कैसा, ये तो वक्त बताएगा। अभी ये गाना पार्टनर फिल्म से।

वैसे पार्टनर्स की बात की जाए तो कुछ कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिसमें दो लोगों का साथ जब मिल जाता है तो एक जबरदस्त फिल्म निकल कर उभरती है, और उन्हीं में से एक है संदीप रेड्डी वांगा के साथ बनाई रणबीर कपूर की एनिमल। और एनिमल की बात हम क्यों कर रहे हैं कि एनिमल के बाद अब लोगों की बहुत इच्छा है कि एनिमल जैसी ही कोई फिल्म एक और आए, और एनिमल पार्क एक ऐसी ही फिल्म आने वाली है ऐसा सुनने में आया है। लेकिन संदीप रेड्डी वांगा इस वक्त स्पिरिट मूवी की तैयारी में है, और स्पिरिट मूवी 5 मार्च 2027 को रिलीज हो रही है। प्रभास अभिनीत ये फिल्म है, और जब बात आती है संदीप वांगा रेड्डी यानी संदीप रेड्डी वांगा की, तो यहां पर हम बता दें आपको कि संदीप रेड्डी वांगा ने कहा है कि भाई इस फिल्म की शूटिंग जब खत्म होगी तो लगभग 6 महीने तक वो रेस्ट

चाहते हैं और उसके बाद वो फिर एनिमल पार्क पर काम करेंगे। वैसे रणबीर कपूर भी बड़े व्यस्त चल रहे हैं, एनिमल पार्क की शूटिंग जब शुरू होगी तब शुरू होगी, लेकिन क्योंकि 2027 मार्च के बाद स्पिरिट कंप्लीट होने के बाद और जो भी चीजें हैं वो उसके बाद इस शूटिंग में शुरू करते हैं, कैसे करते हैं, क्या करते हैं ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ रणबीर कपूर की व्यस्तता इस तरह से पता चलती है कि रामायण पार्ट वन के प्रमोशन में भी व्यस्त रहेंगे क्योंकि दिवाली में 2027 को ये फिल्म रिलीज होगी और उसके बाद पार्ट टू की शूटिंग के लिए वो इस फिल्म को तैयारी करने में जुटे रहेंगे। और वैसे 2027 में रणबीर कपूर संजय लीला भंसाली की पीरियड रोमांस फिल्म लव एंड वॉर पर भी काम करते नजर आएंगे और इस फिल्म में आलिया भट्ट के साथ विकी कौशल भी मेन लीड में होंगे। 2027 की शुरुआत से 2027 में की शुरुआत में ये फिल्म रिलीज होने की कगार पर है, पता नहीं कब रिलीज होगी पर हाँ ये माना जा रहा है। उसके अलावा ब्रह्मास्त्र 2 जिसमें देव की शूटिंग होगी, हाँ ये फिल्म भी उनकी लाइनअप है। अब इतनी ढेर सारी शूटिंग के बाद वो एनिमल पार्क के लिए शूटिंग के लिए कैसे टाइम निकालेंगे ये तो उन पर निर्भर करता है। फिलहाल अभी हम एनिमल का ये गाना सुनते हैं।

0: NCREPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
1: राहुल, अगले हफ्ते टूर्नामेंट है, तुम्हें मेरठ से नया बैट भी लाना है, कैसे करोगे?
2: अरे सर, फिक्र मत कीजिए, मैं मेरठ से बेस्ट बैट लेकर दोपहर की प्रैक्टिस ज्वाइन भी कर लूंगा।
1: इम्पॉसिबल
2: सर, अब अपने पास नमो भारत की रफ्तार और आरामदायक सफर है। मेरठ अब दूर कहाँ, 1 घंटे से कम लगता है, हर 10 मिनट में ट्रेन मिलती है।
3: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगम पुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
4: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
5: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप, मैं हूं बबीता रावत आपके साथ और प्रोग्राम है बॉलीवुड ट्रेल्स। और बॉलीवुड ट्रेल्स में ये समय है आपसे बॉलीवुड सताज का क्विज पूछने का। और बॉलीवुड सताज का आज का क्विज बहुत ही आसान है। गोविंदा के बेटे अब डेब्यू करने वाले हैं, उनका नाम क्या है? जी हाँ, गोविंदा के बेटे का नाम क्या है ये हमें लिख कर भेज दीजिए 9868107070 पर। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर में आप आंसर के साथ अपना नाम और अपनी जगह का नाम जरूर भेजिएगा। और अभी ये गाना आप सभी लोगों के लिए, और फिर बाद में मिलते हैं आपसे, बातें हैं अभी भी बॉलीवुड की शेष।

0: Bollywood and cricket. And we've got, you know, two of those have combined for this ETPL. So we'll be looking at the stars and just checking that the Rotterdam Dockers are right in there for a win.
1: Well, enjoy yourself and best of luck for this competition. Take care.
0: Really appreciate it.
2: That was Jonty Rhodes speaking to me on Stumped a little earlier about the new European T20 Premier League, which starts next week. Jim, just listening to what Jonty had to say there. There's a lot of Aussie interest, of course, in this league. Steve Waugh, Glenn Maxwell in as owners and administrators, as well as some big name players. What does this league have to do to make cricket truly sustainable and successful in Europe, do you think?
3: Well, it's got to be watched. I don't know how many people they're going to get at the grounds. Is there any television or streaming coverage of the matches? One of the issues you have in playing cricket in places that aren't automatically traditionally cricket playing nations, I mean, all these places play football, is getting people where they feel that they've got some skin in the game. So I'm not sure financially how successful it can be unless it's set up in a way that it's going to grab the audience. It sounds fascinating, and I suppose it's only good for the game.
2: That's all we've got time for on this week's Stumped on Akashvani. Don't forget, you can follow us on X. We are at BBC WS Sport and use the hashtag BBC Stumped. And check us out on YouTube too. Go to the BBC World Service YouTube channel. My thanks to Jarrod Sharma and Jim Maxwell, and to all of you for listening. We'll speak to you again soon. Goodbye.
4: Stumped is a BBC Sport production for the BBC World Service, in association with ABC and Akashvani.
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM Rainbow.
6: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की. महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ. तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर. इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से. तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात.
7: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, FM रेनबो दिल्ली पर.
8: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स. इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम. इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर.
9: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात. हर रोज जुड़िए हमारे साथ. गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए.
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो.
10: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं, प्रोग्राम है बॉलीवुड ट्रेल्स, और बॉलीवुड ट्रेल्स में हम बातें करते हैं बॉलीवुड जगत की और बॉलीवुड जगत से जुड़े हुए लोगों की. और जब बात बॉलीवुड की आती है तो खान्स की बात अगर ना हो तो बॉलीवुड की बातें थोड़ी सी अधूरी रह जाती है. हाँ जी, खान की बात कर रहे हैं हम, और आमिर खान मिस्टर परफेक्शनिस्ट के तौर पर जाने जाते हैं. और जब इनकी बात आती है तो मुश्किल से एक आधी फिल्म इनकी मिलती है अब 2-3 सालों में. और अब इनकी सितारे जमीन पर के बाद कौन से फिल्म आने वाली है ये तो

अभी आगे पता चलेगा, लेकिन आपको बताते चले कि आमिर खान और आशुतोष गोवारिकर की कोलैबोरेशन में एक फिल्म बन रही है जिसका नाम है ललकारा। जी हाँ, ललकारा फिल्म बन रही है और इस फिल्म में जो आमिर खान है वो जबरदस्त ट्रांसफॉर्म होकर आएंगे आपके सामने। आपको बता दे, 25 साल के यंग बॉय बनकर आएंगे और इसके लिए वो अपनी बॉडी पर पूरी तरीके से फोकस्ड हैं और अपने पर काम करने लगे हैं। जैसा कि आपको पता है, परफेक्शन के साथ ये उतरते हैं अपने काम पे। वैसे 25 साल के बाद लगान 2001 में जब आई थी, उसके बाद आशुतोष और आमिर का कोलैबोरेशन हो रहा है और अब देखते हैं ये फिल्म कैसी बनती है। हालांकि ये एक बायोपिक है, लाला अमरनाथ जी पर बन रही है और फुल फोकस्ड है क्रिकेट पर, और क्रिकेट के खास तौर से उस मैच पर जो भारत और पाकिस्तान के साथ खेला गया था। हाँ, इसी पर बेस बन रही है ये मूवी। आगे आपको बताते चलेंगे कौन बने हैं आज के हमारे हाँ बॉलीवुड सरताज। सुनते रहिए मेरे साथ बॉलीवुड ट्रेल्स।

0: वैसे गुड गुड हो गया, आज हमने फोन मिलाया और हमारे बॉलीवुड सेट आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो
1: हेलो,
0: नमस्कार सोनिया जी, कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ मैम, आप कैसी हैं?
0: बस बढ़िया है। और आज आपने बिल्कुल फटाफट जवाब दे ही डाला।
1: जी मैम,
0: आपसे हमने पूछा था सवाल कि गोविंदा के बेटे जो डेब्यू करने वाले हैं उनका नाम बताइए, तो चलिए आप ही अपने शुभ शुभ वाणी से बताएं उनका नाम।
1: जी मैम, यशवर्धन आहूजा।
0: बिल्कुल सही जवाब दिया है इन्होंने और सबसे पहले जवाब दिया, इसलिए बनी है आज की बॉलीवुड सरताज। और कितना सुनते हैं फ्रीक्वेंटली आप हमारे प्रोग्राम्स को मैम?
1: मैम मैं एक भी प्रोग्राम मिस करती नहीं हूँ, सारा दिन सुनती हूँ।
0: आहा, यानी कि बैकग्राउंड में हमारा रेनबो चलता ही रहता है।
1: हाँ जी,
0: अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि लाइफ में एक बैकग्राउंड होना ही चाहिए,

0: वेस्ट होंगी आपके साथ। अब एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: जुड़े रहिए आकाशवाणी रेनबो से, और जैसा मैंने बताया प्लेट कुल आदिति लेके आएंगे और उसके बाद मैं आऊंगी आपके साथ प्रोग्राम मेरा वाला सॉन्ग में। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और गुनगुनाते रहिए, झूमते रहिए और रिक्वेस्ट भेजते रहिएगा मेरा वाला सॉन्ग में। मैं आपसे मिलती हूँ ठीक 1 बजे।

0: बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: मम्मी बस अभी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन अभी आई है।
3: बेटा कुछ खा लो, मेरठ आते आते शाम हो जाएगी।
2: अरे मम्मी एक घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, आप बस खाना तैयार रखिए।
3: हैं इतनी जल्दी?
2: देश बदल रहा है मम्मी, अभी एयरपोर्ट जैसे ट्रेवलेटर पर चलकर साथ के नमो भारत सराय कालेखा स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ से ट्रेन पकड़ कर बस मिनटों में मेरठ।
4: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय कालेखा से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
5: ओए रोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, ना हमसे मिलता है ना साथ खाना खाने आता है, तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
6: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे, मुझे HIV है।
5: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
7: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है, हम सब से मिलने से नहीं।
8: इग्नोर नहीं, याद करो।
9: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
10: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान, इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल।
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो HR कटा था इनके नाम है, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रह

0: कर ही आप सुरक्षित हैं।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
2: न तेज बारिश से दिक्कत, न ट्रैफिक का झंझट, नमो भारत ट्रेन से आरामदायक और तेज यात्रा की पक्की गारंटी।
3: दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच लाखों यात्री उठा रहे हैं सुगम यात्रा का आनंद। सरायकाली खां से गाजियाबाद सिर्फ 20 मिनट में,
2: आनंद विहार से मोदी नगर सिर्फ 25 मिनट में, आनंद विहार से बेगमपुर मेरठ सिर्फ 40 मिनट में,
3: हर 10 मिनट में ट्रेन उपलब्ध।
2: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत, घंटों का सफर मिनटों में।

दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: कोयल सी तेरी बोली,
3: हाय
2: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
4: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक, सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
5: Alright everybody, it's time for us to say goodbye. Have a great weekend. Thank you so much for sending in your fun decisions and so happy to hear that they all worked out in the end for you. Alright, now Babita Rawat is here with her next show. I'm leaving you with Charlie Puth because like a light switch, I'm turning my show off. Alright, bye-bye. Have a great weekend ahead.

नमस्कार, प्रस्तुत है इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सुधार कोई मजबूरी नहीं बल्कि सरकार की प्रतिबद्धता और दृढ़ विश्वास है। कहा, सरकार की नीतियां लोगों के हित और देश के विकास को ध्यान में रखकर बनाई गई। गृहमंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 1129 एकड़ जमीन देने के राज्य सरकार के फैसले की सराहना की। ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों ने पर्यटन, एआई और सुविधाजनक यात्रा पर केंद्रित जयपुर घोषणा पत्र को स्वीकृति दी। सरकार ने देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी के पर्याप्त भंडार की उपलब्धता का आश्वासन दिया। दिल्ली में पर्यावरण मानकों के उल्लंघन मामले में 106 इकाइयां चिन्हित, 78 इकाइयां वैध मंजूरी के बिना संचालित मिली। ग्रामीण विकास मंत्रालय की सशक्त समिति ने आज नई दिल्ली में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के गैर कृषि आजीविका घटक के अंतर्गत प्रस्तावों की समीक्षा की। सुरक्षा और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने आगामी 57वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव इफ्फी की तैयारियों के लिए गठित संचालन समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता की। जम्मू कश्मीर में वार्षिक कौसर नाग यात्रा कल रियासी के प्राचीन भगवान शिव मंदिर से शुरू हुई। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है और अम्स्टेलफेन में पुरुष

हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज शाम भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड्स से होगा। स्लोवाकिया में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की काजल ढोचक ने महिलाओं के 76 वर्गीय किलोग्राम के स्वर्ण पदक जीता। तनु शर्मा और सविता ने रजत पदक जीते। भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने स्विट्जरलैंड के लुजान डायमंड लीग में रजत पदक जीता। उन्होंने 88.05 मीटर तक भाला फेंक कर दूसरा स्थान हासिल किया। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

0: की वाणी आकाशवाणी
1: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। मैं हूं बबीता रावत आपके साथ। प्रोग्राम शुरू हो चुका है आप लोगों का फेवरेट मेरा वाला सॉन्ग, और यहां पर हम करते हैं आपकी सॉन्ग रिक्वेस्ट को पूरा। और आप किस की लिस्ट में से कौन सा गाना हम प्ले करने वाले हैं, चलिए बताते हैं, ज्यादा सस्पेंस नहीं रखते हैं। और यहाँ पर लिखा है यूपी हकीमगंज से आसिफ अंसारी की, तालिब शेख, मुकीम शेख, इमरान शेख, बादशाह की पसंद का ये गाना हम आपके लिए प्ले करने वाले हैं। तो सुनिए और एंजॉय कीजिए, और अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट हम तक पहुंचाने के लिए 9868107070 पर एक प्यारा सा गीत हम तक पहुंचाइए, और हम उसे यहाँ पर आपकी फरमाइश से मेरा वाला सॉन्ग प्रोग्राम में पेश करेंगे।
2: कर सकता भाई, अरे चेक करो यार, फिर तो नहीं गया
3: क्या मालूम।
2: अरे भाई, किसी के पास माचिस वाचिस है कि नहीं?
4: हाँ हाँ, मेरे पास है। ये आंखें, ये चेहरा, ये नूर, इंसान हो या परी हो तुम, कितनी फुर्सत से बनाया होगा तुम्हें बनाने वाले ने।

आदाब अर्ज है। लिखते हैं सलीम अख्तर, साथ में रेशमा बेगम भी। अलीगढ़ से उनकी फरमाइश है तेरे नाम के इस गीत की।

0: चलते हैं।
1: फिल्म मान मिलो सजना और दिग्दर्शन और कविता गौड़ की फरमाइश पर मेरठ कैंट से ये गीत हम आपके लिए प्रस्तुत करते हैं।

0: चलते नहीं आते हैं थोड़े से छोटे से ब्रेक के बाद, और उसके बाद और लोगों की भी फरमाइश है, उसे जरूर पूरा करने की कोशिश रहेगी हमारी। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
1: दादी दादी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त,
2: पता का चाय गजब का स्वाद।
3: अरे अंजलि, अब क्या तू मेरठ से नहीं आ रही रोज? तेरे चेहरे पर कोई थकान परेशानी नहीं दिखती।
4: प्रिया, ये सब नमो भारत ट्रेन का कमाल है। 40 मिनट में बेगमपुल से सीधा आनंद विहार, वहाँ से कनेक्टेड मेट्रो लेकर सीधा ऑफिस, समय ही नहीं लगता।
3: वाह, नमो भारत ने तेरी लाइफ कितनी आसान बना दी।
5: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत के सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार और गाजियाबाद स्टेशन मेट्रो के साथ सुगमता से कनेक्टेड है।
6: ओए रोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, ना हमसे मिलता है ना साथ खा

0: खाना खाने आता है। तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
1: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे। मुझे HIV है।
0: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
2: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है। हम सब से मिलने से नहीं।
3: इग्नोर नहीं, याद करो।
4: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप। मैं हूं बबीता रावत आपके साथ। प्रोग्राम है मेरा वाला सॉन्ग और अगली सॉन्ग रिक्वेस्ट जिनकी पूरी होने वाली है उनका नाम है पंकज अमरावती से, महाराष्ट्र से हैं ये, और इनकी फरमाइश का पापा कहते हैं मूवी का

और अगला गाना जो हम आपके लिए पेश करने वाले हैं वो है दौड़ फिल्म का। जी हाँ, आमची मुंबई से यश सिंधी की पसंदीदा गीतों में से एक है ये। और जब बात आती है, आज इन्होंने साझा की है हमसे, एक बात साझा की है कि इस फिल्म को, ये फिल्म है दौड़, और इस फिल्म को लगभग आज ही के दिन रिलीज किया गया था, और 29 साल हो चुके हैं पूरे। तो लीजिए, आप सुनिए इस गीत को।

और अगले गाने की फरमाइश जिन्होंने की है उनका नाम क्या है? उनका नाम है एम कुमार त्रिची, तमिलनाडु से उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है। और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं कौन कौन? रणधीर, बबीता रानी, सत्यम सुंदरम गुप्ता और राजनगर गांधी चौक मधुबनी से अरुण गुप्ता, मौसम गुप्ता और शिवम गुप्ता। ये चाहते हैं कि किसी भी सॉन्ग में इनका नाम ले लिया जाए, तो लीजिए हमने आपका नाम भी ले लिया और साथ ही साथ प्लेलिस्ट से ये गाना प्ले कर रहे हैं।

0: राहुल, अगले हफ्ते टूर्नामेंट है, तुम्हें मेरठ से नया बैट भी लाना है, कैसे करोगे?
1: अरे सर, फिक्र मत कीजिए, मैं मेरठ से बेस्ट बैट लेकर दोपहर की प्रैक्टिस ज्वाइन भी कर लूंगा।
0: इम्पॉसिबल
1: सर, अब अपने पास नमो भारत की रफ्तार और आरामदायक सफर है। मेरठ अब दूर कहाँ, एक घंटे से कम लगता है, हर 10 मिनट में ट्रेन मिलती है।
2: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सरायकाले खां से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगम पुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
3: NCERTPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालु

0: एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
2: अब होगा शिक्षा मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप, प्रोग्राम है मेरा वाला सॉन्ग। और अब जो गाना हम पेश करने वाले हैं, बहुत दूर से उसकी रिक्वेस्ट आई है, अंकोला महाराष्ट्र से प्रमोद चिंचोलकर ने ये गाना हमसे कहा है कि प्ले कर दीजिए लैला मजनू का ये गीत। सुनिए और एंजॉय कीजिए।

रवि ने मेरठ से दुश्मन फिल्म के इस गीत की फरमाइश की है। साथ ही साथ सौरभ अरनेजा गाजियाबाद से हमें सुन रहे हैं और हितेंद्र दास जी ने असम से कहा है कि किसी भी गाने में मेरा नाम ले लीजिएगा। तो लीजिए, हमने आपका नाम ले लिया और आप जुड़े रहिए हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो पर और अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट हम तक पहुंचाते रहिए 9868107070 पर। मैं हूं बबीता रावत, आपके साथ प्रोग्राम है मेरा वाला सॉन्ग।

0: कोयल सी तेरी बोली कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु कु
1: आय हाय
0: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप. मैं हूं बबीता रावत आपके साथ. मेरा वाला सॉन्ग प्रोग्राम चल रहा है और सॉन्ग रिक्वेस्ट आप भेज रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं उन्हें पूरी करने की. माधव और अथर्व ने मांडवी राजस्थान से हमसे रिक्वेस्ट की है मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म दलाल का ये गाना. तो सुनिए और एंजॉय कीजिए.

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा था इनके नाम है, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

आकाशवाणी रेनबो सुन रहे हैं आप, और अब मीरा वाला सॉन्ग से मैं लेती हूं आपसे इजाजत, लेकिन आखिरी सॉन्ग रिक्वेस्ट जोया मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से इन्होंने की है, तो ये गाना आपके लिए प्ले करके जा रही हूं, और फिर मिलूंगी किसी दिन किसी रोज इसी मोड़ पर जिसका नाम है

नमस्कार, प्रस्तुत हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। भारत ने 22 भारतीय नागरिकों को ले जा रहे दो वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मामला सोमालिया के अधिकारियों के सामने उठाया है। गृहमंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में सुकना में सहयोगी गोरखा नेताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक कर रहे हैं। ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों ने पर्यटन एआई और सुविधाजनक यात्रा पर केंद्रित जयपुर घोषणा पत्र को स्वीकृति दी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने आज ब्रिक्स देशों के मंत्रियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के निकट ऐतिहासिक थोटल कोंडा बौद्ध विरासत स्थल पर दौरा किया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने प्रतिष्ठानों से आग्रह किया है कि वे ईपीएफ के दायरे से बाहर कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु कर्मचारी नामांकन अभियान 2026 का लाभ उठाएं। सरकार ने कहा है 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरफेनिमाइन मेलेट और फिनाइल एफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की सशक्त समिति ने आज नई दिल्ली में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के गैर कृषि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के गैर कृषि आजीविका घटक के अंतर्गत व प्रस्तावों की समीक्षा की। दिल्ली में पर्यावरण मानकों के उल्लंघन मामले में 106 इकाइयां चिन्हित, 78 इकाइयां वैध मंजूरी के बिना संचालित मिली। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन के आगामी 57वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव इफ्फी की तैयारियों के लिए गठित संचालन समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता की। जम्मू कश्मीर में वार्षिक कौसर नाग यात्रा कल रियासी के प्राचीन भगवान शिव मंदिर से शुरू हुई। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मतदान

मतदाताओं के लिए अनिवार्य फोटो पहचान पत्र और नागरिकता प्रमाण पत्र की मांग को दोहराया है। बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज महिला डबल्स के सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद्र का मुकाबला चीन की लियू शेंग सू से टैन निंग से होगा। अम्स्टरडैम में पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज शाम भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड्स से होगा। ये थे अब तक के FM रेनबो मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, आपकी वाणी आकाशवाणी और आकाशवाणी एफएम रेनबो पर इस वक्त आपके साथ जुड़ चुकी हूँ मैं दीपिका, लेकर के हाजिर हूँ प्रोग्राम आशियाना। और आज का आशियाना हमेशा से कुछ ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ एक और आरजे रहेंगी। कहाँ पर रहेंगी वो, क्या कुछ खास आज हम आपके लिए लेकर आएंगे, सब कुछ बताऊंगी। लेकिन फिलहाल शुरुआत करते हैं इस बेहद खूबसूरत से गाने के साथ, और आप थाम लीजिए मेरा हाथ और निकल पड़िए इस सफर पर मेरे यानी दीपिका के साथ।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो दीपिका के साथ है आप और प्रोग्राम आप यहाँ पर सुन रहे हैं आशियाना। जैसे मैंने जिक्र किया था कि एक और आरजे हमारे साथ जुड़ेंगी, माला आज हमारे साथ हैं, लेकिन वो कहाँ पर हैं और वहाँ वो क्यों गई हैं, चलिए उन्हीं से पूछ लेते हैं। हेलो,
1: हाय दीपिका, हाउ आर यू?
0: मैं बहुत बढ़िया हूँ माला, और मैंने अपने लिसनर्स को भी बिल्कुल बता दिया कि आप कहीं तो हैं और बहुत कुछ खास हमारे लिसनर्स को कुछ बताने वाली हैं, लेकिन कहाँ हैं ये वो जानना चाह रहे हैं।
1: मैं कहाँ हूँ ये मैं नहीं बताऊंगी, मैं कहाँ हूँ ये वो लोग बताएंगे जो मेरे इर्द गिर्द हैं। तो चलिए उनसे जानते हैं कि मैं कहाँ हूँ। तो आप समझ गए कि मैं कहाँ हूँ?
0: जी जी जी, बिल्कुल समझ गए हैं हम कि आप कहाँ पर हैं।
1: मैं अमृत उद्यान में हूँ और अमृत उद्यान में बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, और ये सभी स्टूडेंट्स जो हैं अमृत उद्यान देखने यहाँ आए हैं आज खास तौर पर सैटरडे के दिन। और सैटरडे के दिन यहाँ पर आने का इनका खास मकसद यही है कि कुछ चिल करना चाहते थे, कुछ खूबसूरती को एंजॉय करना चाहते थे, और साथ ही साथ फ्रेंड्स के साथ बाहर निकलने का जो एक अनोखा मजा है उसको एक्सपीरियंस करना चाहते थे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि ये ग्रुप कहाँ से है और फिर इनसे अमृत उद्यान के बारे में जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम।
2: जी शुक्रिया, धन्यवाद।
1: आपका नाम?
2: सुहेल नाम है मेरा।
1: कहाँ से आए आप सुहेल?
2: हम पैरामेडिक्स हेल्थकेयर से हैं।
1: तो अमृत उद्यान से ये जो आपका लगाव है जिसके चलते आप आज अपनी पूरी टीम लेकर यहाँ पर आए, जानना चाहेंगे कितने लोगों का ग्रुप है आपका जिनको लेके आप यहाँ आए?
3: कितने लोगों का ग्रुप लेकर आए?
2: 15 लोगों का ग्रुप है हमारा। जी
1: जानना चाहेंगे आपसे, एक बहुत ही खूबसूरत लड़की हमारे साथ है इसी कॉलेज की, आइए जानते हैं इनसे कि अमृत उद्यान के अंदर इन्हें अपनी खूबसूरती के अलावा और क्या खूबसूरत लगा। आपका नाम?
4: मुस्कान।
1: मुस्कान, आपकी मुस्कान भी बहुत खूबसूरत है, और अमृत उद्यान के अंदर क्या क्या और चीजों में आपको ऐसी मुस्कान दिखाई दी हमें बताइए।
4: अमृत उद्यान वाकई बहुत अच्छी जगह है, वहाँ पर काफी सारे फ्लावर्स हैं, काफी हरियाली भी है, वहाँ फाउंटेन भी देखा हमने जो बहुत ही क्लियर डिस्टिल्ड वाटर दिखा हमें, और काफी अच्छा लगा हमें। हम म्यूजियम भी गए अंदर, तो वहाँ पर भी हमने काफी सारी चीजें देखी है। हमने जितने भी प्रधानमंत्री अभी तक हमारे हैं वहाँ का, वहाँ पर स्टैचू देखा हमने उनका, और घोड़े वगैरह देखे, काफी सारे अंग्रेज की भी हमने मूर्तियां देखी हैं, तो हमें अच्छा लगा आकर।
1: ओके, तो बेसिकली अमृत उद्यान के अंदर अगर हम खूबसूरती के बारे में बात करें, पेड़ पौधों के बारे में बात करें, तो जानना चाहेंगे आपसे पेड़ पौधे कौन कौन से आपने देखे, फ्लावर कौन से आपने देखे?
4: रोजेज, रोज थे, और भी नेचर था, बहुत अच्छा नेचर था वहाँ पे, कुदरती मतलब कहते नहीं है, हरियाली बहुत अच्छी थी, अच्छा लगा वहाँ जाके, और काफी इंजॉय करा, जैसे सोचा तो उससे ज्यादा इंजॉय किया।
1: आपका नाम?
4: मेरा नाम समरीन।
1: समरीन, ओके, आपसे जानना चाहेंगे वहाँ पर आपको अमृत उद्यान के अंदर फूलों पेड़ पौधों के अलावा और क्या चीज थी जो बहुत अच्छी लगी?
2: म्यूजियम।
1: और उसके अलावा वहाँ पर कुछ आपको ऐसा कुछ दिखाई दिया जहाँ पर बैठ के आपको लगा हो कि मैं यहीं बैठा रहूँ?
2: वो जब उनकी जंग के दौरान जो वहाँ पे स्टैचू बने हुए हो सर।
1: अच्छा, और वहाँ पर पौधे पत्तियाँ, तो इसके अलावा सजावट को लेकर भी क्या कुछ वहाँ पर कुछ खास आपने देखा?
2: सजावट तो नॉर्मल ही थी, लेकिन हाँ ब्यूटीफुल था, जैसा होना चाहिए था एसी है, लेकिन उससे ज्यादा इस टाइम नेचुरल भीड़ भी कम थी और सही था,
1: अच्छा लगा।
2: हाँ
1: ओके, जानना चाहेंगे आपसे कि यहाँ आने के लिए आपने किस तरह से बुकिंग करी, कैसे आप आए और किस तरह से आपका जाने का प्लान है?
2: फेसबुक चला रहा था, अचानक मैं एक ऐड देखा कि इस दौरान भी मतलब अमृत उद्यान खुला हुआ है, तो ऑनलाइन बस टिकट बुक किए, और पहले 6 टिकट बुक किए, फिर 6 टिकट और बुक किए, फिर और बात लोगों से बात की, फिर 3 टिकट और बुक किए, और लगभग 15 टिकट बुक करने के बाद हम यहाँ पर मेट्रो यहाँ पर आए। मेट्रो से हम गेट नंबर 4 केंद्रीय सचिवालय उतरे, वहाँ पर देखा तो एक बहुत खूबसूरत थी मिनी बस जो सरकार की थी, जो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर उन्होंने छोड़ा गेट नंबर 35 पे। और मैं सभी जो भी इसको सुन रहे हैं ना, मैं सभी से कहूंगा कि एक बार अमृत उद्यान जरूर आए, और नेचुरल जो नेचुरल से जुड़े हुए लोग हैं वो एक बार नेचर को जरूर देखें आकर के।
1: मेट्रो से
3: आना चाहता है तो मेट्रो स्टेशन से यहाँ तक शटल सर्विस के थ्रू आप लोग आए
2: जी.
3: तो क्या शटल सर्विस भी पहले बुक करनी पड़ती है? शटल सर्विस में कितनी भीड़ होती है?
2: नहीं, हम तो ये लग समझ लो हमारा या क्या था कि हम बस गेट से निकले उसमें लगभग 10-12 लोग बैठे हुए थे, 15 लोग हम थे. जैसे हम बैठे बस चल दी क्योंकि पूरी भर चुकी थी, मिनी बस थी ना, तो हमें वहां पर इंतजार करना पड़ा. और यहाँ भी बहुत मतलब बहुत नॉर्मली तरीके से हम लोग अंदर चले गए, एंट्री ली और पूरा देखने के बाद उसके बाद म्यूजियम गए. म्यूजियम के अंदर वो सारी चीजें देखी जो मतलब नेचर से जुड़ी हुई थी सारी, लाइक प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की फोटोज वगैरह, उनके पीछे कुछ और मूर्तियां थी, वो सारी चीजें हमने देखी है.
3: ओके. अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर कोई अमृत उद्यान आना चाहता है तो उसके लिए वो बुकिंग कैसे करे, कैसे आए?
2: नॉर्मली जाए और राष्ट्रपति अमृत उद्यान की बुकिंग डाले, क्योंकि बहुत सारे लोग

0: से बुकिंग हुई। दूसरी यहाँ पर दो तीन चीज हो रहे हैं, यहाँ पर बिल्डिंग का टिकट भी है जो कि आज हम नहीं बुक कर पाए, हमें बिल्डिंग में भी जाना था लेकिन वो हमें नहीं मिल पाया, तो 27 तारीख के बाद का यहाँ का बिल्डिंग का टिकट भी मिला जो कि वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है।
1: जी पहले जो है वो बुकिंग करनी है और उसके बाद
0: लगभग 5-7 दिन पहले, अगर बिल्डिंग की बुकिंग करनी है, राष्ट्रपति बिल्डिंग की बुक करनी है तो लगभग 7 दिन पहले, और अमृत उद्यान की करनी है तो 7 डे भी हो जाएगा या फिर 1-2 दिन पहले कर ले तो बेटर है, क्योंकि मतलब पैनिक वाली सिचुएशन ना बने कि हाँ यार उसको टिकट ना मिले तो वहाँ से ही अपना टिकट बुक करके आए।
1: तो मतलब पहले ही टिकट अपनी बुक करके आए, प्लान करके आए और ग्रुप में आए तो बहुत मजा आएगा। एक और हमारे साथ साथी यहाँ पर जुड़ रहे हैं जिनको यहाँ पर अमृत उद्यान का फाउंटेन बहुत अच्छा लगा। जी आपका नाम बताएं।
2: मेरा नाम प्रियांशु है और मुझे यहाँ का फाउंटेन काफी अच्छा लगा था और यहाँ पे फाउंटेन बहुत ही अच्छा था, ऐसा लग रहा था एकदम रियल और एकदम व्हाइट वाटर था उसमें, ऐसा नहीं कि नीला वाटर था, व्हाइट था, ऐसा लग रहा था दूध है ऐसा लग घर पे लेके जा सकते हैं ऐसा, लेकिन वहाँ पे थोड़ा वो था कि सिक्योरिटी थी कि उसे हम छू नहीं सकते थे, दूर से ही देख सकते थे, काफी अच्छा था, बहुत बढ़िया था।
1: ये बहुत चमत्कृत यहाँ पर नजर आ रहे हैं इनको फाउंटेन में, ऐसा लगा जाके कि ये पानी का फाउंटेन नहीं है, दूध का फाउंटेन है, इतना व्हाइट था, और इन्हें मतलब आपस में बातचीत करके कह रहे हैं मन कर रहा था उसे उठा के घर ले जाऊं चाय बना लूं उसे तो ये ग्रुप जो है बहुत ही खुश है और अमृत उद्यान इन्होंने विजिट किया, बहुत मजा आया इन्हें और फर्दर इन लोगों की अभी आगे की प्लानिंग है। तो दीपिका मैं तो ये कहूंगी कि इन लोगों ने तो अपनी प्लानिंग के हिसाब से काम कर लिया है, जिन लोगों ने अभी तक प्लान नहीं किया है वो प्लान कर सकते हैं और अमृत उद्यान आकर विजिट कर सकते हैं और यहाँ की खूबसूरती को बिल्कुल आंखों से सामने से निहार सकते हैं।
3: बिल्कुल, और जिन ग्रुप को आपने अभी साथ में जोड़ा था उनकी मतलब आवाज से उनके अंदर की जो खुशी है अमृत उद्यान देखने के बाद, वो कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं, कितना खुश है, वो उनकी आवाज में साफ झलक रहा था। तो मैं अभी सब लिसनर से यही कहूंगी कि जिन्होंने सही में अभी तक प्लान नहीं किया, सोच रहे कि अब जाएंगे, कल जाएंगे, परसों जाएंगे, वो जल्दी से इसे प्लान कर सकते हैं। और आपके साथ भी अभी हम माला दोबारा जुड़ेंगे, फिलहाल लिसनर्स के लिए एक प्यारा सा ट्रैक यहाँ पर मैं प्ले कर देती हूँ।
1: श्योर श्योर, थैंक यू दीपिका।

आकाशवाणी एफएम रेनबो, आप दीपिका के साथ बने हुए हैं और यहाँ पर इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आशियाना। जी हाँ, आशियाना प्रोग्राम में आपके साथ मैं तो जुड़ी ही हूँ, साथ ही जैसा आप जानते हैं माला भी हमारे साथ जुड़ी है अमृत उद्यान में। वो है, कितना खूबसूरत वहाँ का नज़ारा है, कितने सारे फूलों की खूबसूरती वहाँ पर बिखरी है और कौन कौन से वो लोग हैं जो वहाँ आ रहे हैं, वहाँ के इस खूबसूरत से नज़ारे का लुत्फ उठा रहे हैं और इसे अपनी आंखों में बसा के चले जा रहे हैं, वो हमें बता भी रही हैं और वहाँ लोगों से बात भी करवा रही हैं। वैसे फूलों की अगर बात करें तो फूलों से हम अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो फूल हमें सिखाते हैं। फूल देखिए कभी मुरझाने से नहीं डरते, क्योंकि हर खूबसूरत दौर हमेशा नहीं रहता, बदलाव और एंडिंग्स को स्वीकार करना फूल हमें बखूबी सिखा हैं। ये बताते हैं कि जब वक्त आएगा तो हम एक बार फिर से खिलेंगे, फिर से मुस्कुराएंगे, फिर से अपनी खुशबू देंगे। लेकिन अगर वक्त नहीं है, अभी हम मुरझा भी गए हैं, तो इससे डरना नहीं है या फिर इसकी वजह से दोबारा खिलने की हिम्मत नहीं छोड़ देना है। इस खूबसूरत से गाने के बाद दोबारा जुड़ेंगे माला के साथ और देखेंगे कि क्या कुछ वो हमें बता रही हैं, किन लोगों से, किन बातों से हमें जो है रूबरू करवा रही हैं। फिलहाल इस गाने को एंजॉय कीजिए।

0: आकाशवाणी एफएम रेनबो दीपिका के साथ हैं आप, प्रोग्राम है आशियाना। और चलिए एक बार फिर जुड़ते हैं माला के साथ जो कि है अमृत उद्यान में। हेलो,
1: हाय दीपिका।
0: हाय माला, बताइए क्या कुछ खास आप अब बताने वाली हैं, क्योंकि पिछली बार तो अभी जब आपने वहां पे जो लोग आए थे उनसे हमें कनेक्ट करवाया, तो सही बता रही हूँ, मैं तो यहाँ स्टूडियो में बैठे बैठे ही वहां पर पहुंच गई ऐसा समझिए।
1: बिल्कुल, लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसी बातें भी जानना बहुत जरूरी है जो कि आप अगर प्लान कर रहे हैं अमृत उद्यान आने के लिए तो आपका जानना बेहद जरूरी है। जैसे कि अमृत उद्यान आप कैसे आ सकते हैं, किस तरह बुकिंग करनी है, कब से कब तक खुला है, कितने बजे से कितने बजे तक आपको यहाँ आने के लिए घर से निकलना चाहिए, कैसे आएंगे, और फिर यहाँ पर लास्ट एंट्री कितने बजे तक होती है, कौन से मेट्रो स्टेशन के किस गेट नंबर से आना है, अमृत उद्यान की एंट्री कौन से गेट नंबर से, तो ये दीज आर सो मेनी डिटेल्स जो पता होनी चाहिए अगर आप प्लान कर रहे हैं अमृत उद्यान के लिए। तो सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि अमृत उद्यान राष्ट्रपति भवन के अंदर है और यहाँ पर आप अगर आना चाहते हैं तो बिल्कुल आप प्लान कर सकते हैं, और उसके लिए आप 15 सितंबर से पहले पहले की प्लानिंग कीजिए तो बहुत बेहतर रहेगा। और उसके अलावा आपको ये बता दूं कि टाइमिंग्स जो है वो 10 बजे से 6 बजे तक है, लेकिन लास्ट एंट्री जो है वो 5 बजे तक की ही होती है, और उसके अलावा मंडे के दिन मेंटेनेंस एक्टिविटीज के लिए अमृत उद्यान को बंद रखा जाता है। अगर आप प्लान कर रहे हैं कि हम ऑन द स्पॉट वहां पर बुकिंग लेकर चले जाएंगे तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि स्पॉट वॉक इन बुकिंग जो है वो यहाँ नहीं होती है, तो इसलिए एक दिन पहले कम से कम 10 बजे से पहले पहले आपको टिकट बुक करना होगा अपने अगले दिन के लिए। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं कल आपको आना है तो आज आपको सुबह 10 बजे से पहले पहले अपने कल की बुकिंग करनी होगी। Okay. इसके अलावा अगर आप जैसे हम अभी ग्रुप से मिले तो ग्रुप अगर आप एंट्री करना चाहते हैं तो 6 विजिटर्स पर सिंगल बुकिंग जो है वो आपको मिलेगा, उसके बाद फिर आपको फिर दूसरी बुकिंग करनी होगी। और अगर स्कूल का कोई ग्रुप आना चाहता है, स्कूल के बच्चे आना चाहते हैं, तो सिर्फ 50 तक का जो ग्रुप है वो अलाउड है, तो आप 50 बच्चों की बुकिंग जो है वो स्कूल ग्रुप के तौर पर आप कर सकते हैं। एंट्री करनी है तो गेट नंबर 35 से विजिटर्स की एंट्री है जो कि नॉर्थ एवेन्यू रोड पर है, और यहाँ पर आने के लिए आपको अगर मेट्रो से आना चाह रहे हैं तो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 4 तक आप आइए, जहां से आपको शटल सर्विस मिलेगी और वहां से आप अमृत उद्यान आ सकते हैं, एंड दैट टू फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। और आप जो बुकिंग करेंगे तो आप अपना जो भी आपका आधार कार्ड होगा या जो भी आपका फोटो आईडी प्रूफ होगा उसको जरूर साथ में कैरी कीजिए, उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। आपकी बुकिंग को लेकर जब एंट्री होगी तो आपसे आपका आईडी प्रूफ जो है वो मांगा जा सकता है, वही जो आपने बुकिंग के टाइम पर यूज किया था। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो बहुत जरूरी है जानना अगर अमृत उद्यान के लिए प्लानिंग कर रहे हैं और आना चाहते हैं। और आज तो सैटरडे है, कल का दिन भी आप प्लान कर सकते थे अगर आपने आज 10 बजे से पहले बुकिंग की होती तो, बट कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट वीक के लिए, नेक्स्ट वीकेंड के लिए आप इसको प्लान कर सकते हैं और अमृत उद्यान विजिट कर सकते हैं।
0: जी बिल्कुल, सारी इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है माला ने आपको दे दी है सभी लिसनर्स को, तो अब कोई भी एक्सक्यूज नहीं है, आपको सारी डिटेल्स पता चल चुकी है। आप जरूर जाएं, अपनी फैमिली के साथ जाएं, दोस्तों के साथ जाएं, एंजॉय करें, क्योंकि नेचर से जुड़ने का जो मौका है वो जितना ज्यादा जब भी हमें मिले मुझे लगता है हमें ग्रैब कर लेना चाहिए, उसे नहीं छोड़ना चाहिए बिल्कुल भी। माला

0: थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बस अब आप वहां पर एंजॉय कीजिए, अच्छे से लुत्फ उठाइए अमृत उद्यान का, एंड थैंक यू सो मच इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे लिसनर्स को देने के लिए.
1: थैंक यू सो मच दीपिका, बस मैं तो अब चली एंजॉय करने, आप स्टूडियो में एंजॉय कीजिए और मैं यहाँ अमृत उद्यान में लाइव हमारे जो विजिटर्स हैं उनके बीच खूब मजे करूंगी.
0: बिल्कुल बिल्कुल, चलिए फिर बाय.
1: थैंक यू, बाय.

0: बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: ओए रोहन, बहुत दिनों से देख रही हूँ, ना हमसे मिलता है ना साथ खाना खाने आता है। तू हम सबको इतना इग्नोर क्यों कर रहा है?
3: तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम सब भी मुझे इग्नोर करोगे। मुझे

0: HIV है।
1: अरे कम ऑन गाइस, इसे कुछ याद दिलाते हैं।
2: HIV सिर्फ असुरक्षित यौन संबंध से, यूज नीडल शेयर करने से, इन्फेक्टेड ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से, या इन्फेक्टेड मदर से होने वाले बच्चे को हो सकता है। हम सब से मिलने से नहीं,
3: इग्नोर नहीं, याद करो।
4: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
5: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
6: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

जी हाँ, ये है आकाशवाणी एफएम रेनबो, आपके साथ मैं हूँ दीपिका। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आशियाना, और यहाँ जब माला हमें अमृत उद्यान ले गई ना, तो यकीन मानिए मेरे दिमाग में ख्याल आया फूलों का, फूलों की खूबसूरती का। और इसीलिए मैंने आपसे ये जिक्र भी किया कि फूलों से हम जिंदगी में कितना कुछ सीख सकते हैं। और यकीनन ये बात बिल्कुल ठीक है, फूल ना तो मुरझाने से डरते हैं, फूल हमें ये भी सिखाते हैं कि हम कई बार जिंदगी में मुरझा जाते हैं, कई बार चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती। जैसे फूलों के केस में हम कहते हैं कि मौसम फूलों के हिसाब से नहीं होता, लेकिन जैसे फूलों का, हर फूल का मौसम आता है, वो अलग अलग हो सकता है पर मौसम आता है, वैसे ही हमारा वक्त भी आएगा। ऐसे में ज़रूरी है अपने वक्त का इंतज़ार करना, लेकिन तब तक हिम्मत के साथ अड़े रहना और मुश्किलों से घबराना नहीं। एक और चीज़ जो फूल जानते हैं, हमें सिखा सकते हैं कि हमें अपनी पहचान नहीं खोनी चाहिए। हर फूल अपने आप में खूबसूरत है, हर फूल की अपनी पहचान है। अब एक फूल दूसरे के जैसा नहीं बन सकता, उसकी खुशबू, उसकी रंगत दूसरे फूल के जैसी नहीं हो सकती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कम खूबसूरत हो जाता है, क्योंकि उसकी अपनी अलग पहचान है। ऐसे ही हर इंसान डिफरेंट होता है, तो हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि हम खुद को दूसरों से कंपेयर करें, ये सोचें कि वो कितना खूबसूरत है या वो कितना अच्छा है या वो इस काम को किस तरीके से करता। नहीं, हम अपने तरह से जैसे हैं खूबसूरत है, खुश है और एकदम अलग है, यही हमारी पहचान है।

कहते हैं ना, कुछ चीजें जिंदगी में हमें बिना कुछ कहे बहुत कुछ सिखा जाती हैं। जैसे एक खामोश शाम, बारिश की पहली बूंद, बदलता हुआ मौसम और एक फूल। फूल बोलता नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे उसकी पंखड़ियों में जिंदगी की पूरी कहानी लिखी होती है। वो कहता है, खिलना है तो अपने वक्त पर खिलो, महकना है तो अपनी पहचान के साथ महको, और मुरझाने से कभी मत डरो, क्योंकि जिंदगी का खूबसूरत होना हमेशा बने रहने में नहीं है, बल्कि अपने हिस्से के वक्त की खूबसूरती जीने में है। है ना सही बात? इसके अलावा एक और चीज है, जानते हैं, जो फूल हमें सिखाता है और हमें फूलों से जरूर सीखनी चाहिए। वो अपनी खुशबू बिखेरते वक्त ये नहीं सोचते हैं कि किसे खुशबू देनी है और किसे नहीं देनी है। वो सबको अपनी खुशबू बराबर बांटते हैं। और ऐसे में हमें भी कई बार जिंदगी में ये नहीं सोचना चाहिए कि हर अच्छाई के बदले अच्छाई मिले। ये जरूरी भी नहीं है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है आज के वक्त में कि अगर आप अच्छा कर रहे हैं या आप अच्छाई कर रहे हैं तो आपको भी सामने से अच्छाई मिले, ये एक्सपेक्टेशन आप रखें। आप अच्छाई कीजिए, किसी की मदद कीजिए, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर देखिए, लेकिन ये उम्मीद मत कीजिए कि बदले में वो भी आपकी मदद करेगा। किसी की तारीफ कर दीजिए, कभी सुबह उठकर किसी से मिल रहे हैं तो उसे चार अच्छी बातें बोल दीजिए, यकीन मानिए उसका पूरा दिन बेहतर हो जाएगा। पर इसके बदले में रुक कर ये मत सोचिए कि वो भी मुझे सेम चीज बोले या वो भी मेरे लिए कुछ करे। आप

अपने हिस्से की खुशियाँ बांटिए, फिर कहीं ना कहीं से घूम फिर कर वो खुशियाँ आप तक पहुँचना तो लाजमी है ना। आकाशवाणी एफएम रेनबो, दीपिका है आपके साथ, प्रोग्राम सुन रहे हैं आप आशियाना। बातें हो रही हैं कि आखिर फूल जो है हमें क्या कुछ सिखा सकते हैं।

आकाशवाणी एफएम रेनबो, आप दीपिका के साथ हैं। प्रोग्राम आप यहां पर सुन रहे हैं आशियाना। जी हाँ, आशियाना प्रोग्राम में आज हम माला के साथ जुड़े, जो हमें अमृत उद्यान लेकर गई, वहाँ खूबसूरत फूलों और वहाँ मौजूद लोग किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, उन्होंने हमें बहुत सारी बातें बताई। कैसे पहुँच सकते हैं वहाँ पर, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे मेट्रो लेनी है और कैसे वहाँ से शटल सर्विस भी है मेट्रो स्टेशन से, बहुत सारी डिटेल्स आप तक पहुँच गई हैं। तो आई एम श्योर आप जाने की प्लानिंग तो बिल्कुल अब तक कर चुके होंगे। इसके साथ ही साथ फूल जिंदगी में हमें क्या कुछ सिखा सकते हैं, इस खूबसूरत सी बात पर भी हमने यहाँ पर बात की। तो बिल्कुल, फूलों से जिंदगी की बहुत सारी खूबसूरती हम सीख सकते हैं और सीखनी ही चाहिए हमें। और जब हम फूलों की तरह मुस्कुराना सीख लेंगे, महकना सीख लेंगे, मुरझाने के बाद दोबारा खिलना सीख लेंगे, तो जिंदगी अपने आप में बहुत खास हो जाएगी। फिलहाल आपको देनी होगी यहाँ पर दीपिका को इजाजत इस प्रोग्राम में, लेकिन 4 बजे से दोबारा जुड़ूंगी मैं आपके साथ लेकर के प्रोग्राम अल्फा जैन। और यहाँ 3 बजे से अभी आप सुनेंगे रेडियो डॉक्टर। तो इस प्रोग्राम में आपसे ले रही हूँ मैं विदा, पर आपको कहीं नहीं जाना है, आपको आकाशवाणी एफएम रेनबो के साथ बने रहना है।

0: વાણી આકાશવાણી આકાશવાણી દિલ્હી પ્રસ્તુત કરતા હૈ વિશેષ ફોન ઇન કાર્યક્રમ રેડિયો ડોક્ટર.
1: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है. आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है. हमारा दिल बिना रुके दिन रात हमारे पूरे शरीर तक रक्त पहुंचाने का काम करता है. हम सो रहे हों, काम कर रहे हों, हंस रहे हों, तनाव में हों या रेडियो डॉक्टर सुन रहे हों, हमारा दिल लगातार हमारे लिए काम करता रहता है. लेकिन सवाल ये है कि क्या हम अपने दिल के लिए उतना ही काम करते हैं जितना दिल हमारे लिए करता है. आज हम रेडियो डॉक्टर में यही जानने की कोशिश करेंगे. स्वीकार करिए अपनी दोस्त शालिनी मित्तल का नमस्कार. हम जानेंगे आज इस कार्यक्रम में कि हम अपने दिल की देखभाल ठीक से कर रहे हैं कि नहीं, क्या करने की आवश्यकता है कि हमारा दिल लंबे समय तक हमारा साथ दे. यानी बात करेंगे प्रिवेंशन ऑफ हार्ट डिजीजेस की, हृदय रोगों का रोकथाम कैसे किया जाए. और इस विषय पर विस्तृत जानकारी देने के लिए जैसे हर बार हमारे साथ विशेषज्ञ होते हैं, हमारे आज के विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं. आपका तारुफ कराते हैं. हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट हैं प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी, हेड डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन एम्स न्यू दिल्ली से डॉक्टर राकेश यादव. बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर राकेश यादव, आकाशवाणी के एफएम रेनबो के स्टूडियो में आपका.
2: नमस्कार.
1: और डॉक्टर साहब से बहुत सारी बातें हम पहले भी अपने कार्यक्रमों में जानते रहे हैं, कैसे अपने हृदय को स्वस्थ रखें ये डॉक्टर साहब हमें बहुत सरल शब्दों में बताते हैं और आप हमें लिखते रहते हैं कि डॉक्टर साहब को जल्दी बुलाइए. तो लीजिए आज वो दिन आ गया है. डॉक्टर साहब हमारे साथ स्टूडियो में हैं, रेडियो डॉक्टर में हैं और आपकी जितनी परेशानियां हैं उनको हल करने की पूरी कोशिश करेंगे. लेकिन आप हम तक पहुंचेंगे ये आपको वादा करना है. लेकिन बता दें कि क्योंकि हृदय रोग के बारे में जब हम बात करते हैं तो आजकल काफी लोग डॉक्टर साहब चिंता में ये हैं कि बहुत जो युवा जो जनरेशन है या यूथ है वो भी इसकी चपेट में आ रहे हैं. और आजकल हम बहुत न्यूज में देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं कि यंगस्टर्स हैं जिम करते करते डेथ हो रही है, अचानक से कार्डियक अरेस्ट हो रहा है. तो हमने सोचा इस कार्यक्रम

0: को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाएं और अपने यूथ के पार्टिसिपेशन को भी इसमें हम यूथ के जो क्वेश्चंस हैं उनको भी इंक्लूड करने की कोशिश करें। तो आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है एक ऐसे ही यूथ रिप्रेजेंटेटिव को जो कि एक कॉर्पोरेट में काम करती हैं, उनका ऐसे ही बिजी शेड्यूल है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे। तो हम सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं, हमारे साथ स्टूडियो में है परिधि मित्तल, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी रेडियो डॉक्टर में।
1: नमस्कार।
0: तो सबसे पहले हम यही जानेंगे कि किस तरह से यूथ को ये अफेक्ट कर रहा है ये भी जानेंगे, पहले थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए किस तरह का लाइफस्टाइल है आपका और क्या जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब से आज आप।
1: जरूर, मैं एक मल्टीनेशनल आईटी कंपनी में काम करती हूँ और मेरी तरह ऐसे बहुत सारे युवा होंगे जो आजकल मेरी ही तरह की लाइफस्टाइल जी रहे होंगे। काम चलते अक्सर हमने देखा है कि हमारी देर रात तक मीटिंग्स होती है, अलग अलग टाइम स्केड्यूल्स और टाइम जोन के साथ हमें काम करना पड़ता है, इसलिए सोने और उठने का कोई फिक्स स्केड्यूल नहीं रहता। कभी कभी ये भी होता है कि हम पूरे पूरे दिन लैपटॉप और अपने मोबाइल स्क्रीन के सामने हैं, बैठे हुए हैं, ब्रेकफास्ट भी टेबल पे ही कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, डेडलाइंस पर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, तो कोई एक रिलैक्सेशन ही नहीं है। तो इसी टाइप का मुझे लगता है काफी यूथ का लाइफस्टाइल रहेगा। तो मेरे कुछ प्रश्न हैं जो मैं इस कार्यक्रम के थ्रू पूछना चाहूंगी डॉक्टर साहब से। बहुत खुश हूँ
0: जी, डॉक्टर साहब सामने बैठे हुए हैं, हमारे परिधि यहाँ है और बहुत सारे हमारे श्रोता हैं जो रेडियो के उस पार बैठे हैं या फोन से हमें सुन रहे हैं। हमारा ये कार्यक्रम न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी आप सुन रहे हैं लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से, तो बिल्कुल जुड़ जाइए हमारे साथ। अगर आपके मन में भी प्रश्न है जिस तरह से परिधि के मन में प्रश्न है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, फोन लाइन्स खुल चुकी हैं, व्हाट्सएप का भी मैसेज बॉक्स खुला है और आपकी तरफ से कुछ प्रश्न मेरे भी होंगे जो मैं पूछना चाहूंगी डॉक्टर साहब से। तो नोट कर लीजिए हमारे फोन नंबर्स 2342108023421082, और अगर आप दिल्ली से बाहर से हमें कॉल लगाना चाहते हैं तो 011 जरूर लगाइए। व्हाट्सएप पर लिखना चाहते हैं तो 9868107070 पर हमें लिख सकते हैं। एक म्यूजिकल ब्रेक लेंगे लेकिन उससे पहले डॉक्टर साहब, पहले मैं ये आपसे जानना चाहूंगी जो हमारा विषय है आज, हम दिल की बात करना चाहते हैं, कौन कौन सी आम तौर पर बीमारियां जो है होती हैं हृदय संबंधी।
2: देखिए, हृदय में बहुत तरह की बीमारियां होती हैं। जब आप जन्म लेते हैं तो आपके वॉल्व ठीक से नहीं डेवलप होते, आपके हार्ट में छेद होते हैं, उन्हें हम कंजेनाइटल हार्ट डिजीज कहते हैं। फिर जब आप युवा होते हैं तो आपके इन्फेक्शन हो सकता है, आपके वॉल्व खराब हो सकते हैं, उनको हम रूमेटिक हार्ट डिजीज कहते हैं। ये वॉल्व खराब होना आपके बचपन से भी हो सकता है, इन्फेक्शन से भी हो सकता है। फिर जैसे जैसे आप बढ़ते हैं आपकी मसल में प्रॉब्लम हो सकती है, आपके कंडक्शन सिस्टम में, इसे नहीं कहते आपकी हार्ट बीट कम हो गई या हार्ट बीट बढ़ गई, आपके आर्टरीज जो होती है उसमें कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है, उससे हार्ट अटैक हो सकता है। कभी कभी माना जाता है कुछ वायरल फीवर हुए जिससे हार्ट की मसल वीक हो गई, हार्ट के ऊपर एक थिक पेरिकार्डियम होता है, उसकी भी बीमारी हो सकती है। तो बहुत तरह की बीमारियां हार्ट की होती हैं और हार्ट की बीमारियों के साथ साथ जो ब्लड वेसल्स बाहर जाती हैं उनकी भी बहुत बीमारियां होती हैं। तो एक लंबी लिस्ट है, इसमें कैंसर भी हार्ट में हो सकता है।
0: अच्छा, ओके।
2: बहुत मेलिग्नेंसी, तो हार्ट की बीमारियां भिन्न भिन्न तरह की हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए है वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज है जिससे हार्ट अटैक पड़ता है, जो रूमेटिक हार्ट डिजीज है जिससे वॉल्व खराब हो जाते हैं, जो कंडक्शन सिस्टम डिजीज है जिससे वॉल्व हार्ट बीट कम हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो ये तीन ग्रुप सबसे कॉमन है हृदय रोगों को लेके।
0: लेकिन हम हर विषय पर बात कर सकते हैं अगर आपके कोई प्रश्न है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को उसके बारे में जानकारी देना चाहते हैं हम, तो हम चाहेंगे कि हम बहुत सी आम बातें आज इस कार्यक्रम में शामिल करें क्योंकि अवेयरनेस इज द की। अगर हमें जानकारी होगी कि किस तरह से इसको पहचाना जाए, किस तरह से पहुंचा जाए, क्योंकि इसमें यह भी कहा जाता है डॉक्टर साहब कि एक गोल्डन रूल है कि जितना जल्दी इसमें एड मिल जाती है उतना इसमें बचने के चांसेस होते हैं। तो हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि आप अपने प्रश्न हम तक जरूर पहुंचाएं फोन के माध्यम से या लिख कर, जैसा भी आपको कन्वीनियंट हो आप जरूर करें। हम यहां पर एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेंगे, लौट कर आएंगे, आपके प्रश्नों का इंतजार कर रहे हैं हम।

0: आपने कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में, और बिल्कुल दिल तो चाहता है, बहुत सारी चीजें चाहता है, लेकिन सबसे पहले हम चाहते हैं कि हमारा दिल स्वस्थ रहे, क्योंकि वो स्वस्थ रहेगा तो हम हर चीज को एंजॉय कर सकते हैं बिल्कुल। और हमारे एक श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। हेलो
1: जी नमस्कार।
0: जी नमस्कार,
1: पीपी गौतम मेरठ से बोल रहा हूँ।
0: जी गौतम साहब नमस्कार,
1: मेरा पूछना है कि आयुर्वेद में कहा गया है कि जो खट्टे पदार्थ हैं वो दिल के लिए हानिकारक है, क्या एलोपैथ में भी ऐसा माना जाता है या मिथक है? दूसरा एक बीमारी है पैल्पिटेशन, दिल घबराना, क्या ये एक डिसऑर्डर है या एक कंडीशन है? कृपया विस्तार से बताएं।
2: धन्यवाद। खट्टे पदार्थ, किस टाइप के खट्टे पदार्थ की बात कर रहे हैं? जैसे आप नींबू की बात कर रहे हैं, जैसे आप मौसम्मी की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल खतरनाक नहीं है, रादर फायदेमंद है वो। तो ये आयुर्वेद में जो कहते हैं कि खट्टे पदार्थ, उसमें हो सकता हो कोई और चीज के बारे में बात कर रहे हो, बट हम फल की बात ही करेंगे। जो खट्टे फल होते हैं, इमली बहुत अच्छी है, एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छे होते हैं उसमें, तो खट्टे पदार्थ ऐसा बिल्कुल गलत है कि दिल के लिए हार्मफुल होते हैं
0: जी।
2: दूसरा, टैकीकार्डिया जो है वो एक बीमारी है। जब आपकी हार्ट बीट 100 से ऊपर जा रही है, इसका मतलब है कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम है। आप एंग्जायटी में तो भी टैकीकार्डिया हो जाएगा, आपने सिरप पी रखी है तो भी टैकीकार्डिया हो जाएगा। आपको टैकीकार्डिया की बीमारी है, बहुत टाइप की बीमारी होती है, पीएसवीटीज कहते हैं, एक्टोपिक एट्रियल टैकीकार्डिया कहते हैं। तो अगर आपकी

0: हार्टबीट 100 से ज्यादा हमेशा से चलती है तो आप डॉक्टर को जरूर दिखाएं। हाँ, दौड़ते समय अगर आपकी हार्टबीट 100 जाती है तो एक नॉर्मल फिनोमिना है, बट रेस्टिंग स्टेज में अगर आपकी हार्टबीट 90-100 चल रही है, एक बार डॉक्टर को जरूर दिखाएं। हम लोग इसको अच्छा नहीं मानते।
1: इससे क्या हो, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ते हैं?
0: हार्ट अटैक के चांसेस है, अगर आपकी हार्टबीट बहुत लंबे समय तक ज्यादा चल रही है तो इससे आपका हार्ट का फंक्शन कम हो सकता है।
1: ओके, और इट कैन लीड टू फर्दर
0: हार्ट फेलियर लेटर ऑन, तो हम उसे टैकीकार्डिया इंड्यूस कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं।
1: तो दिखाना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जी। तो किस तरह से पता लगे? मैं एक्चुअली यही पूछना चाह रही थी कि कुछ ऐसे संकेत होते हैं या कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिससे आदमी सचेत हो जाए कि हाँ मुझे जाना चाहिए डॉक्टर के पास, क्योंकि नॉर्मली ऐसे तो लोग जाते नहीं है, चेकअप भी रूटीनली कई लोग नहीं कराते।
0: हमेशा याद रखिए, आप एक नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे, आपको कोई सिम्टम नहीं था, सडनली आपने महसूस किया कि मैं चलती फिरती हूँ तो मुझे सीने में दर्द होने लगता है, मैं चलता हूँ तो मुझे सांस फूलने लगती है, मुझे चक्कर आ रहे हैं आजकल, मैं खड़ा होता हूँ तो सडनली आंखों के सामने अंधेरा छा जाता, मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज चल रही है, मेरे दिल की धड़कन कम चल रही है, मेरे चलने में सांस फूलने लगी, पहले मैं 2 स्टेप चल लेता था अब नहीं चल पाता हूँ, हमने अपने नाखूनों में नीलापन देखना शुरू कर दिया, पैरों में सूजन देखना शुरू कर दिया, तो ये सारे के सारे इंगित करते हैं कि आपको कहीं ना कहीं हार्ट की प्रॉब्लम है, उसको जरूर और तुरंत इसका इलाज करें।
1: जी, तो अपने शरीर को देखें, उसको ऑब्जर्व करें, कुछ बदलाव अगर फील होता है तो जरूर डॉक्टर के पास जाएं। और कारणों की बात हम कर रहे थे, आज परिधि हमारे साथ हैं, बहुत सारे कारण आपने बताया हो सकते हैं हृदय रोग के, तो आप कुछ पूछना चाहेंगे क्योंकि आप चाह रही थी युवाओं से संबंधित कुछ प्रश्न करना।
2: बिल्कुल, क्योंकि यही मेरा पहला प्रश्न था कि पहले हार्ट डिजीजेस तो ज्यादातर 50-60 साल उम्र की बीमारी मानी जाती थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि 25-40 साल के युवाओं में भी हार्ट अटैक्स, हार्ट डिजीजेस, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही है, हमें सुनने में अब ज्यादा आने लगा है। तो डॉक्टर, आपके हिसाब से ये बढ़ते ट्रेंड के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है, क्या हो सकता है?
0: देखो, जो हार्ट अटैक बचपन में यूथ में होता था वो हार्ट की बीमारी होती थी, रूमेटिक हार्ट डिजीज जो गरीबी की बीमारी थी, उनको वाल्व में इन्फेक्शन हुआ, वाल्व खराब हो गया। दूसरी होती थी कंजेनाइटल हार्ट डिजीज जो बचपन में पैदा होते ही होती थी, यूथ में ही आ जाती थी। कुछ बीमारी होती थी कार्डियोमायोपैथी जो यूथ में होती थी। अब यूथ में जो हम आप जिस बात पे कह रहे हैं कि आपको हार्ट अटैक हुआ, आपकी कोरोनरी आर्टरी थी, आपको उसमें ब्लॉकेज आ गया, वो ब्लॉकेज बंद हो गया, हाँ यूथ में थोड़ा बढ़ रहा है। कारण उसका है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल का मतलब ये नहीं कि आप काम कर रही हैं तो आपकी लाइफस्टाइल खराब है, जो आप खाते पीते हैं, स्मोकिंग का ट्रेंड बहुत बढ़ गया। स्मोकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है हार्ट अटैक होने का, प्लस ड्रग्स का, कोकेन का इंटेक बहुत है, जो इलिसिट ड्रग्स है उनसे हार्ट अटैक बढ़ता है। फिर आपने देखा सिडेटरी हैबिट्स, आपके माँ बाप को हार्ट की प्रॉब्लम थी, आपका बच्चा 12 साल का उसका वजन है 100 किलो, आपका बच्चा 20 साल का हुआ उसका वजन हुआ 120 किलो, वो सिर्फ घर में बैठा रहता है, सिर्फ जंक फूड खाता है, सिर्फ हाई कार्ब्स डाइट खाता है, वजन बढ़ रहा है, डायबिटिक हो गया, हाइपरटेंसिव हो गया, तो उसकी हार्ट अटैक होने की संभावना 30 से 40 साल में ही हो जाएंगी। वही बच्चा जिसके माँ बाप को हार्ट अटैक कोरोनरी आर्टरी डिजीज थी, अपनी उम्र को साथ के ही रखता तो हो सकता उसको हार्ट अटैक 70 साल में होता। तो एक ये भी कारण है कि हमारी जो लाइफस्टाइल है, जो युवाओं में लाइफस्टाइल है, और तीसरा है आबादी बढ़ रही है, हमारा सोशल मीडिया बढ़ रहा है तो पता भी लग जाता है,
1: ये भी बात है। लेकिन जैसे बहुत सारी चीजें होती है जो आपको इम्पैक्ट करती है, जो आप देखते हैं कि कोई इतना कॉन्शियस है अपने बॉडी बिल्डिंग के लिए, ये रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा है, जिम जा रहा है, पर इस तरह की चीजें जब आप अपने सामने देखते हैं कि बिल्कुल जिम करते करते, एक्सरसाइज करते करते, और एज भी कम है, और वो रेगुलर वो रहा है हैबिचुअल इन एक्सरसाइज, तो हमें लगता है अरे ये एक्सरसाइज करने के बाद भी हो रहा है, तो क्या कारण?
0: पहली बात आप ये जान लीजिए कि हार्ट प्रोटेक्टिव एक्सरसाइज एक माइल्ड एक्सरसाइज है। अब 40 मिनट एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं, उसके ऊपर करते हैं तो ये मत मानिए हार्ट आपका प्रोटेक्ट है। इन लोगों में जो चीज हुई है, जैसे जिम करते करते, ये बेसिकली इनमें कोई ना कोई हार्ट की प्रॉब्लम थी जो इन्होंने दिखाई नहीं, उनको सिम्टम्स थे जो इन्होंने इग्नोर किए।
1: अच्छा।
0: अब एक बहुत बड़े कॉमेडियन जिम करते समय जिनकी डेथ हो गई, वो इसलिए हुई क्योंकि उनको एंजाइना हुआ, उनके हार्ट में 7-8 स्टंट डले हुए थे, तो उनको एंजाइना होने लगा, और उन्होंने कहा मैं जिम से एंजाइना ठीक कर लूंगा। अब वो 10 की रफ्तार से दौड़े तो हार्ट अटैक होने ही था। तो जो ये तरह की घटनाएं होती है, ज्यादातर आइदर इनमें कुछ चैनलोपैथीज होती है, कुछ ऐसी बीमारियां होती है हार्ट की जिसको हम लोग मानते हैं कि स्ट्रेस से, जिम करने से हार्ट अटैक हो सकता है, तो इनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। तो हम हमेशा कहते हैं अगर आप ज्यादा जिम करना चाहते हैं, एक बार अपने को डॉक्टर को जरूर दिखा के करें। बहुत बार हमने देखा है जिम करने जा रहे हैं, कभी ब्लड प्रेशर नहीं नापा। अब जिम करते करते एक दिन को सांस फूलने लगी तो देखा 200/100 बीपी था। अगर 200/100 बीपी में आप जिम करोगे तो आपकी हार्ट की ऐसी तैसी होनी ही होनी है। तो ये है इम्पोर्टेंट चीज की जी। ये दोष आप जिम को मत दीजिए, दोष

0: इंसान को दीजिए जिसने वो चेक नहीं किया।
1: कई बार ऐसा भी होता है जैसा आप बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बात है डॉक्टर साहब, कि हमारे यहाँ हमने ये देखा है, इंडिया की मैं बात कर रही हूँ, कि अपने आप से लोग टीवी देखकर शुरू कर देते हैं एक्सरसाइज करना, कि ये दिखाया जा रहा है मैं कर लूं, या जिम चले गए, वहां पे उन्होंने बोला मुझे जिम ज्वाइन करना है, और उधर में आपका इंस्ट्रक्टर भी नहीं है, आप बस चढ़ गए आप किसी मशीन पे, ट्रेडमिल पे, मतलब इट इज नॉट गाइडेड एज सच एंड इट इज नॉट कस्टमाइज एज सच। तो ये सारी चीजें भी नुकसान कर सकती हैं, और शायद यही वो इम्पैक्ट डालती हैं जब आप इतनी अवेयरनेस के साथ एक्सरसाइज नहीं करते हो।
0: देखिए, आपको अगर एथलीट नहीं बनना है, आपको बैडमिंटन प्लेयर नहीं बनना है, तो आप सुबह उठिए, एक नॉर्मल वॉक करिए 5 से 6 किलोमीटर पे। वॉक करने के बाद थोड़ी स्ट्रेचिंग करिए। योगा में हमें पीटी सिखाते थे, हाथ को ऊपर ले जाओ, नीचे ले जाओ, आगे ले जाओ, थोड़ा पीछे स्ट्रेच कर लो, थोड़ा साइड में स्ट्रेच कर लो, इसे हम लोग कहते हैं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। तो आप अगर एक स्वस्थ जीवन जीना चाहती हैं, तो वॉक करिए, वॉक करने के साथ साथ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लीजिए, आपके लिए वो सफिशियंट है। अगर आप बॉडी बनाना चाहती हैं, तो किसी की सहायता लीजिए, कोई ट्रेनर की सहायता लीजिए। आप योगा करना चाहती है, छोटे मोटे योगा आप आराम से कर लीजिए, बट अगर आप अच्छा योगा करना चाहती हो, आप टीवी देख के करेंगी, तो कहीं ना कहीं आप अपने को नुकसान पहुंचाएंगे।
1: जी, बहुत सारे फैक्टर्स हो जाते हैं, और हम चाह रहे हैं कि ये हाईलाइट हो हमारे इस प्रोग्राम में, ये फैक्टर्स जो कई बार हम इग्नोर करते हैं। हमें पता होता है हम अच्छे के लिए कर रहे हैं एक्सरसाइज, या टीवी भी देखकर कर रहे हैं तो अच्छे के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो अल्टीमेटली हमको हार्म पहुंचा रहा है, ये हम नहीं जान पाते हैं। तो जो लोग भी कार्यक्रम सुन रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि आप जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं उनकी एडवाइस फॉलो करें। एक श्रोता वेट कर रहे हैं फोन लाइन पर। हेलो
2: हेलो
1: हेलो जी, नाम बता दें अपना।
2: श्याम सुंदर धवन हूँ।
1: जी जी हाँ, बताए क्या पूछना है।
2: ऐसे है नमस्कार जी।
0: नमस्कार
2: सर, मेरी 1903 में वारल टाइप का मिलता पीजीएल चंडीगढ़, 2016 में सर, लोअर 16 में, तो वो वाल्व।
1: डॉक्टर साहब हमें समझ नहीं आ रहा है, आपकी आवाज ब्रेक हो
0: गई। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बता रहे हैं कि आपके मिसेज का वॉल्व सुकुड़ गया, तो क्या करें? अगर वॉल्व सुकुड़ गया तो आप डेफिनेटली कार्डियोलॉजिस्ट से मिलें, अपना इको कराएं और उसका इलाज।
1: और बहुत सारे प्रश्न हमारे पास आ गए हैं व्हाट्सएप के माध्यम से भी, हमारे श्रोता हमारे गेस्ट का स्वागत कर रहे हैं। ये क्वेश्चन है, 48 ईयर्स की है एज है इनकी, और इन्होंने जिम ज्वाइन कर रखा है। इन्होंने लिखा है, जिम स्टार्ट करने से पहले कोई मेडिकल टेस्ट, जैसे हम अभी बात कर ही रहे थे उस पर इनका आया प्रश्न, कि क्या कोई मेडिकल टेस्ट करवाना चाहिए या नहीं, जिससे पता चले कि मैं फिट हूं। चानेश्वर गोत कराची से ये हमारे श्रोता हैं, अमर रमेश कुमार खत्री।
0: देखिए बिल्कुल है, अगर आप बहुत लाइट सा जिम करना चाहें तो आप अपना ब्लड प्रेशर जरूर चेक करा लें, आप अपनी शुगर जरूर चेक करा लें आप, और इसके पहले ये जरूर जाने कि आपको कोई सिम्टम्स तो नहीं है। आपकी सांस फूलती है तो बिना डॉक्टर के दिखाए जिम में आ जाए, आपको चलने में सीने में दर्द होता है तो बिना दिखाए, आपको चलने में चक्कर आते हैं ना जाए। तो अगर आप अच्छा जिम करना चाहते हैं तो आप अपना ब्लड प्रेशर शुगर एक ECG तो करा लें, और एक कार्डियोलॉजिस्ट या फिजिशियन से अपने एग्जामिनेशन करा लें, उसके बाद ही आप विग्रस जिम में जाए। माइल्ड जिम में हम लोग कहते हैं कि आप ब्लड प्रेशर करा लें, शुगर ना तो कोई दिक्कत नहीं है।
1: ओके ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का
0: जिम, लेवल का जिम करना चाहते हैं।
1: बिल्कुल। प्रकाश चंद्र जी लिख रहे हैं रोहिणी दिल्ली से, कि डिफरेंस बता दीजिए डॉक्टर साहब कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक का, आप बता चुके हैं हमारे
0: जी। हार्ट अटैक में, हार्ट अटैक हम बेसिकली एंजाइना को कहते हैं, आपके सीने में आर्टरी बंद हुई, आपको सीवियर चेस्ट पेन हुआ, और कार्डियक अरेस्ट मतलब मरीज बेहोश होकर गिर गया हो। तो हर कार्डियक अरेस्ट हार्ट अटैक नहीं होता, और हर हार्ट अटैक कार्डियक अरेस्ट नहीं होता। कार्डियक अरेस्ट के और भी बहुत कारण है हार्ट अटैक के।
1: तो हार्ट अटैक जब होता है तो
0: उसमें 10% या 20% लोगों को कार्डियक अरेस्ट
1: भी हो जाता,
0: तो हमने कहते हो बेहोश होकर गिर गया, हमने CPR किया, बचा लिया, नहीं बचा पाए। तो कार्डियक अरेस्ट का मतलब है कि आप बेहोश हो चुके हैं, आपका हार्ट काम करना बंद कर चुका है।
1: जी, आपने CPR का जिक्र किया, ये एक फर्स्ट एड भी बहुत जरूरी है सबको जानना, CPR जानना, तो किस तरह से वो हेल्प करता है अगर किसी को लाइफ सेव कर सकते।
0: आपका कार्डियक अरेस्ट हुआ इसका मतलब आपके हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, तो आपको ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी। तो आप मसाज करके हार्ट को अगर ऊपर से दबाएंगे तो उससे भी ब्लड पंप हो जाएगा। आपके पीछे हार्ट है, ऊपर से आपने चेस्ट दबाना शुरू किया तो हार्ट भी उसमें दबता है, जब हार्ट दबता है तो ब्लड पंप कर देता है, तो ट्रांजिएंट जब तक आपको फर्स्ट एड ना आ जाए आप कम से कम ब्रेन को ब्लड पहुंचा सकते हैं, और कार्डियक अरेस्ट तो हम 30 मिनट बाद भी रिवाइव कर सकते हैं, लेकिन ब्रेन 3 मिनट बाद रिवाइव नहीं होता।
1: ओके, तो दैट इज व्हाई इट्स सो।
0: उस समय जब तक आपको मेडिकल हेल्प ना आए, अगर आप ढंग का कार्डियक मसाज करते रहते हैं तो ब्रेन बचा लेते हैं और पेशेंट को हो सकता है बचा भी ले जाए।
1: जी, तो अगर किसी का घर दूर है या उसको पहुंचने में टाइम लग रहा है तो सीपीआर

0: के थ्रू उसको बचाया
1: बिल्कुल
0: जा
1: अगर
0: सकता है।
1: वो कार्डियक अरेस्ट में है, उसको कोई पल्स नहीं मिल रही, उसकी सांस बंद हो गई है, तो आप सीपीआर करके बिल्कुल, बहुत बार आपने देखा होगा, बहुत लोगों को बचाया जा चुका है इससे।
0: पर सीपीआर को सीखने के लिए उसको सही तरीके से करना बहुत जरूरी है,
1: बहुत जरूरी है। आजकल बहुत एनजीओ ट्रेन करते हैं, आजकल बहुत यूट्यूब में भी सीपीआर के कैसे करें सीपीआर, तो अगर आप चाहें तो आप YouTube से भी सीख सकते हैं और बहुत एनजीओ की ट्रेनिंग देते हैं,
0: तो ये भी बहुत जरूरी है क्योंकि हम किसी की मदद कर सकते हैं, किसी फैमिली मेंबर की या किसी रिलेटिव या फ्रेंड या नेबर जो भी हमें दिखता है उसकी हेल्प कर सकते हैं। हमारे एक कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो
2: हेलो
0: जी, आप रेडियो डॉक्टर में?
2: जी अमित त्यागी बात कर रहा हूँ मैम, सभी को मेरा प्यार
0: जी। नमस्कार अमित जी,
2: सवाल मेरा मैम ये है कि जैसे दो इंसान घर में ही कसरत करते हैं, योगा करते हैं, उनके लिए भी कोई टेस्ट कराना चाहिए?
1: नहीं नहीं, आप एक हमेशा याद रखिए, आप अगर 40 साल 50 साल के युवा हैं तो कम से कम आपका एक बार ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर तो आपका मेजर होना ही चाहिए। ये तो आप करें या ना करें ये तो रूटीन है, क्योंकि अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है और आप योगा करते हैं तो ये गलत है, कंट्रोल करिए उसको। तो जो एक सिंपल से टेस्ट है, आपका हीमोग्लोबिन 7 है और आप योगा करने चलेंगे, तो ये आप घर में योगा करते हैं बहुत अच्छी बात है। फिर भी हम हमेशा कहते हैं कि एक इंसान को साल में एक बार अपने बेसिक टेस्ट करा लेना चाहिए।
0: जी, आप हीमोग्लोबिन की बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, मुझे एक मैसेज दिखा है दिव्या का, बिहार से आया है, हीमोग्लोबिन इनका 7.9 है, बीपी हमेशा कम रहता है, क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब?
1: हीमोग्लोबिन 7.9 क्यों है इसकी जांच करानी चाहिए, इनके ब्लड टेस्ट कराने चाहिए, हो सकता आयरन डिफिशियंसी के कारण हो, हमें उसको सप्लीमेंट करना है। अगर हीमोग्लोबिन उससे ऊपर चला जाता है तो बहुत बढ़िया है, 7.5 हीमोग्लोबिन शरीर के लिए बहुत खतरनाक है, तो आप किसी डॉक्टर को दिखा के अपनी जांच कराइए।
0: और बीपी लिखा है हमेशा कम रहता है,
1: अच्छी बात है, बीपी कम
0: अच्छा,
1: रहता है,
0: बीपी का कुछ इशू इतना नहीं है, लेकिन हीमोग्लोबिन के लिए आपको
1: बिल्कुल दिखाइए, आप बहुत कारणों से हीमोग्लोबिन कम होता है।
0: अच्छा, तो ये टेस्ट होंगे और पता
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी। और डॉक्टर साहब सुधीर कुमार कुतुबगढ़ से लिख रहे हैं, नमस्कार मैडम जी, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार, डॉक्टर साहब को बुलाते ही मैडम हार्ट अपने आप ठीक हो जाता है। तो डॉक्टर साहब आया करिए, इतने सारे श्रोताओं का हार्ट ठीक हो जाएगा। और हमने डॉक्टर डे पर डॉक्टर साहब को याद किया था और आपने मुझे याद है, आपने मैसेज भी किया था, और डॉक्टर साहब की एक कहावत हमें याद रहती है, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, तो आप बता दीजिए डॉक्टर साहब, बहुत सारे हमारे श्रोता होंगे कि आपने क्यों कहा था, क्यों कही थी ये कहावत?
1: मैंने कहा था कि देखिए, आपको अगर आपके फैमिली में आपको माँ बाप को डायबिटीज है, आपके माँ बाप को ब्लड प्रेशर है, आपके माँ बाप को हार्ट अटैक है, उसके बाद भी आपने अपनी लाइफ स्टाइल नहीं सही की, तो एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, तो आपको बीमारी बहुत जल्दी होनी है
0: जी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में डॉक्टर साहब ने कहा था, और अगर आप ये बात याद रखते हैं तो ये वाली बात भी याद रखते होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर जी, आपने हमें मैसेज किया, हमें याद दिलाया है डॉक्टर साहब की बात, जो और सभी श्रोताओं तक पहुंची है। यहाँ पर एक म्यूजिकल ब्रेक लेकर वापस आएंगे, आप यूं ही हमें लिखते रहिए और इस कार्यक्रम को सुनते रहिए, क्योंकि हमें इंतजार है आपके प्रश्नों का। आप सुन रहे हैं रेडियो डॉक्टर।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: आप हैं रेडियो डॉक्टर में और रेडियो डॉक्टर में बात हो रही है आज प्रिवेंशन ऑफ हार्ट डिजीजेस पर, कैसे हृदय रोगों से अपने आप को सुरक्षित रखें, कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। हमारे रेडियो डॉक्टर हमारे साथ हैं, आप प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी हेड डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन डॉक्टर राकेश यादव, और हमारे साथ हमारी युवा प्रतिनिधि परिधि मित्तल साथ में है। आपके प्रश्न हमें लगातार मिल रहे हैं, हमारे श्रोता भी वेट कर रहे हैं फोन लाइन पर, पहले इनसे बात कर लेते हैं। हेलो।
2: हेलो
1: जी, नमस्कार।
2: जी, मैं आईपी पांडे बोल रहा हूँ, हौज खास दिल्ली से।
1: जी
2: डॉक्टर साहब को और आपको भी मेरी तरफ से नमस्कार।
1: जी नमस्कार
2: डॉक्टर साहब। एक्चुअली ऐसा हुआ कि 2 साल पहले मेरे को गैस में थोड़ा सा गैस की प्रॉब्लम है मुझे, तो मैं एक सरकारी हॉस्पिटल में गया और डॉक्टर साहब ने मुझे ब्लड टेस्ट लिखा और ईसीजी करने को कहा। ईसीजी के बाद उन्होंने टीएमटी कहा और टीएमटी में भी कुछ प्रॉब्लम आया तो उन्होंने सीटी स्कैन कराया, उसमें कुछ भी नहीं आया जबकि टीएमटी और ईसीजी में कुछ प्रॉब्लम दिखाया। तो क्या ये हार्ट की प्रॉब्लम है और इन बिटवीन मुझे मेडिसिन डॉक्टर ने शुरू किया?
3: अगर आपको सीटी स्कैन नॉर्मल है सीटी एनजीओ तो आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज नहीं है, बट अगर ईसीजी में कोई और प्रॉब्लम है, वो और तरह से भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो आप अपने डॉक्टर से दिखाएं कि आपकी ईसीजी में क्या प्रॉब्लम है। टीएमटी अगर माइल्ड पॉजिटिव और सीटी नॉर्मल है तो इसके मतलब आप नॉर्मल, आपका हार्ट का एंजियोग्राम है, डोंट वरी।
2: डॉक्टर साहब उन्होंने

0: एटलीस्ट सिटी स्कैन को तो नॉर्मल बोल दिया, लेकिन जो टीएमटी हुआ था उसमें कुछ प्रॉब्लम दिखा।
1: अरे टीएमटी को उठा के फाड़ के आप फेंक दीजिए, जब एक बार आपका सीटी हो गया उसमें सब नॉर्मल है तो टीएमटी का कोई रोल नहीं है।
0: ठीक है डॉक्टर सर, मैं रेगुलर योगा करता हूँ और वॉक भी करता हूँ, तो क्या मुझे चांस बनता है क्या इस तरह की प्रॉब्लम होने की?
1: नहीं होगा, आप बढ़िया योगा करिए, बढ़िया वॉक करिए, अगर सीटी जो नॉर्मल है तो हार्ट अटैक होने की संभावना आपकी शून्य के करीब है।
0: थैंक यू डॉक्टर,
2: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और एक और साथी हमारे फोन लाइन पर है, हेलो।
3: नमस्ते शालिनी जी।
2: जी नमस्कार।
3: डॉक्टर को भी नमस्कार।
1: नमस्कार
2: जी, नाम बता दीजिए।
3: सर मैं सतबीर सिंह, गांव बेगान सोनीपत हरियाणा से।
2: जी जी बताएं बताएं।
3: डॉक्टर साहब मेरा हार्ट जो वर्टिकल होता है और हॉरिजॉन्टल, उसमें क्या साहब?
1: आपको हार्ट की कोई दिक्कत है?
3: वो मेरे हार्ट में कुछ खिंचाव सा होता है डॉक्टर साहब।
1: आपको चलने फिरने में कोई दिक्कत है? आपका इको खराब है?
3: दिक्कत नहीं है, तो मैं
1: वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल
3: हुआ था तो
1: देखिए, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हार्ट से आपको अगर कोई दिक्कत नहीं है तो कोई बात नहीं है। हाँ उसकी एनाटॉमी में कोई दिक्कत है तो अलग बात है, वो हम बिना आपका इको देखे बता नहीं सकते, पर एज वेल एज वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल हार्ट आपको कोई सिम्टम नहीं है तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं है।
2: चलिए धन्यवाद कॉल करने के लिए। और आप कुछ पूछेंगे युवाओं के लिए संबंधित?
4: हाँ, मेरा एक प्रश्न है, अभी डॉक्टर साहब से जब मैंने पहले पूछा था उन्होंने ई सिगरेट की बात की थी, तो मेरा ये प्रश्न था कि आजकल बहुत से युवा ई सिगरेट या वेपिंग का इस्तेमाल करते हैं, कई लोगों का ये मानना है कि अगर उसमें निकोटीन नहीं है या वो निकोटीन फ्री है तो उससे कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन क्या ये सच है? क्या ई सिगरेट या वेपिंग चाहे उसमें निकोटीन हो या ना हो दिल और फेफड़े की सेहत पे कोई भी असर नहीं डालता?
1: ये वेपिंग बेसिकली ई सिगरेट निकोटीनी होती है, उसको कहा जाता वो प्योर फॉर्म ऑफ निकोटीन है। सिगरेट में कहा जाता 7000 चीजें सिगरेट से पेट अंदर जाती है, वेपिंग में कहा जाता सिर्फ निकोटीन जाता है। बट एक चीज मानिए, निकोटीन जो है वो एडिक्शन है, इसकी एडिक्शन लाइबिलिटी है, हो सकता है आपको हार्ट अटैक ना करे पर ग्रेजुअली ये आपके दिमाग को खराब करेगा, एडिक्शन लाइबिलिटी है। और बहुत बार जैसे यूथ लेता है, इम्पोटेंसी का बहुत इम्पोर्टेंट कार्ड वेपिंग है, बच्चों को ये नहीं समझ में आता कि ग्रेजुअली इम्पोटेंट हो रहे हैं बच्चे, स्किन की प्रॉब्लम निकोटीन से होती है, तो ये रिप्लेसमेंट नहीं है। और वेपिंग में आप देखोगे दिन भर पीता रहता है, तो वो भले कहता है कि सर वेपिंग में हम 40 वेप लेते हैं तो एक सिगरेट का निकोटीन जाता है, बट वो दिन भर आप ले रहे हैं तो आप बताइए कितनी निकोटीन कंज्यूम कर रहे हैं। तो वेपिंग देश में बैन है और मैं तो बिल्कुल समर्थन करता हूं कि ये बैन होनी चाहिए, क्योंकि इससे बहुत अधिक मात्रा में निकोटीन जाता है।
2: जी, तो ये एडिक्शन
1: एडिक्शन है, बहुत बड़ा एडिक्शन
2: जी। हमारे एक और साथी हमारे साथ फोन लाइन पर है, हेलो।
5: हेलो
2: जी।
5: जी नमस्कार।
2: जी नमस्कार,
5: मैं मोहम्मद काजिम बोल रहा हूँ दिल्ली से।
2: जी काजिम साहब बताएं क्या पूछना है?
5: डॉक्टर साहब नमस्कार।
1: नमस्कार
5: सर, मुझे पूछना ये, जैसे आपने शुरू में कहा कि हार्ट में कैंसर भी हो सकता है, और कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसको लोग सबसे जो है जब एडवांस स्टेज में पहुंच जाए तो इलाज कराते हैं, तो हार्ट कैंसर के बारे में बताइए विस्तार से।
1: हार्ट में जो कैंसर होता है वो हार्ट में कैंसर उसकी मसल में हो सकता है, उसके फाइबर्स में हो सकता है, उसके पेरिकार्डियम पे हो सकता है, और ये कभी कभी स्लोली ग्रो करता है। तो हार्ट के अंदर कैंसर है तो सिम्टम मिलेंगे कि आपकी सांस फूलेगी, सांस फूल के वॉल्व खराब कर सकता है। तो हार्ट में जो भी कैंसर है वो भी ऐसा नहीं है कि साइलेंट होते हैं, और इसमें कुछ कैंसर का इलाज है कुछ का नहीं है।
2: चलिए धन्यवाद, आपको प्रश्न का जवाब मिल गया। डॉक्टर साहब मैसेजेस भी बहुत सारे हैं हमारे पास, एक ये मैसेज है लिखने वाले हैं, रोहतक से हमें मैसेज किया है आरएस मलिक जी ने, लिख रहे हैं कि डॉक्टर साहब मैं 70 साल का हूं और मेरे 2 बार स्टेंट पड़ चुके हैं और मैं इको स्प्रिन 75/40 ले रहा हूं। क्वेश्चन इनका बहुत स्पष्ट मेरे पास नहीं आया, लेकिन एक तो ये वेट लॉस के बारे में पूछ रहे हैं कि मुझे वेट लॉस है और क्या मैं दवाई रिड्यूस कर सकता हूं।
1: देखिए बेसिकली एस्प्रिन तो 75 से कम नहीं कर सकते, स्टैटिन 40 मिल रही है, तो अगर आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बहुत कम हो गया है तो उसको रिड्यूस कर सकते हैं। अक्सर स्टैटिन से आपका वेट लॉस बहुत रेयर होता है, बट होता क्या है कि जब आपको हार्ट अटैक होता है तो आप अपनी जिंदगी को सुधार लेते हैं, तो आप कम वैसे ही खाते हैं, आप वॉक करना शुरू कर देते हैं,
2: ऑयली चीजें नहीं खाएंगे, डीप फ्राई नहीं खाएंगे,
1: तो आपका वेट अपने आप कम हो जाता
2: है। जी, जी,
1: तो अगर आपने ये सब काम नहीं किया है और फिर भी वेट लॉस हो रहा है तो जरूर आप डॉक्टर को दिखाएं। बट अगर आपने अपनी डाइट और सब रेस्ट्रिक्ट कर रखा तो वेट लॉस तो स्वाभाविक है।
2: और मेडिसिन को अपने से कम ज्यादा करना,
1: जो दवा दी गई है उसको बिल्कुल कम नहीं करना, इसमें कुछ दवाएं आजीवन खाई जाती है,
2: और जितना डॉक्टर बोले और जब उसको कम करवाना है तो डॉक्टर ही से लेकर एडवाइस।
1: बिल्कुल।
2: मोनीश इतरीसी बिलास बिलासपुर यूपी से इन्होंने हमें लिखा है कि मेरे जिया जी को पसीना बहुत आता है और क्या ये भी कोई संकेत है, क्या दिल की बीमारी का संकेत होता है अगर पसीना आए तो?
1: कुछ लोगों को ज्यादा पसीना आता है, इसका किसी चीज से लेना देना नहीं है, उनको थोड़ा सा अपने को प्रॉपरली हाइड्रेट रखना चाहिए।
2: जैसे लक्षणों की जब हम बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, तो कौन से ऐसे लक्षण है? तो कई बार ये कहा जाता है पसीना आ रहा है, घबराहट हो रही है,
1: वो एक एपिसोडिक है, उस समय आपको बहुत पसीना आ रहा है क्योंकि आपका सिंपैथेटिक ड्राइव बहुत बड़ा हुआ है।
2: Okay.
1: बट अगर उनको ज्यादा पसीना आता है, दिन भर आता
2: है, नॉर्मल है,
1: तो उसके लिए
2: रूटीन में आता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है,
1: वो तो एपिसोडिक, उस समय आपको पसीना आ रहा है।
2: और क्या ऐसे सिम्टम्स हैं जो बहुत अलार्मिंग होते हैं?
1: चेस्ट पेन सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके चलने पे सीने में दर्द हो रहा है, बहुत सीवियर, अक्सर एसिडिटी की फीलिंग होती है कि जलन हो रही है पेट में। तो अगर वो अनयूजुअल है और आपको लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको कभी दबाए ना, उसको तुरंत लेके डॉक्टर के पास मिले।
2: और कई बार डॉक्टर साहब कहते हैं कि शोल्डर या हाथ में भी चला जाता है पेन।
1: देखिए, नाभि से चिन तक कोई भी पेन अगर चलने फिरने में हो रहा है तो वो एंजाइना है। कोई भी पेन बहुत सीवियर हो रहा है, जिससे आपको स्वेटिंग हो रही है, आपको लग रहा है, आपको घबराहट हो रही है, तो वो भी एंजाइना के सिम्टम हो सकते हैं। कभी कभी एंजाइना सिर्फ वॉमिटिंग के साथ प्रेजेंट करता है, आपको एक दो वॉमिटिंग हुई पता लगे इन्फीरियर वाले में आई है। तो कोई सिम्टम्स ओल्ड एज में इग्नोर ना करें अगर वो आपको ट्रबल दे रहे हैं।
2: और क्या ये सिम्टम्स सबसाइड कर जाते हैं अगर वो आदमी रेस्ट करे या बढ़ जाते हैं?
1: बेसिकली रेस्ट करने में कम तो हो जाते हैं, बट एक्यूट हार्ट अटैक जो पड़ रहा है उसमें तो आर्टरी आपको खोलनी है, आर्टरी तो बंद हो गई है। जो एंजाइना होता है उसमें आर्टरी 80-90% तक बंद होती है, तो वो आगे का लोड नहीं ले पाती, जैसे रेस्ट करेंगे वो फ्लो चला जाएगा। बट जो एक्यूट हार्ट अटैक होता है उसमें तो आर्टरी बंद हो चुकी होती है, उसमें रेस्ट करने से दर्द कम नहीं होगा, हाँ आपको अस्पताल ले जाने में सहूलियत होगी।
2: जी जी, एक और हमारे साथी हैं जो कुछ पूछना चाहते हैं। हेलो,
6: नमस्ते मैम।
2: नमस्कार जी,
6: मैं उमेश गाजीबाद से बोल रहा हूँ।
2: जी जी, बताएं उमेश जी, क्या पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब से?
6: डॉक्टर साहब को नमस्कार।
1: नमस्कार
6: डॉक्टर साहब, मेरी उम्र 44 वर्ष है, मैं ठीक हूँ, पर मुझे इस टाइम घबराहट होती है कभी कभी, तो मैं आपसे जानना चाहता है किस बीमारी का संकेत है और मुझे कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए जिससे मुझे पता पड़ जाए?
1: पहले तो आप डॉक्टर के पास जाइए। घबराहट बहुत बार आपकी एंजाइटी से होती है, आपकी स्लीप डिस्टर्ब है, आपके जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ प्रॉब्लम है, आपकी फैमिली प्रॉब्लम है, तो पहले आप अपना असेसमेंट कराइए कि ये घबराहट किस कारण हो रही है, तब इलाज कराइए। ज्यादातर ये घबराहट जो होती है हम उनको एंजाइटी के कारण ही होती है, और साइकेट्रिस्ट इसके लिए बेस्ट लोग होते हैं।
2: उमेश जी, जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं, पहले आप इसको रूल आउट कर लीजिए कि कोई स्ट्रेस एंजाइटी तो नहीं है आपको। मनीषा जी हमें लिख रही है, 75 ईयर्स की, रांची में रहती है। डॉक्टर साहब, मुझे AFIB हो गया है, कोई बीमारी का नाम लिखा है इन्होंने,
1: AFib,
2: इन्होंने कैपिटल
1: एट्रियल फिब्रिलेशन हो गया 75 साल में। कोई बात नहीं, इसका इलाज है, कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाइए, इसकी दवा है, कंट्रोल करिए।
2: ये हार्ट डिजीज है,
1: कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत होता है इस स्टेज में।
2: सावधानी कुछ लिख सकते,
1: दवा खाइए, आपको जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे वो दवा खाइए, ये आप अपनी अकल से इसको ठीक नहीं कर सकते।
2: ठीक है, इन्होंने लिखा दवाई तो मैं खा रही हूँ, पर कोई सावधानी हो तो आप बता।
1: कुछ नहीं है, आप बस योगा कर सकती है, रिलैक्सिंग एक्सरसाइज कर सकती है, तो उसमें भी पाया गया ये इसके इंसिडेंस कम हो सकते हैं।
2: जी, तो जैसे आपने बताया कि बहुत सारी ये बीमारियां हो सकती है, तो किस तरह से हम इसको चेक कर सकते हैं? अगर एनुअली हम कोई टेस्ट कराना चाहें तो कर सकते हैं, क्या प्रिवेंटिव की बात कर रहे हैं?
1: बेसिकली एनुअल चेकअप का जो फंडा है कि आप हमेशा अपना एक साल में एक बार ब्लड प्रेशर, अगर आपको नहीं है, शुगर और कोलेस्ट्रॉल कराएं, तीन बस।
2: अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, जैसे आजकल बहुत
1: इलाज कराएं, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो इलाज कराएं, शुगर बढ़ी हुई है तो इलाज कराएं, और आपका एक जनरल एग्जामिनेशन हो जाए। इतना अगर आप कराते रहते हैं तो आपकी जो बीमारियां हैं वो बहुत जल्दी पकड़ में आ जाएंगी।
2: जी, तो प्रिवेंशन पर हम और बात करेंगे। हमारे एक श्रोता भी आ गए फोन लाइन पर, मैं एक म्यूजिकल ब्रेक लेने वाली थी लेकिन पहले इनसे बात कर लेते हैं। हेलो
7: हेलो, हाजी सालनी मित्तल जी, नमस्कार।
2: जी जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
7: और डॉक्टर साहब को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं PR साहू बोल रहा हूँ, लक्ष्मी विहार बुढ़ारी से।
2: जी जी साहू जी, बताएं क्या प्रश्न है?
7: मैं ये पूछना चाह रहा था जी कि पहले मैं 10 साल पहले BP की दवाई ले रहा था, तो अभी ये कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो डॉक्टर ने मुझे प्रेस्क्राइब किया 14, तो सर उससे जो है ना कम हो गया, मतलब ये हो गया अब 130 और 64।
1: बढ़िया, खाते रहिए दवा से कंट्रोल में।
7: तो सर ये मतलब कंटिन्यू रखना है या छोड़ना है?
1: कभी नहीं छोड़ा जाता, बीपी की दवा अगर एक बार शुरू हो गई तो जिंदगी भर चलनी है, कभी मत छोड़िएगा उसको।
7: अच्छा अच्छा, ठीक सर, यही मैं पूछना चाह रहा था।
2: धन्यवाद, आपको जवाब मिल गया। और यहाँ पर एक म्यूजिकल ब्रेक लेकर वापस आएंगे। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं आप हमें फोन कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब यहाँ पर रहेंगे 4 बजे तक। क्या आपके क्वेरीज हैं आप जरूर पूछिए, हम बात कर रहे हैं हार्ट डिजीज पर।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर और बात हो रही है प्रिवेंशन ऑफ हार्ट डिजीजेस पर। हमारे साथ परिधि हैं। परिधि, क्या पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब से?
1: मैंने जैसे शुरू में बताया था कि यूथ का मेरा भी काफी बहुत खराब स्केड्यूल हो गया है, बिकॉज वर्क है, लेट तक चल रहा है, लेट उठ रहे हैं, टाइम का कुछ वो खाने पीने का कुछ वो है नहीं स्केड्यूल। तो अगर किसी व्यक्ति का स्लीप स्केड्यूल हमेशा से ही इररेगुलर हो तो क्या शरीर को इसकी

0: आदत
1: नहीं
0: बढ़
1: पढ़
0: जाएगी
1: सकते, नहीं पढ़ सकते,
0: क्या, उससे बीमारियों का खतरा कम हो
1: बिल्कुल
0: जाएगा?
1: बढ़ जाएगा। देखो हमेशा
0: अच्छा
1: याद रखो, स्लीप जो है वो आपके शरीर में दिमाग को ही नहीं, शरीर के हर अंग को रेस्ट देता है। इसलिए कहा जाता है कि स्लीप के 4 साइकिल होते हैं। अगर आप 4 साइकिल प्रॉपर नहीं कवर कर सकते हैं तो आपकी स्लीप अच्छी नहीं है। स्लीप अच्छी नहीं है तो आप सुबह चिड़चिड़े बनेंगे, आपको थकान रहेगी, पैर में दर्द रहेगा। तो ये जरूर मानिए कि स्लीप अच्छी लेना बहुत जरूरी है। और आदत, अगर आप इररेगुलर स्लीप में हैं तो आपकी आदत नहीं बन जाएगी, आपका शरीर खराब होना शुरू हो जाएगा। दूसरा बात है, आजकल जो मल्टीनेशनल्स में युवा काम कर रहे हैं, जो रात में 2 बजे तक काम करते हैं, मैं हमेशा कहता हूं अगर आप 2 बजे तक काम कर रहे हैं तो 2 बजे के बाद 4 बजे तक पार्टियां मत करिए। 2 बजे काम बंद करके खाना खाइए, सो जाइए और सुबह उठिए 8 बजे 9 बजे। आप ये मत कीजिए कि 4-5 तक पार्टियां होती है, फिर शरीर आपका इतना थक चुका होता है कि आप 4 घंटे की स्लीप से शरीर के लैक्टिक एसिड जो मसल में जमा हो जाते हैं वो निकाल नहीं पाते, तो दिन भर थकान होती है। दूसरी बात, आप अपना अगर आपका बहुत हेक्टिक शेड्यूल है तो 2 चीज जरूर निकालिए, योगा जरूर करिए। योगा से क्या होता है, आप जो भी प्राणायाम की पद्धतियां करते हैं उससे आपका पैरासिम्पेथेटिक सिस्टम अप होता है, आपका लंग एक्सपेंड होता है, आपकी बॉडी स्ट्रेच होती है, तो वो कर लीजिए। जिम, अगर आप दिन भर इतना भाग रहे हैं और फिर जिम करने जा रहे हैं तो और थकान अपने को करा रहे हैं। तो अगर आपकी लाइफस्टाइल हेक्टिक है, और दूसरी बात है इंटरमिटेंट ब्रेक, वो बहुत जो, ऐसा मैं नहीं मान सकता कि आपकी मीटिंग दोपहर में 2 बजे शुरू हो और रात में 2 बजे तक चले, ऐसा नहीं होता है। हम क्या करते हैं, मीटिंग के बीच में अपने को रेस्ट देने के बजाय और टॉर्चर करते हैं। तो जब आपकी लाइफस्टाइल ऐसी हो तो जरूर बीच बीच में रेस्ट लें। जापान में लोग काम करते हैं, उनको हर 2 घंटे के बाद स्लीपिंग रेस्ट मिलती है, हम नहीं लेते। हमें 2 घंटे की छुट्टी मिली भी तो भी हम टहलने चले जाएंगे। आपकी उस लाइफस्टाइल को भी मॉडिफाई करके आप बिल्कुल स्वस्थ जीवन जी सकती हैं।
0: जी अच्छा, इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न है मेरा कि ऐसे आजकल बहुत एक्टर्स क्रिकेटर्स फॉलो कर रहे हैं, उन्हें देख रहे हैं कि वो सजेस्ट करते हैं कि मैं एक ही तरीके का खाना खाता हूँ 6 महीने, मेरी बॉडी उससे यूज्ड टू हो जाती है। बट क्या ये सही है, क्योंकि क्या आपको न्यूट्रिएंट्स अलग अलग मिल रहे हैं अगर आप सेम ही तरीके का खाना खा रहे हैं 6 महीने?
1: सेम तरीके का खाना क्या होता है, जैसे हमारे गाँव होते थे, हमारे बचपन में हमें क्या मिलता था, हमें सब्जी मिलती थी, दाल मिलती थी, पराठा मिलता था, चावल मिलता था, दही मिलता था, अचार मिलता था, कभी कभी राजमा छोला मिल जाता था। तो अगर आप इसको सेम माने तो ओके है, बट आप कहे मैं राजमा और चावल ही 6 महीने खाऊंगा, मैं उसके फेवर में बिल्कुल नहीं हूं। इसीलिए बैलेंस डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हर चीज में हर चीज होती है। मैं हमेशा कहता हूं जो हमारी ट्रेडिशनल इंडियन डाइट थी जिसमें 8 कटोरा होते थे थाली में, उसमें छोटी सब्जी जबली वो सब अलग अलग होती थी,
0: थाली सिस्टम होता
1: जिसमें सब चीज होता था, तो उसमें आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते थे। तो कभी भी एक पर्टिकुलर डाइट के फेवर में मत जाएं। आप नॉर्थ की रहने वाली हैं तो साउथ के डॉट के फेरे में मत जाएं। वो आपका जो जेनेटिक मेकअप है, आपके पिछले 1000 सालों से आपके एंसेस्टर यही खाते आए हैं, आपके पेट के में दाल चावल है, और सीधे जाके आप डोसा खाने रोज लगेंगे तो आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगी। ये मैं बहुत क्लियर बात करता हूँ, तो आपका जो ट्रेडिशनल डाइट है उसको खाती रहिए आप।
0: जी, तो डाइट पर मैं चाह रही थी बात करने की, और परिधि ने पूछ लिया और काफी विस्तार से आपने बताया कि डाइट कैसी होनी चाहिए। लाइफस्टाइल की भी बात हम कर रहे थे, तो जैसे आपने बताया कि खाकर सो जाएं, तो हम जनरली कहते हैं कि फौरन सोना नहीं चाहिए, तो ये कहीं विरोधाभास होता है, क्या किया जाए?
1: एक सिंपल सी बात याद रखिए, आप अच्छा खाइए, अच्छा सोइए, खाने के बाद इमीडिएट सोने जाएंगी, और आप दिक्कतें हचक के कभी मत खाइए। आपका पेट 1/3 खाली रहना चाहिए। खाने के तुरंत बाद पानी ना पिए। तो अगर आप हचक के खाएंगे तो जैसे लेटे ही आपके इसोफेगस में खाना आने लगेगा, तो थोड़ी से 10 मिनट 15 मिनट बैठिए तब सोइए। एक कंसेप्ट, हचक के खाने का बंद करें, जब पेट आधा खाली हो तो छोड़ दें, फिर 2 घंटे बाद खा लें। कम कम खाइए, बार बार खाइए, अच्छा खाइए, अच्छा फैट खाइए, अच्छा कार्ब्स लीजिए, और सब चीज खाइए।
0: जी,
1: ये है अच्छी डाइट का मतलब।
0: जी, और आप एक बात हर बार जब आते हैं तो बोलते हैं खुश रहिए।
1: हाँ,
0: ये बात आप हर बार बोलते हैं, तो मैं वही रिपीट करना चाहूंगी कि
1: बिल्कुल
0: खुश रहिए, आपने ये बात बोली, इससे इम्यूनिटी बढ़ती है।
1: आप खुश रहेंगी तो आप हर काम अच्छा करेंगी, आप दुखी रहेंगी तो हर काम दुखी करेंगी।
0: जी बिल्कुल, और जैसे लाइफस्टाइल की भी हमने बात की, खान पान की, कुछ तनाव या गुस्सा या नींद ठीक से ना हो किसी,
1: बहुत खराब चीज है।
0: जी,
1: तनाव, गुस्सा, नींद, आप गुस्सा करिए पर गुस्से से तनाव में मत आइए। मैं बहुत चिल्ला देता हूँ, वो गुस्सा इसलिए उसको सही करना है, बट गुस्से से आप अगर तनाव पे आ गई, तनाव से आपको नींद नहीं आई, तो आपकी पूरी लाइफस्टाइल खराब हो जाएगी।
0: तो वो भी इम्पैक्ट करता है।
1: आप खाना अच्छा नहीं खाएंगी, आप स्मोकिंग ज्यादा करेंगी, आप जंक फूड ज्यादा खाएंगी, आप चिड़चिड़ी होंगी, आपका काम नहीं होगा,

0: आपका काम पेंडिंग हो जाएगा, ये सारी चीजें जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आप खुशी खुशी जाएंगी, अरे यार काम कर लेंगे, वहां जाके दो से हंस के बात करेंगी, किसी ने काम नहीं किया चलो हो जाएगा, आप देखिएगा आपका वर्क एफिशिएंसी ज्यादा हो जाएगी।
1: तो माइंडसेट भी
0: बिल्कुल बहुत जरूरी है, और ये स्वस्थ शरीर के लिए सबसे अच्छी बात हम कहते हैं अच्छे वचन, अच्छे विचार और अच्छा खाना,
1: तीन चीजें,
0: तीन चीज अगर आप फॉलो करेंगी तो आप शरीर के हर अंग को स्वस्थ कर सकती हैं।
1: तो हमारे पास समय अब ज्यादा बचा नहीं है, लेकिन हमारे पास बहुत सारे मैसेज आए हुए हैं डॉक्टर साहब, जो धन्यवाद भी दे रहे हैं आपको, बहुत सारे उन्होंने प्रश्न ऐसे पूछे हैं जो बीमारियों का और दवाइयों का, पर क्योंकि हम आज खासतौर पर प्रिवेंशन पर बात कर रहे हैं तो मैं ले भी नहीं पाऊंगी, लेकिन एक तो ऐसे आपके बारे में कुछ मैसेजेस हैं तो मैं देना चाहूंगी। डॉक्टर राकेश यादव का जवाब देने का स्टाइल बहुत ही लाजवाब है, थैंक्स डॉक्टर साहब। प्रकाश जी लिखेंगे रोहिणी दिल्ली से, और साथ ही साथ एक प्रश्न थोड़ा अलग हटके नरदेव सिंह चौहान जी ने कोटद्वार उत्तराखंड से लिखा है कि आजकल डॉक्टर यादव का बहुत अच्छा लगता है हमें प्रोग्राम, बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आज दिल की बात हो रही है तो क्या कारण है लोगों को दूसरों के प्रति दिल में जगह कम हो रही है, क्या यह भी दिल की बीमारी मानी जाए क्या?
0: बिल्कुल है, आप अपने दिल के दुख अगर दूसरों के दिल में नहीं डाल पा रहे हैं तो आप ही दुखी रहेंगे। आप अपने दुख दिल के प्यार को दूसरों के दिल में नहीं डाल पा रहे हैं तो प्यार फूलता फूलता फट जाएगा, ये बिल्कुल सच है।
1: ये सच है
0: कि दिल खुश तब रहेगा जब वो बांटा जाए किसी के साथ।
1: जी बिल्कुल, बहुत सारी और बातें हैं डॉक्टर साहब, आपको पुनः आना होगा, आपको आमंत्रित करेंगे क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हमारे श्रोताओं के छूट गए। तो मैं धन्यवाद दूंगी डॉक्टर राकेश यादव का, जो प्रोफेसर है कार्डियोलॉजी में, हेड है डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन एम्स न्यू दिल्ली में, कि आप समय निकालकर यहां आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, और धन्यवाद देंगे परिधि मित्तल को कि आपने समय निकाला है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न जो युवाओं के मन में चलते हैं जो शायद हमें ध्यान न रहते, आपने वो डॉक्टर साहब से पूछे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इस कार्यक्रम को समाप्त करने की हमें आज्ञा दीजिए। आप अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो healthairdelhi@gmail.com पर हमें लिख सकते हैं। स्वीकार करिए अपने दोस्त शालिनी मित्तल का नमस्कार।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल।
3: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
2: फिर भी आप उठा लेते हैं।

0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, एसएमएस, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

आकाशवाणी रेनबो पर अब सुनिए इस घंटे के मुख्य समाचार। भारत ने 22 भारतीय नागरिकों को ले जा रहे दो वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मामला सोमालिया के अधिकारियों के सामने उठाया है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज सिलीगुड़ी में पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों से जुड़े सभी पक्षों के साथ बैठक की। बैठक में पहाड़ी क्षेत्रों की समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी पंकज सिंह की अध्यक्षता में एक मध्यस्थ समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों ने पर्यटन, एआई और सुविधाजनक यात्रा पर केंद्रित जयपुर घोषणा पत्र को स्वीकृति दी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने आज ब्रिक्स देशों के मंत्रियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम के निकट ऐतिहासिक थोटलकोंडा बौद्ध विरासत स्थल का दौरा किया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने प्रतिष्ठानों से आग्रह किया है कि वे ईपीएफ के दायरे से बाहर कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारी नामांकन अभियान 2026 का लाभ उठाएं। सरकार ने 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरेफेनिरामाइन मैलेट और फिनाइल एफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की सशक्त समिति ने आज नई दिल्ली में दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के गैर कृषि आजीविका घटक के अंतर्गत प्रस्तावों की समीक्षा की। दिल्ली में पर्यावरण मानकों के उल्लंघन के मामले में 106 इकाइयां चिन्हित की हैं, 78 इकाइयां वैध मजदूरी के बिना संचालित पाई गईं। सूचना और प्रसारण मंत्री डॉ एल मुरुगन ने आगामी 57वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव इफ्फी की तैयारियों के लिए गठित संचालन समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता की। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मतदाताओं के लिए अनिवार्य फोटो पहचान पत्र और नागरिकता प्रमाण पत्र की मांग दोहराई। बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज महिला डबल्स के सेमीफाइनल में भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला चीन की लियू शेंग शू और टेन निंग से होगा। पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज शाम भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। ये थे अब तक के एफएम रेनबो मुख्य समाचार।

Hi dear friends, welcome to Lamhe program with me, your RJ Chetan. सजीवों, मनुष्य समेत सभी जीव जंतु के शरीर में जैविक क्रियाओं यानी बायोलॉजिकल फंक्शन के संचालन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। सजीवों द्वारा भोजन पोषक पदार्थ का अंतर्ग्रहण भोजन को शरीर में पहुंचाने की क्रिया पाचन अवशोषण और स्वागीकरण करने एवं अपच पदार्थ का परित्याग करने की संपूर्ण प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। ऊर्जा उत्पादन शारीरिक वृद्धि और टूट फूट की मरम्मत के लिए आवश्यक पदार्थों को पोषक पदार्थ कहते हैं। हमारे आहार में ऐसे फूड शामिल होने चाहिए जो सही मात्रा में पोषक तत्वों की आपूर्ति कर सके। इस तरह के आहार को संतुलित आहार कहा जाता है। ऊर्जा उत्कों के रखरखाव और शारीरिक क्रियाओं के लिए हर व्यक्ति को 6 पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जिसमें प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, पानी और खनिज शामिल है। आइए विस्तार से इनके बारे में जानते हैं आज के लम्हे प्रोग्राम में आपके आरजे चेतन से। दोस्तों, आपके सुझाव सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। I repeat, feedbackamc1@gmail.com। प्रोटीन, शरीर के पोषण के लिए प्रोटीन एक बहुत जरूरी न्यूट्रिएंट्स है, जिसका सेवन हर किसी को करना चाहिए। हमारे शरीर को अच्छे तरह से काम करने के लिए मांसपेशियों के निर्माण तथा हमारे शरीर की कोशिकाओं को बनाने और सुधारने के लिए प्रोटीन अत्यंत जरूरी है। साथ में प्रोटीन हमारे शरीर की ऊर्जा का स्रोत भी है। प्रोटीन के समृद्ध स्रोत में अंडा, मछली, मीट और बीन्स शामिल है। प्रोटीन शरीर को अमीनो एसिड्स प्रदान करता है। विटामिन, हमारे शरीर को विटामिन की बहुत ही जरूरत है। यदि किसी भी कारण कोई विटामिन हमारे शरीर को न मिल पाए तो हमारे शरीर विटामिन जनित रोगों से ग्रस्त हो सकता है। विटामिन वह पदार्थ है जो आपके शरीर को ग्रो करने में मदद करते हैं। यह आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं तथा कोई बीमारी न आए। ज्यादातर विटामिन हमें फल और सब्जी से प्राप्त होते हैं। मिनरल्स एक अच्छे न्यूट्रिशन है। कुछ महत्वपूर्ण मिनरल या खनिज हमारे शरीर के ठीक ढंग से काम करने के लिए जरूरी होते हैं। ये न केवल शरीर के मेटाबॉलिज्म को सही करते हैं बल्कि आपके स्वास्थ्य को भी अच्छा रखते हैं। इसके स्रोत में फल, सब्जी, डेयरी उत्पाद, मांस और मछली शामिल है। कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्टार्च या मंड प्रमुख भोजन पदार्थ है, जो कई तरह के खाद्य पदार्थ में पाया जाता है। आलू, साबुदाना, चावल, साबुत अनाज, पास्ता, रोटी, मक्का आदि में पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसे खाने से शरीर को ऊर्जा मिलती है तथा यह पाचन में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। वसा या फैट हमारे आहार का मुख्य घटक है और शरीर में कई काम करता है। इसके आवश्यक स्रोत में डेयरी प्रोडक्ट, मांस, बीन्स और नट तथा वनस्पति तेल जैसे खाद्य पदार्थ शामिल है। फैट फैटी एसिड्स में पच जाता है, जिसका उपयोग ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जाता है। पानी को भी हम न्यूट्रिशन में शामिल करते हैं। शरीर का लगभग 70% हिस्सा पानी से बना है। यह पर्याप्त पानी पीने से शरीर में तरल संतुलन को बनाए रखने में सहायता मिलती है, जो शरीर में पोषक तत्वों को परिवहन में मदद करते हैं। शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है और भोजन को पचाने में सहायता करती है। इसीलिए कभी अपने शरीर में पानी की कमी न आने दे। किसी भी सजीव के लिए पोषण जरूरी है। इसके लिए शरीर क्रियाएं संभव नहीं है। जिस प्रकार से किसी वाहन के लिए फ्यूल की जरूरत पड़ती है, इसी प्रकार हमारे शरीर को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। दोस्तों, आपके सुझाव सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedback

0: feedback@amc1@gmail.com. I repeat, feedback@amc1@gmail.com.
1: आवश्यक ऊर्जा के विभिन्न अवयवों मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट एवं वसा के ऑक्सीकरण से प्राप्त होते हैं। भोजन शरीर की वृद्धि एवं क्षतिग्रस्त अंगों एवं ऊतकों की मरम्मत में योगदान करता है। इस कार्य को प्रोटीन, खनिज, लवण, विटामिन आदि सम्मान करने में योगदान करना है। भोजन शरीर के विभिन्न अंगों एवं जंतुओं को उचित दशा में बनाए रखता है और उनका उचित संचालन कर उपापचय क्रियाओं पर नियंत्रण रखने में योगदान करता है। संतुलन भोजन शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है। आमतौर एक ह्यूमन बॉडी को उसकी उम्र और जैविक क्रियाओं के अनुसार पोषक तत्वों की जरूरत होती है। बच्चों, गर्भवती महिलाओं और वर्कर्स के लिए अलग अलग मानक तय किए गए हैं और इन्हीं मानक के अनुसार व्यक्ति को अपने भोजन में पोषक तत्वों को सम्मिलित करना है। स्वस्थ भोजन करने से सिर्फ आपका शरीर स्वस्थ रहता है बल्कि आपका दिमाग भी तेज होता है। स्वास्थ्य के लिए अच्छा खाना खाने से शरीर मजबूत होता है। स्वस्थ आहार हड्डियों को मजबूत रखता है। पौष्टिक भोजन गर्भावस्था के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। हरी सब्जियों और फल मोटापा, कैंसर, डायबिटीज, हृदय रोग जैसी गंभीर शारीरिक समस्याओं से बचाव करते हैं, खासकर वो खाद्य पदार्थ जिसमें फाइबर की अधिक मात्रा होती है। जितना हो सके तेल मसाले वाले खाद्य पदार्थ के सेवन से बचें। इनको लगातार सेवन करने से तरह तरह के बीमारियां आ सकती है। पानी खूब पिए, शरीर में पानी की कमी निर्जलीकरण का कारण बनती है, दैट इज डिहाइड्रेशन, जिससे किडनी की समस्या, त्वचा संबंधी समस्या, उल्टी, बुखार और कई अन्य परेशानियां हो सकती है। शुगर शरीर के लिए जरूरी है, लेकिन ज्यादा शुगर युक्त खाद्य पदार्थ का सेवन शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। इससे दांत खराब हो सकते हैं, मोटापा, डायबिटीज जैसी समस्याएं खड़ी हो सकती है। उपवास करना शरीर के लिए भी फायदेमंद हो सकता है, साथ साथ शरीर की कई अन्य समस्याओं को दूर करने में मदद कर सकता है। हालांकि उपवास के दौरान आप नियमित रूप से पानी पीते रहे, फल, ड्राई फ्रूट का सेवन कर सकते हैं, आपके शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। तो दोस्तों, with this we come to the end of this beautiful program which was very informative. I'll get back to you in our next segment. Till then, have a great time. Bye.
0: Dosto, aapke sujhav, salah aur feedback ke liye aap hame call ya message kar sakte hain. Hamara number hai 09515227039. I repeat 09515227039. Hamara email ID hai feedback@amc1@gmail.com. I repeat, feedback@amc1@gmail.com. This program is produced and sponsored by Adventist Media Center.

0: आकाशवाणी।
1: जी हाँ, आपकी वाणी आकाशवाणी और आकाशवाणी एफएम रेनबो पर इस वक्त आपके साथ जुड़ चुकी हूँ मैं दीपिका, लेकर हाजिर हूँ मैं प्रोग्राम अल्फा जैन, जहाँ आज यानी सैटरडे को हम कहते हैं लेट्स डिटॉक्स। क्या कुछ खास आज के प्रोग्राम में होगा कि इस बारे में बातें करूंगी सब बताऊंगी। फिलहाल इस खूबसूरत से गाने के साथ करते हैं आज के इस शो की शुरुआत।

दोस्तों, हमारे इंटरनेट ब्राउजर में कैसे हिस्ट्री डिलीट करने का ऑप्शन होता है ना, और कई बार जब ब्राउजर हैंग करता है या फिर कोई दिक्कत होती है तो अक्सर कहा जाता है कि हिस्ट्री डिलीट कर दो या फिर क्लियर कर दो एकदम। अब हम कर देते हैं ऐसा, लेकिन हमारे दिमाग में तो ऐसा कोई बटन होता नहीं है। पर अगर होता तो कितना अच्छा होता ना। सोचिए, पिछले हफ्ते की टेंशन डिलीट, किसी की कही हुई बुरी बात डिलीट, कोई रिग्रेट्स जो परेशान कर रहे हैं डिलीट, उस वक्त मैंने ऐसा क्यों बोल दिया था या मैं ऐसा क्यों नहीं बोल पाई थी, ये वाली बात भी डिलीट, और वो 2 साल पुरानी एक नाराजगी जो अचानक रात को आकर याद हमें नींद उड़ा देती है, भाई उसको भी पूरी तरीके से क्लियर करो। अब ऐसा होता तो नहीं है, क्योंकि देखिए असल जिंदगी में दिमाग की हिस्ट्री एक क्लिक में डिलीट नहीं होती। अगर ऐसा हो ही जाए तो फिर क्या ही बात है। पर हाँ, हम वीकेंड पर थोड़ा सा मेंटल रीसेट तो कर ही सकते हैं, ताकि अगले हफ्ते के लिए हम खुद को एक बार फिर से तैयार कर पाए और ये सोच पाए कि क्या कुछ है जिसे हमें साथ लेकर अगले हफ्ते में आगे जाना है, और कौन सी है वो बातें जो हमें यहीं पे छोड़ देनी है, ताकि अगले हफ्ते हम एक फ्रेश स्टार्ट कर सके। तो आकाशवाणी एफएम रेनबो प्रोग्राम अल्फा जैन, जहां हम कह रहे हैं लेट्स डिटॉक्स, वहां आज इसी बारे में बात करते हैं। आपके साथ मैं हूं दीपिका, और बस इस खूबसूरत गाने के उस पार दोबारा जुड़ेंगे हम।

वेल, जब हम दिमाग की हिस्ट्री क्लियर करने की बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि यहाँ पर क्लियर करने का मतलब ये नहीं है कि आप एक क्लिक से सब कुछ डिलीट कर सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं जो हम याद रखना चाहते हैं, जो हमें याद रखनी चाहिए, लेकिन बहुत सारी पुरानी बातों को भूलना जरूरी होता है, और उसके साथ साथ भूलने के अलावा कुछ बातों को देखने का नजरिया बदलना जरूरी होता है। जरूरी नहीं आप हर पुरानी बात को भूल ही जाएं, क्योंकि कुछ यादें हमें परेशान करने के लिए नहीं बल्कि हमें कुछ सिखाने के लिए होती हैं। ऐसे में बार बार पास्ट को कुरेद कर अगर मैं ज्यादा पीछे नहीं भी जाऊं, चलिए एक हफ्ते की बात करते हैं, तो एक हफ्ते में अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ जो आपको अच्छा नहीं लगा, कुछ कहना था जो कह नहीं पाए, किसी ने कुछ कहा जिसका जवाब देना चाहते थे नहीं दे पाए, या फिर किसी ने कुछ कहा जो दिल में चुभ गया, तो इन सारी चीजों को कहीं ना कहीं साइड करना बहुत जरूरी है, वो भी तब जब वो आपकी मेंटल पीस पर असर डालने लगे। और अगर अतीत की बात की जाए तो हर बार अतीत को डिलीट करना नहीं बल्कि कई बार उसे एक्सेप्ट करना जरूरी होता है, क्योंकि जब हमारा दिमाग ओवरलोड होता है ना, और अगर हम उसे रीसेट नहीं कर पाते, हम उसे आराम नहीं दे पाते हैं, तो फिर बहुत दिक्कत होती है, और उस दिक्कत का असर हमारे

हम पर, हमारी हेल्थ पर, सब पर साफ नजर आता है। तो बस वीकेंड पर हम ये कर सकते हैं कि जरा स्लो हो सकते हैं, इन सारी चीजों को साइड कर सकते हैं और सोमवार को ऐसे शुरुआत कर सकते हैं जैसे ब्राउजर में एक नई टैब खुली हो, बिल्कुल नई, बिल्कुल ताजा, और नई चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए, नई चैलेंजेस से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार। पर हाँ, साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि अगर कोई बात आपको बार बार परेशान कर रही है, आप उसे नहीं भूल पा रहे हैं, तो किसी के साथ बैठिए, अपने दिल को जरा सा खोलिए। और बहुत जरूरी है कि आप अपने दिल और दिमाग को वो पीस, वो सुकून दें, जिससे आप आगे वाले हफ्ते में, आने वाले महीने में, आने वाली जिंदगी में खुशी से आगे बढ़ सके। यकीन मानिए, अपने दिमाग का ख्याल रखना, अपने दिल का ख्याल रखना, अपने मन का ख्याल रखना, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना और ओवरऑल अपनी जिंदगी की कमांड संभालना, अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ना बहुत जरूरी है।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: न तेज बारिश से दिक्कत, न ट्रैफिक का झंझट, नमो भारत ट्रेन से आरामदायक और तेज यात्रा की पक्की गारंटी।
2: दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच लाखों यात्री उठा रहे हैं सुगम यात्रा का आनंद। सराय काली खां से गाजियाबाद सिर्फ 20 मिनट में,
1: आनंद विहार से मोदी नगर सिर्फ 25 मिनट में, आनंद विहार से बेगमपुर मेरठ सिर्फ 40 मिनट में,
2: हर 10 मिनट में ट्रेन उपलब्ध।
1: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत, घंटों का सफर मिनटों में।
3: हिमालय की गोद से लेकर
4: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
3: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
4: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
3: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
4: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
3: तो सुनना ना भूलें
4: रेनबो डेस्टिनेशंस
3: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
5: तो पार्टी शुरू हुई है।
4: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
6: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
4: म्यूजिक मस्ती।
7: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
3: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
4: म्यूजिक मस्ती।
8: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप।

0: now and watch for free.
1: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण।

0: तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: मम्मी बस अभी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन अभी आई है।
2: बेटा कुछ खा लो, मेरठ आते आते शाम हो जाएगी।
1: अरे मम्मी एक घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, आप बस खाना तैयार रखिए।
2: हैं इतनी जल्दी?
1: देश बदल रहा है मम्मी, अभी एयरपोर्ट जैसे ट्रेवलेटर पर चलकर साथ के नमो भारत सराय कालेखा स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ से ट्रेन पकड़ कर बस मिनटों में मेरठ।
3: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय कालेखा से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
4: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
6: आकाशवाणी FM रेनबो पर आप हैं दीपिका के साथ, प्रोग्राम सुन रहे हैं आप अल्फा जैन।

आकाशवाणी एफएम रेनबो पर आप हैं दीपिका के साथ। प्रोग्राम है अल्फा जैन, जहां सैटरडे को हम कहते हैं लेट्स डिटॉक्स। और बात मैंने छेड़ी कि हम इंटरनेट ब्राउजर की हिस्ट्री तो क्लियर कर सकते हैं, लेकिन दिमाग में जो चीजें, जो फाइल्स स्टोर हो जाती हैं, कई बार वो बिल्कुल बेकार की होती है, हमें परेशान कर रही होती है, लेकिन फिर भी उन्हें क्लियर करना बड़ा मुश्किल होता है। अब यहां एक चीज समझना बहुत जरूरी है कि जो बात हमारे हाथ में नहीं है, उससे अगर हम अपने दिल दिमाग में रखेंगे तो उससे दिमाग की और हमारी जो बैटरी है ना, वो बहुत जल्दी ड्रेन होती है। जी हाँ, ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन इसे समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हम बहुत सारी ऐसी बातों को लेकर परेशान हो रहे होते हैं जो असल में हमारे हाथ में नहीं होती है। क्योंकि अगर एग्जाम्पल के तौर पर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके हाथ में प्रिपरेशन करना है। अब आप उसमें सक्सेस होंगे या नहीं होंगे, ये आपके हाथ में नहीं है। हाँ, प्रिपरेशन करना, अपने एफर्ट्स पर भरोसा रखना, अपना 100% देना आपके हाथ में बिल्कुल है। तो आपको इस पर फोकस करना चाहिए।

लेकिन हम इस टेंशन में प्रिपरेशन करने वाला जो हमारा ब्रेन है उसको भी एग्जॉस्ट कर लेते हैं कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कितनी परसेंटेज आएगी, अगर उसकी मुझसे ज्यादा परसेंटेज आ गई तो, या ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। पर ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि जो अननेसेसरी चीजें हैं या जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं है, उन्हें हमें कहीं ना कहीं दिमाग से थोड़ा सा साइड करना ही पड़ेगा, ताकि हम अपनी बैटरी उन चीजों के लिए सेव कर पाएं जो एक्चुअली जरूरी है और जिन पर हम एक्चुअली मेहनत कर सकते हैं।

आकाशवाणी एफएम रेनबो, आप हैं दीपिका के साथ। प्रोग्राम आप यहाँ पर सुन रहे हैं अल्फा जैन, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि क्यों जरूरत है कभी कभी दिमाग में भी एक ऐसे बटन की जहाँ पर हम वो हिस्ट्री डिलीट कर सकें जो एक्चुअल में हमें बस परेशान कर रही है। अब वीकेंड पर आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप खुद से ये पूछ सकते हैं

कि पिछले हफ्ते की कौन सी ऐसी बातें हैं जिन्हें मैं बार बार सोच रही हूं। क्या मैं उन बातों को बदल सकती हूँ? अगर जवाब नहीं है तो शायद उस बात को सोचने की जरूरत भी नहीं है, और अगर जवाब हाँ है तो फिर आपको ये सोचना है कि आप क्या कर सकती हैं उन बातों को बदलने के लिए। अगर आपसे कोई गलती हुई है तो उसे कैसे सुधार सकती हैं, या फिर कुछ भी ऐसा जिसे आप बदल सकती हैं। और तीसरा सवाल, अगले हफ्ते को बेहतर बनाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? तो बस ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखिए, क्योंकि जरूरी नहीं होता है कि हर प्रॉब्लम का सलूशन आपको आज ही मिले, हर सवाल का जवाब आज ही मिले, पर हाँ, हर पुरानी बात का बोझ कल तक ले जाना भी जरूरी नहीं है। इसीलिए इस वीकेंड थोड़ा कम सोचिए, थोड़ा ज्यादा मुस्कुराइए, फोन से कुछ दूरी बनाइए, अपने लोगों के साथ वक्त बिताइए, और अपने दिमाग से भी कहिए, भाई पिछले हफ्ते का काम हो गया, अब थोड़ा सा रेस्ट कर ले।

शायद सोचा भी ना हो। और जाते जाते एक बार फिर यही कहूंगी कि हर उस बात के लिए दिमाग को परेशान मत कीजिए जिन्हें बदलने के लिए आप कुछ खास नहीं कर सकते, और दिमाग को आराम दीजिए, वो चीजें कीजिए जिनसे आपका माइंड, आपका मन जो है उसे पीस मिले, और आप उसके बाद देखिएगा चीजें आप कितनी बेहतर ढंग से कर पाएंगे। फिलहाल के लिए यहां आपको इस प्रोग्राम में देनी होगी दीपिका को इजाजत। 5 बजे से आपके साथ जुड़ेंगी दीपांशी, लेकर आएंगी प्रोग्राम सिटी लाइट्स, शहर की हलचल से करवाएंगी आपको रूबरू। तो अभी के लिए दीपिका को इजाजत दीजिए। जाते जाते वही कहूंगी जो हर बार कहती हूँ, हम सभी यूं ही हंसते हंसाते गाते गुनगुनाते जिंदगी के हर एहसास को गले लगाते, आने वाली खुशियों को सजाते और उम्मीदों से हाथ मिलाते रहेंगे, और दोबारा कभी सिर्फ यही मिलेंगे क्योंकि यही अपना ठिकाना है, हमें और कहाँ जाना है। आप सुनते रहिए आकाशवाणी FM रेनबो 102.6।

नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। आकाशवाणी एफएम रेनबो पर यह समय है इस घंटे के मुख्य समाचारों का। सरकार ने 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरफेनरमाइन मैलेट और फिनाइल एफरिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज सिलीगुड़ी के सुकना में वरिष्ठ गोरखा नेताओं के साथ बैठक की। दार्जिलिंग के लोकसभा सांसद राजू बिस्ता ने कहा है कि बैठक बेहद सफल रही और सभी गोरखा नेताओं ने रचनात्मक ढंग से अपने मुद्दे रखे। ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों ने पर्यटन, एआई और सुविधाजनक यात्रा पर केंद्रित जयपुर घोषणा पत्र को स्वीकृति दी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने आज ब्रिक्स देशों के मंत्रियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के निकट ऐतिहासिक थोटलकोंडा बौद्ध विरासत स्थल का दौरा किया। भारत ने 22 भारतीय नागरिकों को ले जा रहे 2 वाणिज्यिक जहाजों के अपहरण का मामला सोमालिया के अधिकारियों के सामने उठाया है। भारतीय जनता पार्टी वंदे मातरम के प्रति जागरूकता फैलाने और इसके गायन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। भारतीय सेना ने हवाई निगरानी, त्वरित प्रतिक्रिया और युद्ध क्षेत्र तक पहुंच बढ़ाने के लिए सीमावर्ती राज्य पंजाब में अत्याधुनिक ड्रोन से लैस पहली बाज बटालियन का गठन किया। दिल्ली में पर्यावरण मानकों के उल्लंघन के मामले में 106 इकाइयां चिन्हित की हैं, 78 इकाइयां वैध मंजूरी के बिना संचालित पाई गईं। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुर्गन ने आगामी 97वें अंतर्राष्ट्रीय भारत फिल्म महोत्सव इक्वी की तैयारियों के लिए गठित संचालन समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता की। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। और अंत में अम्स्टल फैन में पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज शाम भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। ये थे आकाशवाणी एफएम रेनबो पर इस घंटे के मुख्य समाचार।

गुड इवनिंग जी. जी हाँ, बेसब्री से कर रही थी इंतजार आप सभी से मिलने का. लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सिटी लाइट, जिसमें हम देखेंगे भाई आज क्या कुछ नया चल रहा है हमारे शहर में. ऐसा तो नहीं कि आपने कुछ मिस कर दिया है. नहीं जी, बिल्कुल मिस नहीं किया होगा, क्योंकि अगर मिस हो भी गया है ना, तो हम आ गए हैं वो सभी जानकारियां आपके लिए लेकर. बात करेंगे बहुत सारी बातों के बारे में. जी हाँ, सिटी लाइट्स में आप जुड़े हैं मेरे यानी दीपांशी के साथ, और प्रोग्राम सिटी लाइट्स में करती हूँ आपका स्वागत आकाशवाणी FM रेनबो पर. गुड इवनिंग दिल्ली.

मस्त मस्त गानों के साथ भाई मौसम भी मस्त है। हम सिटी लाइट्स में प्रोग्राम में सबसे पहले इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं वेदर अपडेट के साथ। तो जल्दी से जान लेते हैं कि मौसम का मिजाज कैसा है। वेल, मौसम के मिजाज की अगर बात करें और वहां तापमान की बात की जाए तो 33 डिग्री सेल्सियस का तापमान है और बहुत ज्यादा गर्मी नहीं है, लेकिन बारिश हो रही है कि नहीं? वेल, अगर आईएमडी की माना जाए, इंडिया मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की मानी जाए, तो दिल्ली में केवल अभी येलो अलर्ट जारी किया गया है कि कहीं कहीं कुछ जगहों पर लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकती है, कहीं पर छमाछम बारिश हो और आप उन बूंदों में भीग जाएं तो हमें बताना ना भूलिएगा। आज टेम्परेचर इसी रेंज में रहने की संभावना है, तो बहुत गर्मी भी नहीं है और मौसम अभी जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा और अब जब शाम अपनी अंगड़ाइयां लेना शुरू कर चुकी है तो मौसम का हाल भी थोड़ा सा और बेहतर हो जाएगा। तो कहीं घूमने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो जल्दी से रेडी हो जाइए आकाशवाणी एफएम रेनबो सुनते सुनते और बस घूमने निकल जाइए, क्योंकि भाई आज शनिवार है और शनिवार का दिन या वीकेंड का दिन जो होता है ना, वो घर पर बैठने के लिए नहीं होता, घूमने के लिए, मस्त रहने के लिए, इंजॉय करने के लिए होता है। क्योंकि ये जो पूरा वीक है ना, ये तो निकलता है जद्दोजहद में, काम कर रहे हैं और अपनी जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, तो थोड़े से सुकून के पल जी लीजिए और हम आप

को सुकून कैसे पहुंचा सकते हैं अपने बेहतरीन गानों के जरिए। तो एक बहुत ही प्यारा सा गाना कमिंग योर वे, आपसे भी जुड़े हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो के साथ प्रोग्राम सिटी लाइट्स पे, मैं हूं आपके साथ दीपांशी। I just simply love this track, बहुत ही प्यारा सा गाना है। I

आप सभी जुड़े हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो के साथ, प्रोग्राम चल रहा है सिटी लाइट्स। मैं हूं आपके साथ दीपांशी। भाई, हमने कहा आपको कि आज मौसम बहुत अच्छा है और वीकेंड भी है, तो जाइए बाहर का प्लान बनाइए और कहाँ जाना है ये भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये बता दें कि कहाँ कहाँ पर ट्रैफिक एडवाइजरी है जो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखकर चलनी पड़ेगी, तो वो आपको बताए देते हैं। आज 22nd ऑफ ऑगस्ट, थोड़ी सी ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो आपको मिल सकती हैं कैरीवेज और सर्विस रोड, जो कि क्लोज रहेंगी नियर डब्ल्यू पॉइंट, ITU चौक, BSZ मार्ग, DDU मार्ग और महाराज रंजीत सिंह मार्ग, जहांगीर मार्ग, प्रेस रोड और उसके एडजॉइनिंग एरियाज में, क्योंकि यहां पर कुछ ऑफिशियल एक्सीजेंसीज चल रही हैं जिसकी वजह से ये ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शंस और डाइवर्जन रहेंगी यहां पर। तो अगर आप इन रोड्स को यूज करने वाले हैं, यहां से जाने का प्लान कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने प्लान को चेंज कीजिए और

इन रूट्स को अवॉइड कीजिए, स्पेसिफिकली शाम को 4 बजे से 12 बजे तक। तो जो भी अल्टरनेटिव रूट्स हैं उनको आपको लेना पड़ेगा ताकि आपकी जो जर्नी है वो हैसल फ्री रहे और आपको जहाँ भी जाने का प्लान है, जहाँ भी घूमने का प्लान बना रहे हैं ना, वहाँ पर आपको किसी तरह की परेशानी ना हो। और कोई भी व्हीकल्स अलाउ नहीं किए जाएंगे पार्किंग के लिए। बहादुर शाह जफर मार्ग, आईपी मार्ग, रिड्यू मार्ग, टिगोर रोड, विष्णु दिगंबर मार्ग, रंजीत सिंह मार्ग, रंजीत सिंह फ्लाईओवर, जहांगीर रोड और प्रेस रोड के आसपास दोनों तरफ के कैरिएज वेज पर, तो वहां पर कोई भी पार्किंग भी अलाउड नहीं है, व्हीकल्स भी अलाउड नहीं है। तो अल्टरनेटिव मार्ग को देखिए और अपनी जो जर्नी है उसको प्लान कीजिए। और उसके साथ साथ कल के लिए दिल्ली जल बोर्ड की कुछ एक्टिविटीज़ के चलते जो सर्विस रोड है ऑन फायर स्टेशन रोड टूवर्ड्स डीसीपी ऑफिस जनकपुरी दिल्ली, उसे 15 दिन के लिए क्लोज किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली जल बोर्ड का कुछ वर्क किया जाना है, काम किया जाना है। तो कम्यूटर्स को एडवाइस किया गया है कि इस पर्टिकुलर स्ट्रेच को, ये जो रोड है, ये सर्विस रोड है ऑन दी फायर स्टेशन रोड जो कि जा रही है डीसीपी ऑफिस वेस्ट डिस्ट्रिक्ट जनकपुरी की तरफ, उसे अवॉइड करिए उस स्ट्रेच को और कोई अल्टरनेटिव रूट लेकर आगे जाइए। तो यहाँ भी इन डायरेक्शंस को, वहाँ पे अगर कोई भी डाइवर्शन के डायरेक्शंस दिए हुए हैं तो प्लीज़ उन्हें भी फॉलो करिए। तो ये थी आज की ट्रैफिक अपडेट। ध्यान रखिएगा, प्लान करके चलिए, मैप्स का यूज़ कीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि कहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, सो दैट हमारी जो जर्नी है ना, या हमारा जो ये जो समय है ना, ये ट्रैफिक में कहीं फंस कर ख़राब नहीं होना चाहिए और हैसल फ्री रहना चाहिए, ताकि जब शाम को घर पहुंचे तो हम ये कह सके द डे वेल स्पेंड, और हम जो भी प्रोग्राम बना कर गए थे उस प्रोग्राम को हमने अच्छे से इंजॉय किया।

0: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
1: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
2: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए। मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं, नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन

आकाशवाणी एफएम रेनबो पर प्रोग्राम सिटी लाइट्स में मेरे साथ जुड़े हैं आप, मैं हूं दीपांशी। अब जब आपको ये बता दिया कि भाई मौसम भी सुहाना है, आप बिल्कुल बाहर घूमने के लिए जा सकते हैं और उसके साथ साथ ट्रैफिक अपडेट्स भी आपको मिल गए हैं, तो व्हाट आर यू आर वेटिंग फॉर, तो जल्दी से ये भी बता दें कि कहाँ जा सकते हैं। वेल, आज का खैर टाइम निकल गया है, लेकिन आप अपना कल यू कैन प्लान वेल इन एडवांस। तो बता देते हैं कि अमृत उद्यान जो है वो आप सभी के लिए बिल्कुल खुल चुका है, समर एनुअल्स एट राष्ट्रपति भवन। जी हाँ, अमृत उद्यान में जहाँ आप खूबसूरत फूलों के साथ साथ प्रकृति का बेहद खूबसूरत नज़ारा देखते हैं और उसका आनंद उठाते हैं। वेल, अगर बचपन में जाया जाए ना, तो हमारे बचपन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता था, एक अभिन्न अंग होता था हमारी पिकनिक्स। तब पिकनिक्स इंजॉय की जाती थी पूरी फैमिली के साथ, वेल एक्सटेंडेड फैमिली के साथ भी, और सारे कजन्स मिलके, सारे फ्रेंड्स मिलके पिकनिक के लिए जाते थे, घर का खाना बना के लेकर जाते थे और वहाँ जाकर उसे इंजॉय करते थे। जो आज मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम पीछे छोड़ आए हैं, तो थोड़ा सा मॉल्स और बाकी सभी जगह का जो रुख आप करते हैं ना, थोड़ा सा वहां से डाइवर्जन लीजिए और जाइए अमृत उद्यान की तरफ। तो जल्दी से आपको बता देते हैं कि अमृत उद्यान आपके लिए 16 अगस्त से 15 ऑफ सितंबर तक ओपन किया गया है। जी हाँ, 16 अगस्त को इसे खोल दिया गया है और 15 सितंबर तक आप यहां जा पाएंगे। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि जाने से पहले आपको मैंडेटरी ऑनलाइन बुकिंग करनी है टिकट्स के लिए। टिकट्स वहां पर जाके नहीं लेनी है, जाने से पहले मैंडेटरी ऑनलाइन बुकिंग ऑफ टिकट्स कीजिए। इसीलिए आपको आज मैं बता रही हूँ ताकि आप कल जाने के लिए प्लान कर सकें और एक दिन पहले आपको टिकट बुक करनी है। वेल, अगर समय की बात की जाए तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक अमृत उद्यान आपके लिए खुला रहेगा। लास्ट जो एंट्री होगी वो 5 बजे तक होगी, उसके बाद एंट्री अलाउ नहीं की जाएगी। और हाँ, मंडे को, जी हाँ, यानी सोमवार को अमृत उद्यान बंद रहेगा। अगर आपको जाना है अमृत उद्यान घूमने के लिए तो गेट नंबर 35, यूज गेट नंबर 35 फॉर एंट्री। जाने के लिए आप गेट नंबर 35 का प्रयोग करें और साथ ही अपनी कोई एक फोटो आईडी ज़रूर लेकर जाएं। आपकी चेकिंग के लिए उसकी ज़रूरत, इसकी ज़रूरत जो है आपको रहेगी, तो फोटो आईडी ले जाना ना भूलें। और अगर आप मेट्रो से जाना चाह रहे हैं तो बहुत ही बेहतरीन कनेक्टिविटी है। नियरेस्ट स्टेशन जो रहेगा वो रहेगा सेंट्रल सेक्रेटरिएट, केंद्रीय सचिवालय, और वहाँ से आप फ्री शटल सर्विसेज का भी उपयोग कर सकते हैं जो हर 30 मिनट के गैप पर वहाँ से चलती हैं टूवर्ड्स अमृत उद्यान। तो अमृत उद्यान जो है गेट नंबर 35, राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ एवेन्यू रोड की तरफ, सेंट्रल सेक्रेटरिएट सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है। फ्री शटल सर्विसेज उपलब्ध की कराई गई हैं, हर 30 मिनट पर आपको एक शटल मिल जाएगी जिसकी शुरुआत सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक रहेगी। आपको पानी की सुविधा, ड्रिंकिंग वाटर जो है उसकी सुविधा, फर्स्ट एड, रेन शेल्टर्स और रेस्ट रूम्स, ये सभी अवेलेबल कराए गए हैं, पूरी की पूरी फैसिलिटीज़ जो हैं, ताकि आप इसका आनंद अच्छे से ले सके। किसी तरह की कोई भी दिक्कत वहाँ पर आए हुए जो विजिटर्स हैं उनको ना हो, इसका पूरा जो है इसे इंश्योर किया गया है वहाँ पर। और वहाँ पर आप जाकर सेंट्रल लॉन, लॉन्ग गार्डन, सर्कुलर गार्डन, बोनसाई गार्डन, बाल वाटिका जो हमारे छोटे छोटे बच्चों के लिए बनाई गई है, इसका आनंद ले सकते हैं, इसे घूम सकते हैं। और इसके साथ ही ज़रूरी बात यह है कि अगर आप अपनी एडवांस ऑनलाइन बुकिंग करना चाहते हैं तो राष्ट्रपति भवन विजिटर पोर्टल पर जाइए और अपनी बुक जो है, टिकट जो है उसे बुक कर लीजिए। एंट्री बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, निशुल्क है, कोई भी शुल्क आपको टिकट के लिए नहीं देना होगा। हाँ।

0: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है, जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

आकाशवाणी एफएम रेनबो पर प्रोग्राम सिटी लाइट्स में मैं हूं आपके साथ दीपांशी। अब एक थोड़ी सी जरूरी बात, वो ये है कि दिल्ली में जो स्वाइन फ्लू है इसका जो केसेस है वो बढ़ते जा रहे हैं, इसका जो प्रकोप है वो बढ़ता जा रहा है। अगर आज की बात करें तो दिल्ली में करीब 1770 से ज़्यादा जो मामले हैं वो सामने आए हैं स्वाइन फ्लू के। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसके सिम्टम्स को, इसके लक्षणों को पहचानें और उसके साथ साथ थोड़ा सा प्रिकॉशंस बरतनी बहुत ज़रूरी है। एक ही दिन में लगभग 114 नए मरीज सामने आए हैं H1N1 के केसेस के, और इसमें बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी जो है उसे देखा गया है। मॉनसून के दौरान जो मौसमी इन्फ्लुएंजा है उसके जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और इस स्थिति पर नज़र रखते हुए सरकार ने भी सभी सरकारी अस्पतालों को इलाज की पर्याप्त व्यवस्था रखने के निर्देश भी दिए हैं, और उसके जो जितने भी संभावित हॉटस्पॉट हैं उन पर निगरानी भी बढ़ाई गई है। जैसे कि जो संक्रमण के पैटर्न हैं उसे देखा जाएगा, प्रभावित इलाके जो हैं उन पर थोड़ी सी कड़ी निगरानी रखी जाएगी, और स्वाइन फ्लू के मरीजों के लिए अस्पतालों में भी अलग वार्ड तैयार किए गए हैं। लेकिन हमारे लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम थोड़े से अपने लेवल पे अगर प्रिकॉशंस रखेंगे तो हम इसके खतरों से बच सकते हैं, और जो बुज़ुर्ग हैं या जो छोटे बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएँ हैं और पहले ही किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, जिनकी जो क्षमता है, इम्यूनिटी है, वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी नहीं है, उन लोगों को ये जो फ्लू है इसके होने के जो चांसेस हैं वो भी बढ़ जाते हैं, और कभी कभी ये थोड़ा सा गंभीर रूप भी ले लेता है। तो ये हिदायत दी गई है सभी लोगों को कि लंबे समय तक रहने वाली अगर आपको खांसी है, तेज़ बुखार है, इस तरह के आपको जो सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं तो इसे नज़रअंदाज नहीं करना है, तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना है, क्योंकि वायु प्रदूषण के कारण भी जो हमारे लंग्स हैं उसमें सूजन भी कई मरीजों में देखी गई है, और सांस से जुड़ी परेशानियाँ भी जो हैं वो बढ़ रही हैं इस तरह के H1N1 के संक्रमण। तो यदि किसी भी तरह का बुखार, खांसी, गले में खराश, सरदर्द है, आपको थोड़ा सा बदन दर्द दिख रहा है या थकान है, इस तरह के जो लक्षण या सिम्टम्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं उन्हें बिल्कुल भी आपको नजरअंदाज नहीं करना है। और हाँ, कहां पे आपको बचने के लिए क्या कर सकते हैं, क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, हाथों की नियमित सफाई रखें, बीमारी के दौरान घर पर आराम करें ताकि दूसरे लोगों को इस तरह का संक्रमण ना हो, दूसरों के बेहद करीब जाने से आपको बचना है, इस तरह की सलाह दी जा रही है। और हाँ, ज़रूरत के अनुसार आपको फ्लू का जो टीकाकरण है वो भी कराया जा सकता है। तो बस थोड़ा सा ध्यान दें अपने ऊपर भी, और अपने जो हमारे अपने हैं, हमारे जो नियर एंड डियर वंस हैं, उनका भी ध्यान हमें रखना है। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, तो थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, घबराने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सावधान रहिए।

हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए भी एक थोड़ी सी महत्वपूर्ण खबर है कि अब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने करीब 11 कॉलेजेस को पैरेलल एडमिशन्स के लिए अलाउ कर दिया है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, इन्होंने 11 कॉलेजेस को उन स्टूडेंट्स को एडमिशन देने के लिए कहा है जहां पर अभी भी जो सीट्स हैं वो पूरी भरी नहीं है, और इन स्टूडेंट्स को अब एडमिशन मिल सकता है उनके क्लास 12th के मार्क्स के बेसिस पर। जी हाँ, ये जो पैरेलल रूट है ये बेसिकली उन बच्चों के लिए स्टार्ट किया गया है जिन्होंने या तो वो CUET के लिए अपियर नहीं कर पाए, या अगर अपियर करने के बावजूद वो किसी भी कॉलेज में सीट उन्हें अलॉट नहीं हुई है, तो उनके लिए एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि क्लास 12th के मार्क्स के बेसिस पर कुछ कॉलेजेस पर्टिकुलर कोर्सेज में जहां पर अभी भी सीट्स वेकेंट हैं, जहां पे अभी सीट्स फुल नहीं हुई हैं, वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। और अब इनका क्राइटेरिया बहुत सिंपल रहेगा, CUET के मार्क्स नहीं बल्कि क्लास 12th में आपके जितने भी मार्क्स आए हैं उसके बेसिस पर आप यहां पर एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। ये मूव इसलिए लाई गई है क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस ने ये रिपोर्ट किया कि अभी भी कुछ पर्टिकुलर कोर्सेज में वैकेंसी जो है वो 50% से ज्यादा है, जबकि वहां पर मल्टीपल राउंड्स ऑफ एडमिशन हो चुके हैं CUET के अंतर्गत। इस पैरेलल सिस्टम को चलाया जाएगा ताकि जो हमारे पास सीट्स अवेलेबल हैं कॉलेजेस में उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, फुल ऑप्टिमाइजेशन ऑफ दीज कैन बी डन। तो अगर आपको इन कोर्सेज में रुचि है, ये 11 कॉलेजेस कौन से हैं इसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च कीजिए, पढ़िए, और ये जो एक नई अपॉर्चुनिटी सामने आई है इसका आप लाभ उठा सकते हैं। अगर अभी तक आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपके कॉलेज और आपके पर्टिकुलर कोर्सेज में एडमिशन नहीं मिला है तो

अभी से खूबसूरत से गाने के साथ मुझे दीजिए इजाजत, जाना इसलिए क्योंकि एक बार फिर से आपसे मिलने के लिए आना है। मैं आपको मिलूंगी यही गुनगुनाते हुए आकाशवाणी एफएम रेनबो पर, लेकिन अब जाना होगा। जाने से पहले आपको बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट रखी, अपना और अपने अपनों का बहुत सारा ध्यान। हाँ, इंजॉय कीजिए अपना वीकेंड, एंड वीकेंड के बाद हैव अ ग्रेट ग्रेट ग्रेट वीक अहेड। और मेरे जाने के बाद प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स में आपके मसालेदार मैसेजेस लेकर आपके साथ रहेंगे ताहिर। तो इंजॉय कीजिए अपना अगला कार्यक्रम। मैं तो जा रही हूँ, लेकिन हाँ, आपको इजाजत नहीं है आकाशवाणी एफ एम रेनबो से कहीं जाने की। सुनते रहिए आकाशवाणी एफ एम रेनबो, करते रहिए अपने कार्यक्रम को एंजॉय। टेक केयर, बाय बाय।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

लीजिए पेश हैं एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। सरकार ने 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरफेनरामिन मेलेट और फिनाइल एफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स डोज कॉम्बिनेशन के निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज सिलीगुड़ी में सुकना में वरिष्ठ गोरखा नेताओं के साथ बैठक की। दार्जिलिंग में लोकसभा सांसद राजू बिस्ता ने कहा कि बैठक बेहद सफल रही और सभी गोरखा नेताओं ने रचनात्मक ढंग से अपने मुद्दे रखे। ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों ने पर्यटन, एआई और सुविधाजनक यात्रा पर केंद्रित जयपुर घोषणा पत्र की स्वीकृति दी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज ब्रिक्स देशों के मंत्रियों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के निकट ऐतिहासिक थोटल कोंडा बौद्ध विरासत स्थल का दौरा किया। भारत ने 22 भारतीय नागरिक को ले जा रहे 2 वाणिज्य जहाजों के अपहरण मामला सोमालिया के अधिकारियों के सामने उठाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने समाधान समारोह पहल के अंतर्गत आयोजित 3 दिवसीय विशेष लोक अदालत के पहले दिन 400 से अधिक लंबित मामलों को का निपटारा किया। भारतीय जनता पार्टी वंदे मातरम के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए, इसके गायन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाएगी। भारतीय सेना ने हवाई निगरानी, त्वरित प्रतिक्रिया और युद्ध क्षेत्र तक पहुंच बढ़ाने के लिए सीमावर्ती राज्य पंजाब के अत्याधुनिक ड्रोन से लैस पहली बाज बटालियन का गठन किया। दिल्ली में पर्यावरण मानकों के उल्लंघन के मामले में 106 इकाइयों चिन्हित की हैं। 78 इकाइयां वैध मंजूरी के बिना संचालित पाई गईं। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है और अम्स्टल फैन में पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज शाम भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। ये थे एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, आकाशवाणी एफएम रेनबो, दिल से दिल तक मैं हूँ आपके साथ। ताहिर प्रोग्राम वही है, मैसेज मसाला मिक्स, और अब से एक घंटे में आपके साथ रहूंगा और उसमें आपको कुछ करने के लिए कहूंगा, यानी कि आपका फोन आपके हाथ में होना चाहिए और आप कुछ मैसेज करेंगे मुझे, यानी कि ताहिर को, और प्रोग्राम ऐसे ही चलता रहेगा एक घंटे। मज़ा आने वाला है, बहुत ज़्यादा उम्मीद है ना आपको कि मज़ा आएगा नहीं आएगा। हाँ, बस एक छोटी सी बात यह है, ऐसा होता है कि जैसे कि हम लोग खांसी लेते हैं यानी कि खंगारते हैं, उसका मतलब यही होता है कि हाँ ये मौसम चेंज हो रहा है। हाँ, गर्मी में पसीना आता है, सर्दी में रज़ाई और बरसात में और कीचड़, है ना। बताइए आपका पर्सनल विलन कौन सा है, यानी कि कुछ ऐसा तो होगा, ज़रूर होगा कि हाँ भाई ये मेरे को मौसम अच्छा लगता है, ये मेरे को अच्छा नहीं लगता। कई लोग ऐसे होते हैं कि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं कि उनको सर्दी बहुत पसंद आती है, कई लोग बरसात बहुत पसंद आती है। लेकिन हाँ, मेरा सवाल यही है कि आप लोगों को क्या अच्छा नहीं लगता, बताइए ना, जल्दी जल्दी बताइए, मज़ा आएगा।

आकाशवाणी एफएम रेनबो दिल से दिल तक, मैं हूं आपके साथ ताहिर। प्रोग्राम आपका पसंदीदा चल रहा है जिसे हम कहते हैं मैसेज मसाला मिक्स, और मेरे पास मैसेज आने का सिलसिला तो शुरू हो गया काफी देर से। जोया है मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से, और ये कहती हैं कि अपना ही उन्होंने मैसेज दे, यानी कि अपना एक सवाल ही बना दिया। लेकिन हाँ ये है कि आपका सवाल तो अभी नहीं ले पाएंगे, हाँ लेकिन ये है कि आप कुछ लिख के भेजिए कि इस क्या, जैसे कि मेरा सवाल था कि उसमें क्या लगता है आपको। नरेंद्र सोनी देवीगढ़ पटियाला से ही कहते हैं गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग जी, शुभ संध्या जी ताहिर। और ये कहते हैं कि कुदरत के सभी मौसम हमें बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन हाँ इसमें आपको ऐसी बात नहीं बताई जिस जो आपको विलन लगता है, यानी कि आपको ऐसा लगता है, मेरा सवाल यही है कि आपको ऐसा लगना चाहिए वाकई मज़ा इसे नहीं आया, बहुत ही बुरा लगता है, या नहीं वाकई बहुत अच्छा लगता है, कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ह्यूमिडिटी वाली गर्मी आई डोंट लाइक, स्वेटिंग होती है बहुत ज़्यादा, शैलजा है, यह है नीमराना से। हाँ ये बात तो है कि वाकई हर किसी, मतलब मेरे कहने का मतलब यही है कि ज़्यादातर लोगों को यही होता है कि नहीं हमें गर्मी पसंद नहीं है, कई लोगों को मैंने यही देखा हुआ कहते हुए। मैसेज मसाला मिक्स कार्यक्रम में मुझे गर्मी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बारिश सर्दी मौसम अच्छा लगता है। ये हैं जी पंकज अमरावती से। जी पंकज भाई ठीक कह रहे हैं आप, ऐसा होता है अक्सर, ऐसे ही होता है कि लोगों को ये चीज़ें पसंद नहीं आती। अच्छा और ये मेरे पास है, इन्होंने जवाब नहीं दिया है, ये उखला संगम विहार दिल्ली से, ये हैं रणधीर गुप्ता बबीता सत्यम, आप जवाब भी तो दीजिए भाई। और ये कहते हैं जी मुझे सभी मौसम बहुत पसंद है, बस वो मौसम परिवर्तन से अचानक बीमार पड़ जाते हैं तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। प्रवीण चौहान खरगोन मध्य प्रदेश से, बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप लोग कुछ इतना ये तो बताइए कि आप लोगों को कौन सा ऐसा मौसम लगता है कि जिसमें मज़ा ही नहीं आता, बिल्कुल विलन लगता है ज़िंदगी में। हकीकत बात यही है, आप मेरा सवाल तरीके से सुनिए, मैं यही कह रहा हूँ जैसे कि गर्मी बरसात और सर्दियाँ आती हैं, बहुत से लोगों को सर्दियों बिल्कुल मज़ा नहीं आता, रज़ाई छोड़ ही नहीं सकते, काम ही नहीं करते, बहुत बुरा हाल हो जाता है उनका क्योंकि उनको बहुत सर्दी लगती है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि नया गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, बाहर ही नहीं निकल सकते तो क्या काम करें, बरसात बिल्कुल कीचड़ कीचड़ कीचड़ बहुत बुरा लगता है, बाहर ही नहीं निकलते, काम छोड़ देते सारे। ये मेरे कहने मतलब है, थोड़ा सा मस्ती तो कीजिए। और ये कहते हैं अस्सलाम वालेकुम ताहिर जी। हाँ जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल एकदम ठीक हैं। और ये इस टॉपिक पे यही कहना चाहेंगे कि गर्मी का मौसम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ये बात है, इनको बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। बरसात में बारिश तो बहुत पसंद आती है लेकिन कीचड़ बहुत हो जाती है, बुरा लगता है, इसी की वजह से बहुत बुरा लगता है सारी चीज़ें। सर्दी का मौसम ऑलवेज फेवरेट है मेरा। आई एम अंशी हैं शर्मा, ये अंशी शर्मा हैं हसनापुर मेरठ से, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर्दियाँ ज़्यादातर लोगों को, मुझे यही देखने के लिए मैंने ये टॉपिक रखा आज का कि आप लोगों को ज़्यादातर सर्दियाँ ही पसंद होंगी डेफिनेटली। अगर

मैं अपनी बात करूं तो मुझे पसंद है गर्मियों का मौसम, क्योंकि सिंगल कपड़े में बंदा कहीं भी जा सकता है, और सर्दियों में तो 4-5 कपड़े पहनो, ज्यादा सर्दी हो जाए तो कहीं पर भी जाना कैंसिल हो जाता है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हर किसी का अपना ही सोचना होता है जनाब। और ये कहते हैं जी आपको मेरा प्यार भरा सलाम, आखिर का प्यार भरा आदाब जी। और ये कहते हैं जी मौसम मुझे बरसात का, वो भी सावन का महीना बहुत ही अच्छा लगता है, रिमझिम बारिश और आसमान में बादल, चारों तरफ हरियाली मुझे पसंद है। सर्दी और गर्मी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। चलिए ठीक है जी, यानी कि आप ये चाहते हैं कि मुस्तकिल सर्दी ख़त्म हो जाए, गर्मी भी ख़त्म हो जाए, मुस्तकिल बारिश होती रहे। मोहल्ला हलवा हलवाइन शेरकोट ज़िला भिजना, और से मोहम्मद वक़ार फरीदी साहब हैं ये। और मेरे पास एक मैसेज और आ गया है, ये है ये कहते हैं टॉपिक दिलचस्प है। हाँ ठीक है, हमें तो सर्दी बहुत अच्छी लगती है, सर्दी में जो मर्जी खाओ नींद भी भरपूर आती है। देहरादून से आलोक पवार, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा कहा आपने, सही कहा। ये है सत्यजीत सरकार वेस्ट बंगाल से, ये कहते हैं गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग जी। मेरा सबसे ज्यादा ना पसंद है ना जाड़ा गर्मी ना जाड़ा ठंडी, यानी ज्यादा सॉरी जाड़ा नहीं आपने कहा ज्यादा सॉरी, और ना तो ज्यादा ठंडी लगती है। इन्होंने बहुत अच्छी बात आपने कही कि वाकई हर चीज का एक्सेस वो थोड़ा सा बुरा लगता है कि हाँ भाई कोई चीज ज्यादा हो जाए तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। दुआ यही करेंगे वजह से ना सर्दियां ज्यादा हों ना गर्मियां ज्यादा हों, बारिश का मौसम बहुत अच्छा लगता है। ये हैं जी, इन्होंने नाम अपना नहीं लिखा है, विजेंद्र साहब। चलिए जी बहुत अच्छा है, आज का मेरा टॉपिक समझ में आ गया ना आपको जो मैंने कहा है। मैंने ये कहा है गर्मी सर्दी और बरसात में कौन सी चीज़ ऐसी जो आपको विरन लगती है कि आपको कभी भी मज़ा नहीं आता, बताइए जल्दी से।

0: अब होगा शिक्षा मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
1: NCERTEPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
2: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
3: पता का चाय, गजब का स्वाद।

जी हाँ, आकाशवाणी रेनबो, मैं हूँ आपके साथ। ताहिर प्रोग्राम चल रहा है मैसेज मसाला मिक्स। अभी तक ये मैसेज देखकर तो यही लग रहा है कि हर किसी का अपना फेवरेट मौसम है और हर मौसम की अपनी एक प्रॉब्लम भी है। गर्मी वाले पसीने से परेशान होते हैं, सर्दी वाले रजाई से बाहर नहीं आते और बरसात वालों का तो कीचड़ से बुरा हाल होता है। एक बात समझ आ रही है बिल्कुल कि हम इंसान भी कमाल के हैं। गर्मी आए तो कहते हैं कि सर्दी कब आएगी, सर्दी आए तो गर्मी से बहुत याद आती है और बरसात तो बस यही दुआ करते हैं कि घर पहुंचते वक्त, जब हम घर पहुंचे तो बारिश ना आए किसी हाल भी, और घर में बैठे बैठे सोचते रहते हैं बारिश आ जाए। मेरे पास मैसेज आया हुआ सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से। ये कहते हैं जी, हमें सर्दी का मौसम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, हमें बरसात ऋतु का मौसम बहुत अच्छा लगता है। और आपकी संध्या और जीवन शुभ सुखद। थैंक यू जी, बहुत अच्छी बात है, आपने जो बात कही बहुत अच्छी बात कही, आपका सोच बहुत अच्छा लगा। और मेरे पास मैसेज है, मुझे गर्मी का मौसम बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मेरा फेवरेट मौसम सर्दी का है। बस ये नहीं बता रहा है आपके आपको क्यों बुरा लगता है, क्या वजह लगती है बताइएगा। जोया मेलबर्न से, हाँ इन्होंने कहा कि मैं कोई भी मौसम, उनको कोई सही बुरा नहीं लगता। वेरी गुड जी, जोया है मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से। और ये है जी, मैं दिल्ली बुराली से, मेरा नाम संजीव है, मुझे बारिश अच्छी नहीं लगती, आजकल तो हर जगह पानी पानी या कीचड़। माई फैमिली मेम्बर्स जीविका, मुस्कान, सपना और आरती। और ये कह रहा है ताहिर, अपने आपने बताया तो मुझे स्पेशल गर्मी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि सारा दिन मेहनत करने से बड़े परेशान, बहुत पसीना, बहुत दुखी हो जाते हैं, तो लगता है कि कुदरत ने यहीं पे जन्नत में भेज दिया है। क्या बात है, मतलब गर्मी पसंद आने वालों को यहाँ स्वर्ग लगता है, तो बहुत अच्छी बात है, आपका सच में बहुत अच्छी बात है। ह्यूमिडिटी वाली गर्मी आई डोंट लाइक, स्वेट होती है, तो आपने दोबारा मैसेज भेज दिया मुझे। और मेरे पास एक मैसेज आया हुआ है, कोशिश करता हूँ कि जल्दी आ जाए मेरे सामने। इन्होंने नहीं लिखा, बहुत कुछ नहीं लिखा है, समझ में नहीं आ रहा, माफ़ी चाहूँगा। और मेरे पास एक मैसेज है, ये है जी, नमस्कार जी, बहुत नमस्कार। ये कहते हैं मुझे सातों मौसम अच्छे लगते हैं। सातों कौन से होते हैं, मैं गिनना शुरू करता हूँ तो मुझे समझ में नहीं आएगा।

अच्छे लगते हैं, और बरसात तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, कभी गर्मी कभी बरसात, बढ़िया कहो। बरसात में पकौड़े चाय, क्या याद दिला दिया आपने, पकौड़े चाय बहुत अच्छे लगते हैं। मेरठ वीरबख्शी साहब हैं, चलिए जी बहुत अच्छी बात है। और जी एक है मेरे पास, मौसम के बारे में बात कर रहे हैं, ये कहते हैं जी, यह है कानामाली उम्मेदाबाद जिला जलौर से, राजस्थान से, किसी का नाम गलत पढ़ूं तो उसके लिए माफ़ी दे दे भाई, माफ़ी दे दीजिएगा प्लीज़। और इनका कहना है, मेरे को वो मौसम पसंद नहीं है, बारिश के मौसम में बारिश नहीं हो क्योंकि तो किसान हमारे यहाँ बारिश नहीं है। ऊपर वाले से दुआ कीजिएगा बारिश ज़रूर हो। और ये साहब कहते हैं कि मौसम बहुत अच्छे हैं, सुबह बारिश हुई तो और मौसम सुहाना है, बदल आपका लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा साफ लिखिए समझ में आ जाएगा। ये गुड्डू साहब हैं, ज़िला बेड़गांव। मुझे गर्मी मौसम बिल्कुल पसंद नहीं, गर्मियों में उमस बेचैनी सबसे अच्छा मौसम लगता है, बारिश का, कहीं भी धूल नहीं उड़ती, चारों तरफ हरियाली, वेरी गुड जी। लेकिन आपको सर्दियाँ अच्छी लगती है ना। और ये साहब ये कहते हैं जी, सर हमें तो चारों मौसम अच्छे लगते हैं, आपने सात कहा था आप चार आ गए, चलो खैर अच्छी बात है, मैं गिनना शुरू कर दूंगा। चारों मौसम बहुत अच्छे लगते हैं, मैं सर्दी हो या गर्मी हो या वर्षा हो या पतझड़ हो, अच्छा वेरी गुड पतझड़ हो। और ये कहते हैं, अगर बरसात ना हो तो पानी कहाँ चलाएंगे, अगर सर्दी ना हो तो मूँगफली कहाँ से। ये बात आपने बहुत सी गई, क्या होता है हर मौसम का एक डिश होती है कि इस मौसम में ये खाना चाहिए, इस मौसम में ये खाना चाहिए, इस मौसम में ये खाएंगे, उसी में मज़ा आता है। ये है रेशम कुमारी, ज़िला छपरा बिहार से, ये कहती हैं सर्दियां बहुत पसंद हैं, सर्दियों में हमारे यहाँ पूरा गांव हरे भरे, उसे समय सरसों का फूल बहुत ही प्यारा लगता है, क्या बात है। और मेरे पास एक और मैसेज है विजेंद्र घटौल का, अकोला महाराष्ट्र से, ये कहते हैं जी, क्योंकि हमारे इधर धूप का तापमान जो रहता रह जाता है वो 45 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो अकोला महाराष्ट्र में तो वाकई गर्मियां तो आपको बहुत ज़्यादा बुरी लगती होंगी। राजकुमार संतानी अकोला महाराष्ट्र से जी लिखते हैं जी, बारिश का बचपन, क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, टेरेस पर बारिश में भीगना बहुत एंजॉय करते थे, आज भी बारिश को में भीगना इनको अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात है। चलिए एक गीत आपकी नज़र आता है, उसके बाद लौटकर वापस आते हैं, लिखिए ना कुछ और लिखते रहिए।

आकाशवाणी एफएम रेनबो दिल से दिल तक, मैं हूं आपके साथ ताहिर और प्रोग्राम चल रहा है मैसेज मसाला मिक्स। और मेरे पास मैसेजेस भी आ रहे हैं। एक साहब का मैसेज है, मुझे गर्मियों का मौसम बहुत अच्छा लगता है, खास तौर पर खास कर गर्मियों का की शाम, डूबता सूरज, पेड़ों के लंबे लंबे साए, फिर चाहे जुल्फों के हो या पेड़ों के। क्या बात है, आप तो शायर बन गए जनाब। ये हैं गंज ढिंडवाड़ा शमसुल कमर राही। और उसके बाद मेरे पास मैसेज आया है, वैसे एक बार बताऊं, मैसेज तो मैं पढ़ ही रहूँगा। गर्मी की अपनी परेशानी है, सर्दियों की अपनी कहानी है, और बरसात तो बिना इनविटेशन के घर के बाहर पानी लेकर खड़ी हो जाती है। अब बात बताइए, इन तीनों

0: में सबसे ज्यादा नखरे कौन करता है? थोड़ा सा टाइम कम है, लिख दीजिए जितना लिख सकते हैं आप। और जनाब ये मेरे पास मैसेज आया हुआ है, ये है हमें सभी मौसम का अपना अपना एक अलग मजा है। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन बारिश में एक अनोखा ही आनंद मिलता है। ठंडी हवा, ठंडी ठंडी हवाएं, हवाओं के साथ घर के आंगन में कुर्सी टेबल लगाकर बैठने का जो, और चाय पीने का जो, चाय चुस्कियों के साथ बारिश के मौसम में जब पकौड़े खाने का, क्या बात है। पकौड़े की बात मत करो, पकौड़े जाके बाहर खाने पड़ेंगे मुझे अभी तो, अलग ही आनंद आता है। ये है किशन वंजनी नीलम सौती, और ये हैं रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से। और उसके अलावा है नमस्कार मीरापुर गांव भूमा से आर्यन मंजीत, लेकिन उन्होंने कोई मैसेज नहीं लिखा हुआ है, तो मैसेज तो लिख दीजिए। और ये हैं जी हरप्रीत सिंह मंडेर पंजाब से, ये कहते हैं सारे मौसम ना होते तो भिन्न भिन्न प्रकार के खेतों में उपज पैदा नहीं होती और देशों पर निर्भर रहना पड़ता है, इसलिए मुझे सारे मौसम अच्छे हैं, अच्छे लगते हैं। वेरी गुड जी, बहुत अच्छी बात कही। मनीष इदरीस बिलासपुर रामपुर से कहते हैं मुझको बारिश और सर्दी सही लगती है, बारिश और सही लगती है, यानी कि गर्मी आपको बुरी नहीं लगती है, ये कहने का मकसद है आपका। बहुत अच्छी बात है, यही होता है। आई एम नॉट श्योर इफ इट इज़ कॉमन नंबर फॉर रेनबो, अभी आप मौसम की बात कर रहे हैं, हम तो मौसम की बात कर रहे हैं फिलहाल। हेलो जी, विंटर जर्मनी का और गर्मी भारत की, दोनों नहीं पसंद है। सनी कपूर है जर्मनी से, बहुत दूर दूर से लोग हमारे को सुन रहे हैं, बहुत मजा आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गर्मी में लगातार पसीना आना, उमस बढ़ना, तेज धूप की वजह से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, इससे सुस्ती और चिड़चिड़ापन भी महसूस होता है, जो किसी को भी अच्छा नहीं लगता। ललित राणा डेरा बसी और ये पंजाब से हैं, क्या बात कही आपने, बहुत ही खूबसूरत बात कही, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि एक तो बात यह है कि बाहर निकलना है, काम भी करना है, लेकिन हाँ एक मजबूरी है तो कुछ ना कुछ करना ही। कांट से मोहम्मद फुरकान साहब ये हैं, और ये कह रहे हैं कि इनको पूरे साल बरसात बरसात बरसात कर सकता हूँ, लेकिन सर्दियाँ एक महीने की भी बर्दाश्त नहीं होती इनको, सर्दियाँ मुझे दुश्मन से भी ज़्यादा बुरी लगती हैं। नहीं ऐसा मत कहो, आप दुश्मन बना दिया आपने सर्दियों को। और ये साहब हैं जी, सर एक बारिश का गाना भी होना चाहिए। हाँ ये बात है, बिल्कुल सही बात है। प्रमोद चिंकोर हैं अकोला महाराष्ट्र से, बहुत अच्छा लग रहा है ताहिर भाई, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सर। हर मौसम अच्छा होता है, बस किसी भी मौसम की अति ना हो। रवि जोशी मेरठ से, वाकई अति ना हो किसी भी मौसम की, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये है जी भुवनेश अशोक विहार दिल्ली से, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया जी। ये कहते हैं कि इस टॉपिक पर मैं ही कहना चाहूँगा कि विंटर सीजन मेरा फेवरेट सीजन है, बट समर सीजन आई डू नॉट लाइक। ये बात हकीकत है, देखिए ज़्यादा लोगों का यही मैंने देखा, मिले जुले मेरे पास चीज़ें आ रही हैं, मैसेज आ रहे हैं मिले जुले, लेकिन ज़्यादातर जैसे किसी से बात होती है तो ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं कि नहीं हमें सर्दियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। जहाँ गर्मियाँ पड़ती हैं तो वहाँ लोगों को सर्दियाँ अच्छी लगती हैं, जहाँ सर्दियाँ होती हैं ऑलरेडी तो वहाँ के लोगों को गर्मियाँ लगती हैं। ये बात हकीकत है, इंसान किसी हाल में भी खुश नहीं, ये बात तो है, मानते हैं इन बात को नहीं, लेकिन आप लोग सब अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। रिंकू हैं कुमार, ये रिंकू कुमार हैं बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से, ये कहते हैं जी मेरा नाम रिंकू है जी, हाँ जी बोल दिया आपका नाम, और ये ज़िला बुलंदशहर से हैं ये भी बोल दिया, मुझे ठंड बहुत अच्छी पसंद है, बहुत गर्मी जो है ना वो अच्छी नहीं लगती इनको। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आप लोग हमारे मैसेज सुन रहे हैं। खैर एक बात सुनिए, हम आपके मैसेज पढ़ रहे हैं और एक छोटा सा ब्रेक है, उसके बाद लौट कर बहुत जल्दी वापस आता हूँ।
1: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
2: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे

0: बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
4: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

हाँ, आकाशवाणी रेनबो, मैं हूं आपके साथ। ताहिर प्रोग्राम चल रहा है आपका पसंदीदा मैसेज मसाला मिक्स। देखिए मैसेजेस तो मेरे पास आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मौसम नहीं, मौसम की कंडीशन पसंद करते हैं लोग। गर्मी को लेकिन पसीना ना आए पसंद करते हैं बहुत, सर्दी को भी पसंद करते हैं लेकिन ठंड ना लगे, और बरसात हो लेकिन कपड़े ना भीगे। ऐसा मौसम मिले तो मुझे ही बताना। सच कहूं तो हर मौसम में एक चीज होती है, और एक चीज जो होती है, मान लीजिए गर्मी में तो आम मिलते हैं लेकिन पसीने भी साथ में आते हैं, सर्दी में रजाई मिलती है लेकिन सुबह का उठना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और बरसात में मौसम रोमांटिक हो जाता है, सड़क स्विमिंग पूल बन जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं है, हकीकत बात यही है। एक दो मैसेज आए हुए मेरे पास, मैं कोशिश करता हूँ पढ़ दूँ। ये एक बार मैसेज है मेरे पास, नमस्कार जी, नमस्कार। और ये कहते हैं मुझे गर्मी पसंद है, पसंद नहीं है लेकिन हर मौसम में एडजस्ट करना सीख लिया जाए, हर मौसम अच्छा लगने लगता है। डॉली हैं ये। और एक मेरे पास मैसेज आया है, मुझे रेनी सीजन पसंद नहीं है बिकॉज काम

0: ये है कि डिस्टर्ब करता है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्रॉप्स, आई लाइक समर सीजन. बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी इस बात की, बहुत कम उम्मीद थी कि लोगों को समर भी किसी को पसंद आएगी. बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है. चलिए एक नवा यानी गीत है आपके पास, उसके बाद थोड़ा सा टाइम बचा है, मैसेज कर सकते हैं, करिए ना.
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन. कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल. जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल.
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री.
3: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही. रेनबो पर रात 9 बजे.
4: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़. सेल सिक्योर TMT बार
5: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है. सेल

सर्दी हो, गर्मी हो या वर्षा, बहरहाल ये ऐसे ही सबों का सोचना है। बहुत अच्छे मैसेजेस आए हैं आज के। मैसेज ने तो मौसम की पूरी कुंडली ही निकाल के दे दी। किसी को गर्मी है अच्छी लगती है, किसी को शिकायत है, किसी को सर्दी और किसी को बरसात, लेकिन परफेक्ट मौसम शायद सिर्फ वेदर फोरकास्ट वालों के पास होता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इतने मज़ेदार मैसेज के लिए। अब थोड़ी देर के का ब्रेक, यानी कि FM रेनबो पे तो आप सुनते रहेंगे बहुत कुछ, लेकिन हाँ आप थोड़ा सा ब्रेक है और रात को 8 बजे फिर दोबारा मिलूंगा म्यूजिक मस्ती में, जहाँ मौसम की टेंशन नहीं होगी, सिर्फ मौसम म्यूजिक होगा, मस्ती होगी, धमाकेदार डांस हिट। मैं हूँ आपके साथ ताहिर और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 MHz पर।

0: There we go. That was Eric Common with his smash hit over here. And the track was called Hungry Eyes. And it was from the movie Dirty Dancing. A huge, huge, huge hit when this movie had come out and when this song had come out over here. Alrighty, we're going to take a quick break over here. Don't go anywhere. We'll be right back after these messages. There we go.
1: अरे अंजलि, अब क्या तुम मेरठ से नहीं आ रही रोज? तेरे चेहरे पर कोई थकान परेशानी नहीं दिखती?
2: प्रिया, ये सब नमो भारत ट्रेन का कमाल है। 40 मिनट में बेगमपुल से सीधा आनंद विहार, वहाँ से कनेक्टेड मेट्रो लेकर सीधा ऑफिस, समय ही नहीं लगता।
1: वाह, नमो भारत ने तेरी लाइफ कितनी आसान बना दी।
3: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत के सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार और गाजियाबाद स्टेशन मेट्रो के साथ सुगमता से कनेक्टेड है।
4: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
5: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
6: जो स्टील देश के रेलवेज, ब्रिजेस और डिफेंस को सशक्त बनाता है, अब वही भरोसा आपके घर के लिए भी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का सेल SEQR यानी सेल सिक्योर TMT बार, मजबूत, लचीला, भूकंप प्रतिरोधी और कंक्रीट के साथ बेजोड़ पकड़। सेल सिक्योर TMT बार,
7: हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है सेल।
8: ये है आकाशवाणी।

0: There you go. That was Paradise City by American rock band Guns N' Roses from their album Appetite for Destruction. Alrighty, it was such a craze when it came out, by the way. And in those days, there used to be cassettes and not like the way we have music over here these days. Huge fight over cassettes at that point of time. That was a different era altogether. Alrighty, 1945, 7:45 this Saturday evening, and it's time for us to take a quick break. Don't go anywhere. We'll be right back.
1: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे। रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
2: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक मस्ती।
7: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
8: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
9: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
0: Alrighty, you guys are back again on the show, Saturday Sizzlers. This is Dave with you guys, and yes, you can send across your messages on WhatsApp at this following number, which is 9868107070. I repeat, 9868107070, and send across your messages over here. Just like the way, Roland has sent us a very nice message, says, to be happy, remove toxic people from your life. I really, really, really like this message, Roland. Thank you so much. Alrighty. And what else? Lakshay, there we go. You're enjoying the show. And was actually asking me for a George Michael number. We already played George Michael as the first track. So can't really play George Michael again. Okay, sorry about that. But then again, that's how the things are over here. Next up is going to be In Excess with Beautiful Girl.

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
2: Alrighty, it's time for me to say tata and bye-bye. See you guys tonight at 10 p.m. on a show called In the Groove. Till then, take care, have fun, and enjoy this track by Creed. It's called Higher. There we go.

एफएम रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। सरकार ने 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए क्लोरफेनी रामायनी और फिनाइल एफरिन हाइड्रोक्लोराइड वाले सभी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन का निर्माण, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने आज नई दिल्ली में पार्टी के नव

भारतीय नागरिकों को लेके जा रही दो वाणिज्य जहाजों के उपहरण के मामला का मामला सोमालिया के अधिकारियों के सामने उठाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने समाधान समारोह पहल के अंतर्गत आयोजित 3 दिवसीय विशेष लोक अदालत में के पहले दिन 400 से अधिक लंबित मामलों का निपटारा किया। भारतीय सेना ने हवाई निगरानी, त्वरित प्रतिक्रिया और युद्ध क्षेत्र तक पहुंच बढ़ाने के लिए सीमावर्ती राज्य पंजाब में अत्याधुनिक ड्रोन से लैस पहली बाज बटालियन का गठन किया। केरलम में अरुमल चुंदन ने अरुपच्छा की पुनमद्दा झील में आयोजित 72वीं नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ जीती। और खेलों में अम्स्टलफेन में पुरुष हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज शाम भारत का सामना मेजबान नीदरलैंड से होगा। ये थे FM रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

आकाशवाणी। नमस्कार, सलाम और गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। दिल से दिल तक अब वक्त हो चुका है प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती का। मैं हूं आपके साथ ताहिर। अब जो टेंशन है थोड़ी देर के लिए साइड में रख दीजिए, क्योंकि अगला एक घंटा किसी कैलकुलेशन का नहीं है, सिर्फ म्यूजिक और मस्ती का है। कभी बीट के साथ मूड बढ़ाएगा और कभी गाना सुनकर पैर खुद ही हिलेंगे, और कभी आप कहेंगे बस एक गाना और। तो वॉल्यूम कंफर्टेबल रखिए, मूड थोड़ा सा फ्री छोड़िए और शुरू करते हैं प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती का आज का ये म्यूजिकल सफर।

जनाब म्यूजिक की खूबसूरती यही है कि कोई गाना सुनते हैं कभी और उसके बाद एक हल्की सी स्माइल आ जाती है, कभी पैर बीट पकड़ लेते हैं और कभी बिना वजह ही मूड अच्छा हो जाता है। तो अगर मूड ऑलरेडी अच्छा है तो उसे अच्छा रहने दीजिए और करने के लिए अगला गाना हाजिर आपके पास।

हर एक बात नोटिस किया आपने, जब गाना पसंद आ जाए तो उसकी लेंथ हो को हम कभी भी नहीं देखते, बस यही चाहते हैं कि गाना खत्म नहीं होना चाहिए, और जब गाना खत्म हो जाता है तो तुरंत दूसरा गाना चाहिए। तो इसी डिमांड को समझते हुए म्यूजिक मस्ती आगे बढ़ रही है।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

आकाशवाणी एफएम रेनबो दिल से दिल तक, मैं हूं आपके साथ ताहिर। प्रोग्राम चल रहा है म्यूजिक मस्ती। म्यूजिक का वैसे कोई फिक्स मूड तो नहीं होता, आप जिस मूड में सुनिए म्यूजिक उसी के साथ चल पड़ता है। आज का मूड अगर फुल एनर्जेटिक है तो बस प्लेलिस्ट भी तैयार है, और अब एक और ट्रैक है जो शायद आपको कुर्सी पर थिरकने के लिए मजबूर कर दे।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: जी हाँ, FM रेनबो और FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं म्यूजिक मस्ती। जी हाँ, म्यूजिक मस्ती को आप एंजॉय कर रहे हैं, इसमें कोई दोराय नहीं है। गाना अच्छा हो तो एक अजीब सी प्रॉब्लम होती है, काम करने का मन काम और गाना सुनने का मन ज्यादा करता है, लेकिन कोई बात नहीं, आज म्यूजिक मस्ती है, थोड़ी देर काम को भी कह दीजिए वेट करो भाई।

जनाब, जिंदगी में हर दिन एक जैसा नहीं होता। कुछ दिन बहुत अच्छे होते हैं, कुछ दिन थोड़े मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन हर सुबह अपने साथ एक नई पॉसिबिलिटी लेकर आती है। इसलिए जो बीत गया उसे जाने दीजिए, हर और जो सामने है उसे पूरी एनर्जी के साथ जिए। खुश रहने के लिए हर बार कोई बड़ी वजह नहीं होती और जरूरी भी नहीं होती। कभी एक छोटी सी भी स्माइल, कभी अपनी जिंदगी की कोई एक अच्छी सी बात, कभी बस ये सोच कि आज का दिन कल से बेहतर होगा, इतना ही काफी है। बहुत अच्छा लगेगा ऐसा करके देखिए।

ये सोचिए कि हर दिन एक फ्रेश स्टार्ट होता है, कल क्या है उसकी पूरी जिम्मेदारी आज के कंधों पर मत डालिए, किसी हाल भी मत डालिए, आज को आज की तरह जिए, थोड़ा मुस्कुराइए, थोड़ा खुद के लिए वक्त निकालिए और एनर्जी के साथ आगे बढ़िए। कुछ गाने आते ही ऐसे हैं कि माहौल बदल देते हैं, रूम वही होता है, लोग वही होते हैं, आसपास का सारा माहौल वही होता है, बस बैकग्राउंड में म्यूजिक बदल जाता है और पूरा पूरा सीन अलग हो जाता है। अब ऐसा ही एक मूड चेंजिंग ट्रैक आपके बीच मैं लेकर आ रहा हूं।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं, नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: जी हाँ, 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर मैं हूँ आपके साथ, ताहिर प्रोग्राम चला है, म्यूजिक मस्ती।

0: है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर म्यूजिक मस्ती आपके साथ है। जिंदगी में टेंशन तो सबके पास है, लेकिन टेंशन को इतनी इंपॉर्टेंस भी मत दीजिए कि वो घर पर सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर बन जाए। थोड़ा हंसिए, थोड़ा इग्नोर कीजिए और जो काम कल करना था उसे आज भी कल पर ही छोड़ दीजिए। खुश रहने का सबसे सिंपल फार्मूला यह है, जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है उसकी टेंशन मत लीजिए, और कंट्रोल में है उसकी थोड़ी देर बाद लीजिएगा। पहले मूड तो ठीक कर लें, जो कि ज़रूरी है। म्यूज़िक मस्ती एक ऐसी चीज़ है कि गारंटी है कि आपको हर गाना पसंद आए ये ज़रूर नहीं, लेकिन कोई ना कोई गाना ऐसा ज़रूर मिल जाएगा जिसके साथ आपका मूड बहुत ही जल्दी यानी

और इसी के साथ म्यूजिक मस्ती का आज का सफर यहीं पूरा होता है। उम्मीद है कि इस एक घंटे में म्यूजिक ने थोड़ी सी थकान कम कर दी होगी, मूड को थोड़ा बेटर किया होगा और चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल जरूर आई होगी। मैं हूं आपके साथ ताहिर और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ जो कि है दिल से दिल तक। फिर मुलाकात होगी नए गानों के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक म्यूजिक सुनते रहिए, खुश रहिए, एफएम रेनबो है आपके साथ।

नमस्कार, लीजिए प्रस्तुत हैं अब तक के मुख्य समाचार आकाशवाणी रेनबो पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी के नए पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज नई दिल्ली में पार्टी के नव नियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। गृहमंत्री के पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी में वरिष्ठ गोरखा नेताओं के साथ उच्च स्तरीय बैठक के बाद केंद्र ने गोरखा मुद्दे के समाधान के लिए उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की। गृहमंत्री अमित शाह ने देश की पूर्वी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। इसमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक की सुरक्षा मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया। भाजपा प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जनसेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को उजागर करने के

केरलम में अरुमल चुंदन ने अलापुझा की पुन्नमदा झील में आयोजित 72वीं नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ जीता। और खेलों में बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला डबल्स जोड़ी त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता। आकाशवाणी रेनबो पर ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी रेनबो पर प्रोग्राम आपकी याद आती रही में। मैं हूं विनीता बेदी। दोस्तों, कुछ रिश्ते हमारे जीवन से चले जाते हैं लेकिन हमारी यादों से कभी नहीं जाते। कुछ लोग बहुत दूर होकर भी हर शाम की खिड़की पर जैसे यादों में आ खड़े होते हैं, कभी ढलती हुई धूप में, कभी किसी अनजानी खुशबू में, कभी किसी पुराने रास्ते पर, और कभी यूं ही बिना किसी वजह के। याद भी कितनी अजीब चीज है ना दोस्तों, वो दरवाजा नहीं खटखटाती कभी भी, और दरवाजा चाहे ना खटखटाए लेकिन भीतर तो जरूर चली आती है बिना बताए। और फिर हम वर्तमान में होते हुए भी, अपने आज में होते हुए भी अचानक किसी पुराने मौसम में पहुंच जाते हैं। आज की शाम दोस्तों, उन्हीं यादों के नाम, उन चेहरों के नाम जिन्हें वक्त ने हमसे दूर कर दिया, लेकिन सामने चाहे ना हो पर दिल से दूर नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की शाम की कुछ पुरानी सांझों के साथ।

जी हाँ दोस्तों, आपकी याद आती रही विनीता बेदी के साथ। और दोस्तों, शाम का ना अपना एक अलग ही स्वभाव होता है। दिन भर की भागदौड़ जब थमने लगती है तो मन की आवाज कुछ साफ साफ सुनाई देने लगती है। ढलती हुई रोशनी में कभी कोई चेहरा याद आता है, कभी कोई घर, कभी कोई आंगन, और कभी वो वक्त जब शामें इतनी जल्दी खत्म नहीं हुआ करती थी। पता है आपको, कुछ शामें ना कैलेंडर से उतर जाती हैं, लेकिन मन की दीवार पर वो हमेशा टंगी रहती हैं। और फिर एक छोटी सी आहट, एक परिचित सी धुन, एक कोई पुरानी सी तस्वीर, और फिर हम वहीं पहुंच जाते हैं जहां शायद कोई हमारा कभी इंतजार करता था।

कुछ एहसासों का कोई नाम नहीं होता, ना उन्हें प्रेम कह सकते हैं, ना विरह, ना दोस्ती, ना ही बिछड़ना। बस इतना जानते हैं कि किसी की मौजूदगी ने हमारे भीतर कुछ तो बदल दिया था। वो व्यक्ति फिर चला भी जाए तो उसकी छाप नहीं जाती, जैसे बारिश के बाद मिट्टी में रह जाती है गीली मिट्टी की हल्की हल्की खुशबू। वैसे ही कुछ लोग हमारे भीतर ही रह जाते हैं और कभी कभी बिना कुछ कहे ही पूरी उम्र हमसे बातें करते रहते हैं। मैं हूं दोस्तों विनीता बेदी और आप सुन रही हैं कार्यक्रम आपकी याद आती रही।

0: राहुल, अगले हफ्ते टूर्नामेंट है, तुम्हें मेरठ से नया बैट भी लाना है, कैसे करोगे?
1: अरे सर फिक्र मत कीजिए, मैं मेरठ से बेस्ट बैट लेकर दोपहर की प्रैक्टिस ज्वाइन भी कर लूंगा।
0: इम्पॉसिबल
1: सर, अब अपने पास नमो भारत की रफ्तार और आरामदायक सफर है। मेरठ अब दूर कहाँ, एक घंटे से कम लगता है, हर 10 मिनट में ट्रेन मिलती है।
2: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगम पुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
3: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
4: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
3: अल्फा जेन,
4: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
5: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
6: कोयल सी तेरी बोली।

0: आए हाय,
1: तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
0: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
0: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

दोस्तों, आकाशवाणी रेनबो पर आप हैं विनीता बेदी के साथ प्रोग्राम आपकी याद आती रही में। और फिर से याद दिला दूं आपको कि आपकी याद जब भी आई झूम कर आई

ना कुछ रह जाता है ना हमारे हाथों में खाली, कुछ अधूरे वादे, कुछ अनकही बातें, कुछ ऐसे सवाल जिनका जवाब कभी मिला ही नहीं। हम सोचते हैं कि समय सब कुछ भर देता है, लेकिन समय हर घाव को नहीं भरता। कुछ खाली जगहें कुछ हमारी अपनी ही हो जाती हैं। हम उन्हें लेकर जीना सीख लेते हैं, मुस्कुराना भी सीख ही लेते हैं। बस कभी कभी ना अकेले में उन्हें छू कर देखते हैं तो पता चलता है कि ये यादें तो आज भी उतनी ही गहरी हैं, शायद उससे भी कहीं ज्यादा।

आपकी याद आती रही विनीता बेदी के साथ। दोस्तों, जिंदगी भी एक नाव की तरह है, कभी लहरें शांत होती हैं तो कभी पानी बेचैन, कभी किनारा बहुत पास दिखाई देता है और कभी लगता है कि रास्ता कभी खत्म ही नहीं होगा। ऐसे में कोई अपना सिर्फ एक आवाज बनकर भी एक बहुत बड़ा सहारा हो सकता है। वो कहे कुछ भी नहीं, बस इतना एहसास रहे कि कोई है, लेकिन जब वो आवाज भी दूर हो जाए तो पानी वही रहता है, नाव भी वही रहती है। बस ये यात्रा जो है ना, ये कुछ ज्यादा ही अकेली हो जाती है।

आपकी याद आती रही विनीता बेदी के साथ। दोस्तों, एक बात जो आपके साथ दिल से कहना चाहती हूँ वो ये कि कई बार ना अपनी जगह छोड़ना आसान नहीं होता। कई बार जगह सिर्फ एक जगह ही नहीं होती, हमारा बचपन, हमारी यादें, हमारा सब कुछ होती है। कई बार ऐसा लगता है कि हम अपना एक एहसास पीछे छोड़ आते हैं, कभी कोई अपना शहर, कभी कोई रिश्ता, और कभी कभी तो अपने जीवन का वो हिस्सा जिससे हम सबसे ज्यादा जुड़े हुए थे। पीछे मुड़कर देखें ना कभी तो लगता है कि रास्ते वही होते हैं, लेकिन उन रास्तों पर लौटने वाला इंसान शायद वो नहीं रहता। कुछ यात्राएं दोस्तों हमें कहीं और नहीं ले जाती, वो तो बस हमें हमारे बीते हुए कल तक ले जाती हैं, अपनों तक, हमारे अपनों तक।

0: जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी रेनबो पर आप में प्रोग्राम आपकी याद आती रही में मेरे यानी कि विनीता बेदी के साथ।

आपकी याद आती रही। कुछ मुलाकातें बहुत छोटी होती हैं दोस्तों, लेकिन उनका असर बहुत लंबा, बहुत गहरा। किसी की मुस्कान, बात करने का ढंग, आंखों की कोई चमक, और हम जाने क्यों उस पल को अपने भीतर ही रख लेते हैं। फिर साल बीतते हैं, जिंदगी बदलती है, लोग बदलते हैं, लेकिन वो एक मुलाकात स्मृति के किसी कोने में वैसे के वैसे बैठी रहती है। शायद इसीलिए कुछ लोग हमारी जिंदगी से समय के हिसाब से नहीं, बल्कि यादों के हिसाब से बने रहते हैं।

याद आती रही, आती रही, मन को विकल बनाती रही। और फिर आती है वो शाम जब याद सिर्फ याद नहीं रहती, वो तो एक टीस बन जाती है। मन पूछता है, क्या सब सचमुच सब कुछ खत्म हो गया? क्या कुछ रिश्ते इतनी आसानी से पीछे छूट जाते हैं? शायद नहीं। कुछ रिश्ते खत्म नहीं होते, बस उनका रूप बदल जाता है। पहले वो हमारे साथ चलते थे, फिर हमारी यादों में चलते हैं। पहले उनसे बातें होती थी, फिर उनसे मन में बातें होती हैं। और धीरे धीरे हम समझने लगते हैं कि किसी को भूलना हमेशा जरूरी नहीं होता। कभी कभी किसी की यादों में बसकर भी आगे तो बढ़ना ही पड़ता है। यही तो जिंदगी है, और शायद यही मोहब्बत भी।

कई साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हितेंद्र दास हैं आसाम से, पंकज अमरावती महाराष्ट्र से, किशन वंजानी रेलवे कॉलोनी आनंद बिहार से, विजेंद्र घटोल अकोला महाराष्ट्र से, प्रेमचंद प्रेमी जी धामपुर से, मोहम्मद फुरकान अंसारी चौखंडी बाराबंकी से, राजकुमार के संतानी अकोला महाराष्ट्र से, तुम्पा पवल रेलवे कॉलोनी न्यू दिल्ली, सुदर्शन मुखी अनीता मुखी सिमरन मुखी शांतिनाथ सोनीपत से, शांति नगर सोनीपत से, फारूक अली खान विद फैमिली कस्बा गुन्नौर यूपी से और मोहम्मद सरफराज आलम जौकीहाट दर्शना बाजार जिला अररिया बिहार से। आप सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमें सुन रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। प्रोग्राम के अंत में एक शेर मोहम्मद सरफराज आलम साहब का, यादों की बारिश में भीगा है आज फिर ये शहर, हर एक मोड़ पर बिखरा है तेरी यादों का मंजर, रिमझिम फुहारें पूछती हैं कहाँ गया वो हम सफर, सरफराज अब भी तेरी याद में भीगता है ये शहर। इसी खूबसूरत से शेर के साथ यादों में बसा ये प्रोग्राम आपकी याद आती रही समाप्त करने की विनीता बेदी को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे अभी रंगे महफिल में और कल परसों लगातार अलग अलग कार्यक्रमों में। तब तक जब हम दोबारा मिलते हैं, विदा, शुभरात्रि, शबा खैर।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: A nice way to end the song over there. Beautiful track over there. Saturday Night. And yes, it's from Wakefield. And yes, it had Danish singer Sanne Charlotte Carlson, who was singing over here right now. Okie dokie. Time right now is 10:41. And this will be right back after these messages. Don't go anywhere. We'll be right back.
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते

0: ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
2: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
3: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
4: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।

नमस्कार, लीजिए पेश अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नए पदाधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने संगठन को मजबूत करने और जनता से गहरे जुड़ाव पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी में वरिष्ठ गोरखा नेताओं के साथ उच्च स्तरीय बैठक के बाद केंद्र ने गोरखा मुद्दे के समाधान के लिए उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अहिंसा और शांति भारत की संस्कृति का हिस्सा है और किसी को भी अहिंसा के इस मूल्य को इसकी कमजोरी समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बांग्लादेश संबंध आपसी सम्मान पर आधारित होने चाहिए। भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जनसेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को उजागर करने के लिए एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। सरकार ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के उस फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें एक निवेश योजना का प्रचार किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने समाधान समारोह पहल के अंतर्गत आयोजित 3 दिन की विशेष लोक अदालत के पहले दिन 400 से अधिक मामलों का निपटारा किया। ब्रिक्स युवा मंत्रियों ने शिक्षा, कौशल, उद्यमिता, नवाचार और सामाजिक विकास में युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार करने के लिए संयुक्त वक्तव्य अपनाया। ओडिशा में बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने दबाव से तेज वर्षा की संभावना है। बाढ़ प्रभावित जिलों में स्थिति गंभीर बनी हुई है। और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला डबल्स जोड़ी त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने ऐतिहासिक कांस्य पदक जीत लिया है। आकाशवाणी रेनबो पर ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार दोस्तों, रंगे महफिल में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं विनीता बेदी। रात जितनी गहरी होती जाती है, दिल की आवाज उतनी ही साफ सुनाई देने लगती है। दिन के शोर में हम बहुत कुछ कह नहीं पाते। कुछ बातें टाल देते हैं, कुछ भाव छुपा लेते हैं और कुछ रिश्तों को बस खामोशी के हवाले कर देते हैं। लेकिन रात रात उन सब बातों को धीरे से हमारे पास वापस ले आती है। आज की महफिल उन्हीं खामोश एहसासों के नाम है, जहां कुछ यादें हैं, कुछ तन्हाइयां हैं, थोड़ी सी मोहब्बत है और कुछ ऐसे सवाल जिनके जवाब शायद हमें चाहिए भी नहीं। तो आइए आज की रात कुछ खूबसूरत गजलों के साथ दिल के थोड़ा और करीब चलते हैं। आप और मैं रंगे महफिल में, मैं हूं

हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा रिश्ता जरूर होता है जिसे कोई नाम देना आसान नहीं होता दोस्तों। वो रिश्ता जिसमें शिकायत कम और समझ ज्यादा होती है, जहां साथ होने के लिए हर वक्त साथ रहना जरूरी नहीं होता, बस इतना काफी होता है कि दिल को यकीन रहे कि कोई तो है जो हमें समझता है। मैं हूं आपके साथ विनीता बेदी, रंगे महफिल।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं, नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

आकाशवाणी रेनबो पर दोस्तों आप हैं विनीता बेदी के साथ प्रोग्राम रंगे महफिल में। कभी कभी किसी की कही हुई एक छोटी सी बात परसों हमारे साथ रहती है, शायद इसीलिए कि वो बात शब्दों से नहीं दिल की गहराइयों से कही गई होती है, और दिल से निकली हुई बातें समय के साथ भी कभी पुरानी नहीं पड़ती, ये बस और गहरी होती चली जाती है।

मोहब्बत में ना दोस्तों, सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसमें किसी को पाने से ज्यादा किसी को महसूस करना जरूरी होता है। दूरी हो सकती है, खामोशी हो सकती है, रास्ते भी अलग हो सकते हैं, फिर भी किसी न किसी का साथ में होना हमारे भीतर बना रहता है। कुछ रिश्ते पास रहकर भी दिल में रहकर निभते हैं दोस्तों। तो आइए, इसी एहसास के साथ पेश है ये अगली गजल, आपकी नजर।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
3: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
2: अल्फा जेन,
3: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
4: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

आकाशवाणी रेनबो पर आप हैं विनीता बेदी के साथ प्रोग्राम रंग महफिल में। और दोस्तों, जिंदगी में ना कुछ शामें ऐसी आती हैं जब हमें किसी से कोई बात ही नहीं करनी होती, बस कोई पास बैठा रहे बिना सवाल किए, बिना जवाब मांगे। शायद यही सुकून है जब किसी की खामोशी भी हमारी खामोशी को बहुत अच्छे से समझ ले। शायद यही रिश्ते का वो हिस्सा है जहाँ किसी से कहे बगैर भी हम अपने दिल की बात उनके दिल में धड़कते हुए देखते हैं।

दोस्तों किसी रिश्ते का ख़त्म होना हमेशा उसका मिट जाना नहीं होता। कभी कभी रिश्ता हमारी ज़िंदगी से निकलकर हमारी समझ का हिस्सा बनने लगता है। हम थोड़ा और संवेदनशील हो जाते हैं, थोड़ा और समझदार और शायद थोड़ा कम शिकायत करने लगते हैं। तो चलिए कुछ पल खामोश रहते हैं, जो कहना है ना उसे शब्दों में नहीं छोड़ते, जिसे याद करना है उसे दिल में याद करते हैं और जिसे प्यार करते हैं उसे बता देते हैं, क्योंकि जिंदगी हर बात के लिए कल का वादा नहीं करती।

और दोस्तों आज के प्रोग्राम की इस आखिरी पेशकश के साथ अब विनीता बेटी को दीजिए इजाजत। आज का रंगे महफिल कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की, फिर मिलेंगे किसी और एहसास किसी और गजल के साथ। तब तक कुछ खामोशियां संभाल कर रखिए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नए पदाधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने संगठन को मजबूत करने और जनता से गहरे जुड़ाव पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी में वरिष्ठ गोरखा नेताओं के साथ उच्च स्तरीय बैठक के बाद केंद्र सरकार ने गोरखा मुद्दे के समाधान के लिए उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अहिंसा और शांति भारत की संस्कृति का हिस्सा है और किसी को भी अहिंसा के इस मूल्य को इसकी कमजोरी समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बांग्लादेश संबंध आपसी सम्मान पर आधारित होने चाहिए। भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जनसेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को उजागर करने के लिए एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। सरकार ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के उस फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें एक निवेश योजना का प्रचार किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के समाधान समारोह पहल के अंतर्गत आयोजित तीन दिन की विशेष लोक अदालत के पहले दिन 400 से अधिक मामलों का निपटारा किया। ब्रिक्स युवा मंत्रियों ने शिक्षा, कौशल, उद्यमिता, नवाचार और सामाजिक विकास में युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार करने के लिए संयुक्त वक्तव्य अपनाया। ओडिशा में बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने दबाव से तेज वर्षा की संभावना है। बाढ़ प्रभावित जिलों में स्थिति गंभीर बनी हुई है और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला डबल्स जोड़ी त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने ऐतिहासिक कांस्य पदक जीत लिया है।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल है और अब वक्त हो चुका है 12:02, जो कि वक्त है कार्यक्रम जीरो आर शो का, जिसे लेकर आई हूं मैं प्रीति कमल। आइए शुरुआत करते हैं कुमार सानू की आवाज में गाए इस बहुत ही खूबसूरत गीत के।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

0: बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेंबो पर रात 9 बजे।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नए पदाधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने संगठन को मजबूत करने और जनता से गहरे जुड़ाव पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी में वरिष्ठ गोरखा नेताओं के साथ उच्च स्तरीय बैठक के बाद केंद्र सरकार ने गोरखा मुद्दे के समाधान के लिए उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अहिंसा और शांति भारत की संस्कृति का हिस्सा हैं और किसी को भी अहिंसा के इस मूल्य को इसकी कमजोरी समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बांग्लादेश संबंध आपसी सम्मान पर आधारित होने चाहिए। भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जनसेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को उजागर करने के लिए एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। सरकार ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के उस फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें एक निवेश योजना का प्रचार किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने समाधान समारोह पहल के अंतर्गत आयोजित 3 दिन की विशेष लोक अदालत के पहले दिन 400 से अधिक मामलों का निपटारा किया। ब्रिक्स युवा मंत्रियों ने शिक्षा, कौशल, उद्यमिता, नवाचार और सामाजिक विकास में युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार करने के लिए संयुक्त वक्तव्य अपनाया। ओडिशा में बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने दबाव से तेज वर्षा की संभावना है। बाढ़ प्रभावित जिलों में स्थिति गंभीर बनी हुई है और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला डबल्स जोड़ी त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने ऐतिहासिक कांस्य पदक जीत लिया है।

0: તમારી વાણી આકાશવાણી.
1: तो साथियों वक्त हो गया है 1:02 जो कि अब कार्यक्रम आपके आगे हाजिर है सुहानी रात जिसे लेकर आई हूं मैं प्रीति कमल. तो शुरुआत करते हैं अलका याग्निक के गाए इस गीत से.

0: मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: कोयल सी तेरी बोली तेरी तिरछी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार,

0: के तराने गाने नए पुराने नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

रात्रि के 2 बजने को हैं और आइए अब सुनते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नए पदाधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने संगठन को मजबूत करने और जनता से गहरे जुड़ाव पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी में वरिष्ठ गोरखा नेताओं के साथ उच्च स्तरीय बैठक के बाद केंद्र सरकार ने गोरखा मुद्दे के समाधान के लिए उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अहिंसा और शांति भारत की संस्कृति का हिस्सा है और किसी भी अहिंसा के इस मूल्य को इसकी कमजोरी समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बांग्लादेश संबंध आपसी सम्मान पर आधारित होने चाहिए। भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जनसेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को उजागर करने के लिए 1 महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। सरकार ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के उस फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें एक निवेश योजना का प्रचार किया जा रहा है। पनामा के झंडे वाला एक मालवाहक पोत बंगाल की खाड़ी में डूब गया। पोत पर चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। ब्रिक्स युवा मंत्रियों ने शिक्षा, कौशल, उद्यमिता, नवाचार और सामाजिक विकास में युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार करने के लिए संयुक्त वक्तव्य अपनाया। ओडिशा में बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने दबाव से तेज वर्षा की संभावना है। बाढ़ प्रभावित जिलों में स्थिति गंभीर बनी हुई है और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला डबल्स जोड़ी त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने ऐतिहासिक कांस्य पदक जीत लिया है।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक 2:02 हुए हैं और कार्यक्रम है भुलाए न बने। तो सुनिए हरिहरन की आवाज में ये बॉम्बे फिल्म से बहुत ही मधुर गीत।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल

आराधना 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

नमस्कार, प्रस्तुत है अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नए पदाधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने संगठन को मजबूत करने और जनता से गहरे जुड़ाव पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी में वरिष्ठ गोरखा नेताओं के साथ उच्च स्तरीय बैठक के बाद केंद्र सरकार ने गोरखा मुद्दे के समाधान के लिए उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अहिंसा और शांति भारत की संस्कृति का हिस्सा है और किसी को भी अहिंसा के इस मूल्य को इसकी कमजोरी समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बांग्लादेश संबंध आपसी सम्मान पर आधारित होने चाहिए। भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जनसेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को उजागर करने के लिए एक महीने तक चलने वाली राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। सरकार ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के उस फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें एक निवेश योजना का प्रचार किया जा रहा है। पनामा के झंडे वाला एक मालवाहक पोत बंगाल की खाड़ी में डूब गया। पोत पर चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। ब्रिक्स युवा मंत्रियों ने शिक्षा, कौशल, उद्यमिता, नवाचार और सामाजिक विकास में युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार करने के लिए संयुक्त वक्तव्य अपनाया। ओडिशा में बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने दबाव से तेज वर्षा की संभावना है। बाढ़ प्रभावित जिलों में स्थिति गंभीर बनी हुई है। और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला डबल्स जोड़ी ट्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने ऐतिहासिक कांस्य पदक जीत लिया है। तो ये थी अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज़।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 28 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं, नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

नमस्कार, प्रस्तुत है अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नए पदाधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने संगठन को मजबूत करने और जनता से गहरे जुड़ाव पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह की पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में वरिष्ठ गोरखा नेताओं के साथ उच्च स्तरीय बैठक के बाद केंद्र सरकार ने गोरखा मुद्दे के समाधान के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अहिंसा और शांति भारत की संस्कृति का हिस्सा है और किसी को भी अहिंसा के इस मूल्य को भारत की कमजोरी समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बांग्लादेश संबंध आपसी सम्मान पर आधारित होने चाहिए। भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जनसेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को उजागर करने के लिए एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। सरकार ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के उस फर्जी वीडियो का खंडन किया है जिसमें एक निवेश योजना का प्रचार करते हुए उन्हें दिखाया गया है। पनामा के झंडे वाला एक मालवाहक पोत बंगाल की खाड़ी में डूब गया। पोत पर चालक दल के 24 सदस्य सवार थे। ब्रिक्स युवा मंत्रियों ने शिक्षा, कौशल, उद्यमिता, नवाचार और सामाजिक विकास के क्षेत्र में युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार करने के लिए एक संयुक्त वक्तव्य अपनाया। ओडिशा में बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने दबाव के कारण तेज वर्षा होने की संभावना है। बाढ़ प्रभावित जिलों में स्थिति गंभीर बनी हुई है। और बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला डबल्स जोड़ी त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद ने ऐतिहासिक कांस्य पदक जीत लिया है। तो ये थी अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल। लीजिए, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सारेगामा।
2: राधा कृष्ण, हमारे भारत में हर प्रेमी को श्री कृष्ण और प्रेमिका को राधा जी के रूप में देखा जाता है।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
2: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी सी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
4: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

नमस्कार, प्रस्तुत है अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नए पदाधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने संगठन को मजबूत करने और जनता से गहरे जुड़ाव पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह की पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में वरिष्ठ गोरखा नेताओं के साथ उच्च स्तरीय बैठक के बाद केंद्र सरकार ने गोरखा मुद्दे के समाधान के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अहिंसा और शांति भारत की संस्कृति का हिस्सा है और किसी को भी हिंसा के इस मूल्य को भारत की कमजोरी समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। दिल्ली यातायात पुलिस ने कहा है कि खुदाई कार्य के कारण आज से अगले 15 दिन तक

सर्विस रोड बंद रहेगी। इनमें फायर स्टेशन रोड से डीसीपी ऑफिस, वेस्ट डिस्ट्रिक्ट, दिल्ली पुलिस जनकपुरी की ओर जाने वाली सर्विस रोड शामिल है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बांग्लादेश संबंध आपसी सम्मान पर आधारित होने चाहिए। भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जनसेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को उजागर करने के लिए एक महीने तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी सेवा संकल्प अभियान का आयोजन करेगी। ब्रिक्स युवा मंत्रियों ने शिक्षा, कौशल, उद्यमिता, नवाचार और सामाजिक विकास के क्षेत्र में युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार करने के लिए एक संयुक्त वक्तव्य अपनाया। ओडिशा में बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने दबाव के कारण तेज वर्षा होने की संभावना है। बाढ़ प्रभावित जिलों में स्थिति गंभीर बनी हुई है और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला डबल्स जोड़ी ट्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने ऐतिहासिक कांस्य पदक जीत लिया है। तो ये थी अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल और अब लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम आराधना।